मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रकृति का सबसे अनुपम और मनमोहक रूप है भोर की सुंदर बेला, जहां उषा लालिमा अंबर में स्वर्णिम आभा बिखेर रही है। वहीं पंछियों का कलरव शीतल मंद बयार और ओस की बूंदों से चमकती धरती का सौंदर्य मन को असीम शांति और नव ऊर्जा प्रदान कर रहा है।

श्रोताओं, सकारात्मक ऊर्जा लिए हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे श्रोता जो सुप्रभात के साथ ही रेडियो सेट को ऑन कर चुके हैं, उन्हें इंतजार होगा देश दुनिया की खबरों को जानने का। तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, बजने वाले हैं सुबह के 6, सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की।

0: राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज़ पर। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ वैशाली आप सभी के साथ। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, सुप्रभात। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। और श्रोताओं, वक्त है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी हमारे किसान भाइयों को बताएंगे मक्का उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में।
2: शुभ प्रभात। मक्का का विश्व खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा और अपने देश में तीसरा स्थान है। खरीफ फसलों में धान के बाद मक्का अपने उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। इसका प्रयोग दाना, पशुओं के आहार, चारा के साथ साथ भुट्टा के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त मक्के का प्रयोग विविध तरीके से किया जाता है, जैसे मांड, शराब, एसिटिक और फिर लैक्टिक के साथ साथ रेयान, कागज, गोंद, रंग, कृत्रिम रबर, जूते का पॉलिश। कई तरह से उत्पाद तैयार किए जाते हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी व्यापक मांग को देखते हुए, इसके महत्व को समझते हुए हमें खेती के लिए अभी सन्नद्ध हो जाना है। कारण कि मक्का की खेती खरीफ मौसम में बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है। इसकी बुआई के लिए 25 मई से पूरा जून तक का समय होता है, जब तक कि बरसात अच्छी खासी होनी न शुरू हो जाए। वैसे तो ये कहा जाता है कि 25 जून तक किया जाता है। काफी कुछ निर्भर करता है कि बरसात कितना आगे हो रही है या पीछे जा रही है। ऐसी स्थिति में मक्का की खेती जब हम करने के लिए तैयार हैं, तो इसकी जो देशी जाति है उसको भुट्टा के लिए उत्पादन की दृष्टि से बेहतर माना जाता है। इनकी जो जातियां हैं वह बेहतर रहेंगी तो आपको इससे आय भी अच्छी होगी। मेरठ पीली और जौनपुरी सफेद, ये देशी मक्का में दो प्रचलित हैं और आज भी इनकी मांग है भुट्टा के रूप में। विशेषकर संकर मक्का में गंगा 2, गंगा 5, गंगा 11, सरताज, प्रकाश, डक्कन 107 और शक्तिमान 2 ये अच्छा खासा उत्पादन देती हैं। इसके लिए हमें जरूर इसके बीज अपनाने चाहिए। हाँ, पिछले वर्ष के जो बीज रखे हुए हैं उसका प्रयोग कदापि न करें, क्योंकि इन जातियों के बीज हर साल बदल देने चाहिए, नए लाने चाहिए। संकुल जो मक्का है उसमें तरुण, नवीन, कंचन, श्वेता, D756, सूर्या, अमर, आजाद, उत्तम, नवज्योति, माही, कंचन, प्रभात और शक्ति 1, न जाने ऐसी कितनी किस्में हैं जो हमारे क्षेत्र में प्रचलित हैं और ये संकुल श्रेणी में आती हैं, जो बेहतर उत्पादन देती हैं। थोड़ी सी देखरेख कर दी जाए तो बेहतर उत्पादन मिलता है संकर की अपेक्षा। संकुल मक्का का बीज 3 से 4 वर्ष तक स्वयं तैयार कर सकते हैं, यानी पिछले वर्ष का आपने रखा है तो उसे भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये 3 से 4 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बीज की जो मात्रा प्रयोग की जाती है इसकी बुआई के लिए वह है संकर में 18 से 20 किलोग्राम और संकुल में 20 से 25 किलोग्राम। हाँ, बीज शोधन भी करना जरूरी होता है। 3 ग्राम थायरम व 1 ग्राम बावेस्टीन या फिर 3 ग्राम सीडोमोनास फ्लोरिसेंस व 1 ग्राम कार्बनडेजिम, इनका प्रयोग करें तो बेहतर स्थिति होगी। पौधों से पौधों की दूरी विशेष मायने रखती है मक्का में। आजकल हल के पीछे कोड़ों में बोने की प्रथा तो समाप्त ही हो गई है। कल्टीवेटर से छिड़काव विधि से इसे किया जाता है। तो कोशिश पहले ये होती थी कि हल के पीछे कोड़ों में या सीट कम्फर्टी ड्रिल आप प्रयोग कर रहे हैं तो 60 × 20 से 25 सेंटीमीटर और गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर।

रखनी होती है। छिटकवा विधि से कर रहे हैं तो वह तो है ही, बाद में विरलीकरण करना होगा। तो विरलीकरण के लिए आप ये मान करके चलें कि 60x25 सेंटीमीटर की दूरी उसकी रहे, वह बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगी। हाँ, इसी में उर्वरकों का प्रयोग भी करना होता है। जैविक खाद जो डालेंगे यानी गोबर की या कंपोस्ट की खाद डालेंगे, वो तो आप डालें ही डालें, लेकिन बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 37 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें, या फिर 87 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम SSP और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। टॉप ड्रेसिंग बाद में की जाती है, उसको तो अलग से करना ही होता है। जो मात्रा बचाई जाती है 87 किलोग्राम यूरिया पौधों के घुटने तक की ऊंचाई होने पर, बुआई के 30 से 35 दिन बाद करनी होती है। और द्वितीय टॉप ड्रेसिंग जो होती है 87 किलोग्राम यूरिया की, वो नरमंजरी निकलने के समय 50 से 55 दिनों पर होती है। तो ये तो स्थिति रही है कि उसकी इस तरह से हम करते हैं और समझते भी हैं कि इसी के आधार पर बेहतर उत्पादन की स्थिति बनेगी। समय समय पर सिंचाई का भी ध्यान रखना होगा, जिसे आप करते रहें।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे मक्का उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी। आज की कृषि चर्चा में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। दूसरों को जानना ज्ञान है, लेकिन स्वयं को जानना ही वास्तविक बुद्धि है। स्वयं पर विजय पाना ही सच्ची शक्ति है। आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति की यात्रा ही आत्म परीक्षण से शुरू होती है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार। विषय है आत्म परीक्षण, स्वर डॉक्टर शिवा राकेश का।
1: यदि गहराई में उतरकर इस पर विचार करें तो हम पाएंगे कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, स्थिर कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड बदल रहा है, दुनिया एक जैसी कभी नहीं रहती, समाज गतिशील है, वृक्ष वनस्पतियां भी समय के साथ साथ पनपते बढ़ते, फलते फूलते और आयु पूरी करके सूख जाते हैं। जीवधारियों की भी ऐसी ही गति है, स्वयं मनुष्य शरीर भी बदलता रहता है। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था और मरण, ये अवस्थाएं यहाँ भी देखी जाती हैं। एक व्यक्तित्व की मूल सत्ता ही अपरिवर्तनशील भला क्यों है? जीवन से मृत्यु तक आखिर मनुष्य का स्वभाव क्यों नहीं बदलता? उसकी चिंतन शैली और क्रियाकलाप स्थिर क्यों बने रहते हैं? उसमें उदात्तता का समावेश क्यों नहीं हो पाता? प्रकृति के साथ ये विरोधाभास कैसा? आज से पूर्व कई क्रांतियां हुई, भगवान महावीर ने इसके लिए अहिंसा का दर्शन दिया, भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन जैसी महाक्रांति की, पर दोनों ही क्रांतियां समाज और संसार के कुछ हिस्से को प्रभावित कर सकीं और सामयिक बनी रहीं। जब तक आदमी की मूल सत्ता में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता, तब तक बदलाव स्थायी नहीं होगा। मनुष्य के समग्र परिवर्तन के लिए मानवीय अंतराल का संपूर्ण बदलाव जरूरी है। चाहे जिस भी काल में ये पूर्ण बदलाव आए, वहां मानवीय अंतःकरण में क्रांति अवश्य घटित होगी। इससे कम में बदलाव एक खिलवाड़ बनकर रह जाएगा। अब प्रश्न ये है कि बदलाव आए कैसे? क्या ये स्वयमेव घटित होगा? कोई पराशक्ति इसे कर गुजरेगी या परमेश्वर की अनुकंपा से संपन्न हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवर्तन जहां कहीं जिस स्तर पर भी होता है, वहां उसके पीछे कोई ना कोई निमित्त कारण अवश्य होता है। इसलिए जब मानवीय अंतराल के परिवर्तन की बात आती है और उत्कर्ष की दिशा में कदम बढ़ाने का सवाल आता है, तो यहाँ भी प्रयास और पुरुषार्थ को सदैव स्मरण रखना होगा। निजी पराक्रम के बिना ये शक्य ना हो सकती है कि हम अपने को बदलने के लिए स्वयं संघर्ष करें। आत्म परिष्कार की साधना किसी महाभारत से कम नहीं। उसमें क्षण प्रतिक्षण में मनुभूमि में आने वाली बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों से लोहा लेना और उन्हें परास्त करना पड़ता है। इसके लिए स्वयं को एक सतर्क सैनिक की भूमिका निभानी पड़ती है और कुविचारों के दुर्भावनाओं के आते ही उन्हें धर दबोचना पड़ता है, ताकि उनकी मलिनता मानस पटल पर हावी ना होने पाए। रामकृष्ण परमहंस कहा करते कि लोटे की चमक को बनाए रखने के लिए उसे बार बार

0: अंजना पड़ता है। इससे कम में चमक बनी नहीं रह सकती। हाँ, यदि वे सोने का हो तो बात दूसरी है। मनुष्यों के साथ विडंबना ये है कि स्वर्ण मनोभूमि वाले देव पुरुष करोड़ों में इक्के दुक्के होते हैं। शेष सभी को जागरूक रहकर अंतकरण की धुलाई सफाई करनी पड़ती है, तभी ईश्वरीय आलोक की वास्तविक झांकी व्यक्ति में प्रकट होती है। इससे पूर्व उसकी आभा कल्मशों के कारण दृश्यमान नहीं हो पाती, क्योंकि मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के संस्कार उस पर छाए रहते हैं। मानवीय गरिमा इस दिव्यता को धारण करने में है। मानवीय चेतना का सहज स्वभाव अपनी मूल सत्ता से एकाकार होना है, पर इसके लिए प्रबल पराक्रम करना पड़ेगा और वे सारे उपाय उपचार बनाने पड़ेंगे जिससे हमारा उत्कर्ष की दिशा में कदम बढ़े। आदमी के लिए असंभव कुछ भी नहीं। वे जिस भी कार्य के लिए ठान ले वहां सफलता अवश्यंभावी है। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी आप अपनी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए उत्कृष्टता की दिशा में एक कदम बढ़ाएं, परमात्मा हमें अनेक कदम आगे बढ़ने में मदद करेंगे, यह सुनिश्चित है।
1: आत्म परीक्षण, अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार। वाचन स्वर डॉक्टर शीबा राकेश का था। नमस्ते लखनऊ, मॉर्निंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से वैशाली के साथ। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

सदियों से परंपरा रही है, हर मंगल कार्य की शुरुआत होती है विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की आराधना से। तो आइए आराधना का शुभारंभ करें एक दंत गजवदन मंगल मूर्ति के पावन नाम से।

माँ की जय जयकार तो हर युगों में होती आई है। आइए माँ का नाम लेकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं।

जिनकी भक्ति में शक्ति है और नाम में अनंत साहस, प्रभु हनुमान। आइए अपने जीवन में ऊर्जा, उत्साह और निर्भयता का संचार करें। हनुमान शक्ति का सभी भक्त आह्वान करें।

प्रभु से पूर्ण समर्पण तक की यात्रा ही आराधना है, यही है भक्ति की सच्ची परिभाषा, जहां भजन साधना बन जाते हैं और भजन के शब्द प्रार्थना।

मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं वैशाली आप सबके साथ। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। और अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 188 में राजा दशरथ का दाह संस्कार और मुनिवर वशिष्ठ द्वारा भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देने का प्रसंग।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थी कविता कृष्णन मूर्ति, आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं 747 किलोहर्ट्ज पर, और साथ ही सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से। सुबह के 7 बजे हैं और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। तो श्रोताओं, मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता, जाड़ा गर्मी बरसात, समय समय पर मौसम में बदलाव होते ही हैं। और हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, मौसम के अनुकूल कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, इसके लिए तरह तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आता है और जानकारियां देती हैं हमारी एक्सपर्ट नीना सोनकर। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, आइए सुन लेते हैं आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे पारंपरिक पेय की बात करेंगे जो भारतीय खानपान का अहम हिस्सा रहा है और जिसकी सेहत के लिए अनगिनत खूबियां हैं। हम बात कर रहे हैं मट्ठा और छाछ की। गर्मियों की चिलचिलाती धूप हो या भोजन को पचाने में मदद करनी हो, शरीर को ठंडक पहुंचानी हो या इम्यूनिटी बढ़ानी हो, मट्ठा और छाछ हर तरह से फायदेमंद हैं। आज के इस आधुनिक समय में जहां लोग कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य ठंडे पेय पदार्थों की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, वहीं ये पारंपरिक पेय अपने गुणों के कारण अब भी स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। मट्ठा और छाछ को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। मट्ठा दही से घी निकालने के बाद बचा हुआ तरल पदार्थ होता है, जबकि छाछ दही को फेंटकर और उसमें पानी मिलाकर बनाई जाती है। दोनों ही अपने अपने गुणों के कारण लाभकारी माने जाते हैं और शरीर को ठंडक देने के लिए विशेष रूप से गर्मियों में इनका सेवन किया जाता है। छाछ पाचन के लिए अमृत के समान मानी जाती है। भोजन के बाद एक गिलास छाछ पीने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और पेट से जुड़ी समस्याएं नहीं होती हैं। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया आंतों की सेहत को सुधारते हैं और गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। यही कारण है कि पारंपरिक भारतीय भोजन में छाछ को हमेशा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, विशेष रूप से गर्मियों में जब शरीर को हल्के और सुपाच्य आहार की जरूरत होती है, तब छाछ एक बेहतरीन विकल्प बनती है। मट्ठा और छाछ दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करते हैं। जब गर्मी के कारण शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकलता है तो जरूरी लवणों की कमी हो जाती है। मट्ठा और छाछ पीने से ये कमी पूरी हो जाती है और शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में ग्रामीण इलाकों में लोग अपने श्रम के बाद मट्ठा या छाछ पीकर खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। छाछ और मट्ठा हड्डियों को मजबूत करने में भी सहायक होते हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक हैं। खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ये बहुत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का घनत्व कम होता जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। दिल की सेहत के लिए भी मट्ठा और छाछ किसी वरदान से कम नहीं है। इनका नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है और रक्तचाप संतुलित रहता है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये पेय बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये शरीर में मौजूद अतिरिक्त वसा को भी नियंत्रित करने में मदद करता है और वजन को संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा छाछ और मट्ठा लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। ये शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर लीवर को साफ करने में सहायक होते हैं। आयुर्वेद में भी इसे एक शीतल पेय के रूप में वर्णित किया गया है, जो शरीर की गर्मी को कम करता है और पित्त को संतुलित रखता है। छाछ और मट्ठे का सेवन कई तरह से किया जा सकता है। इसमें भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च और हींग मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और इसके पाचन संबंधी गुणों में भी इजाफा होता है। कई लोग इसमें करी पत्ता, पुदीना और अदरक भी मिलाते हैं, जिससे ये और अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट बन जाता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि छाछ और मट्ठे का सेवन हमेशा ताजा ही करना चाहिए। इसे बहुत देर तक

0: खाने से इसके लाभकारी बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं। साथ ही जिन्हें लैक्टोज इनटॉलरेंस की समस्या होती है उन्हें इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इसे अपने आहार में शामिल करना चाहिए। श्रोताओं, मट्ठा और छाछ सिर्फ पारंपरिक पेय नहीं है बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। ये पाचन को बेहतर बनाते हैं, शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, दिल की सेहत का ध्यान रखते हैं और शरीर को ठंडक देते हैं। गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स और कृत्रिम पेय पदार्थों की जगह छाछ और मट्ठा को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। श्रोताओं, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मट्ठा और छाछ, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज की स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। और अब समय है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का। श्रोताओं, आज पूर्वाह्न 11 बजे से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर साझा करेंगे मन की बात। मन की बात के समापन के बाद आप सुनेंगे इसका उर्दू अनुवाद। रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण समय होगा आज रात 10 बजे और ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूर्ण होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी की बातचीत। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर समाअत फरमाइएगा शायर बशीर बद्र को आकाशवाणी लखनऊ के जानिब से खिराज अकीदत आवाज रेखा मिश्रा की होगी। इसके अलावा खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम में सदाकार होंगे सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान, पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे आज शाम 7:31 पर। प्रस्तुति सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर की है। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुनना ना भूलें डॉक्टर श्रवण कुमार की वार्ता शब्दों के शिल्पी केदारनाथ सिंह। दिन में 3:15 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज, प्रोफेसर संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभागाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्ता जिसका विषय होगा योगा कर्मसु कौशलम। दिन में 3:30 पर आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में विषय है गर्मी का मौसम और स्वास्थ्य रक्षा के विभिन्न उपाय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अभय नाथ तिवारी, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक, संचालन सुभाष खन्ना का होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे उस्ताद अली अकबर खान का सरूद वादन राग ललिता गौरी में। लोक रंग कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर आनंद लीजिएगा मगन मिश्रा के गाए अवधि लोकगीतों का। बाल मंच कार्यक्रम में हमारे नन्हे मुन्ने दोपहर 12 बजे सुनेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर माया मिश्रा की कहानी कोशिश। दर्जी की मर्जी सुनिए झलकी आज इतवार है में आज दिन में 1:15 पर। निर्देशन अतिश कुमार श्रीवास्तव का है। अक्षयवट कार्यक्रम में दिन में 1:30 पर सुनना ना भूलें डॉक्टर आर प्रधान, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष ओरल एंड मैक्सिलो फेशियल सर्जरी KGMU लखनऊ से की गई भेंट वार्ता। विषय होगा तंबाकू मुक्त बुढ़ापा गौरवशाली जीवन। इस विषय पर बातचीत करेंगी डॉक्टर अलका चौधरी। जायद फसलों में सामयिक प्रबंधन ये विषय है डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह से की गई भेंट वार्ता का। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। संकल्प कार्यक्रम में शाम 4 बजे आप सुनेंगे विकास मिश्रा से की गई भेंट वार्ता दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भेंट करता होंगे सुरेंद्र राजेश्वरी। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में सुनिएगा लोक भाषा कवि गोष्ठी, प्रतिभागी कवि होंगे शुकदेव प्रसाद छैल, राम दुलारे सिंह सुजान, संचालन रवि प्रकाश अवस्थी का है। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सफलता की कहानी क्रम के अंतर्गत हमारे किसान भाई सुनेंगे आम की सघन बागवानी विषय पर मोहम्मद फहद फारूकी से की गई

भेंटवार्ता भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रम, जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज की विविधा में। स्वीकार कीजिए वैशाली का प्यार भरा नमस्कार। अच्छा बताइए श्रोताओं, क्या आपने कभी किसी को पैसे देकर जहर खरीदते देखा है? क्या आपने किसी को अपनी जिंदगी के साल जलाते हुए देखा है? क्या आपने किसी को खांसते खांसते भी मुस्कुराते हुए देखा है? अगर हाँ, तो आपने एक तंबाकू सेवन करने वाले को देखा है। जरा सोचिए, एक छोटी सी पुड़िया, एक छोटी सी सिगरेट, एक छोटा सा गुटखा, लेकिन नुकसान इतना बड़ा कि इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। आज की विविधा में बात कहिए तंबाकू को ना की। हर साल दुनिया भर में लाखों की संख्या में लोग तंबाकू के सेवन करने से मरते हैं। हर मिनट में 15 जिंदगियां, और भारत में तो सिर्फ तंबाकू की वजह से मरने वालों की संख्या लाखों में है। ये कोई बीमारी नहीं है साथियों, ये एक चुनाव है, एक गलत चुनाव। हमारे देश में आज करोड़ों की संख्या में लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। कोई गुटके के रूप में खा रहा है, तो कोई खैनी के रूप में खाता है, कोई बीड़ी में इसे जलाता है, तो कोई सिगरेट में उड़ाता है, और कोई पान मसाले में छुपाकर इसका इस्तेमाल करता है। और गंभीर बात यह है कि इनमें से एक बड़ी संख्या है हमारे युवाओं की। वो युवा जो देश का भविष्य है, वो युवा जो अभी 15 से 18 साल में ही पहली बार तंबाकू का सेवन शुरू कर चुके हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी दोस्त ने कहा था कि एक बार ट्राई करके देख। शुरुआत तो होती है शौक से, और फिर ये आदत बन जाती है, और फिर जिंदगी बन जाती है बोझ। याद रहे दोस्तों, तंबाकू मजा नहीं, सजा है, आदत नहीं, आफत है। युवाओं में ई सिगरेट और निकोटीन पाउच जैसे निकोटीन उत्पादों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। कभी सोचा है एक छोटा सा पाउच, कुछ मिनट का स्वाद, और बदले में क्या? पीले काले दांत, काली खांसी, कमजोर फेफड़े, दिल की बीमारी, और कभी कभी तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी। साथियों, तंबाकू की एक सिगरेट में 7,000 से ज्यादा रसायन होते हैं। आप जब सिगरेट में तंबाकू का सेवन करते हैं, उसी पल आपके फेफड़ों में कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, रक्तवाहिका सिकुड़ने लगती हैं, और आपका मस्तिष्क निकोटीन का गुलाम बनने लगता है। मुंह, गले, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, लकवा, यही तंबाकू का तोहफा है। मैंने एक बुजुर्ग को देखा था, एक समय बड़े मजबूत इंसान थे वो, लेकिन 30 साल तक तंबाकू का सेवन करने के बाद वो बोल नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, सिर्फ आंखों से देखते थे और शायद पछताते थे। कहने का मतलब, तंबाकू का सेवन धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है और आप खुद उसे खरीद कर लाते हैं। ये परिवार भी बिगाड़ता है। जो पैसा पढ़ने लिखने में लगता था, वो गुटके पर खर्च हो जाता है। दोस्तों, जो समय सपने बनाने में लगना था, वो बीमारी संभालने में चला जाता है। जो मुस्कान चेहरे पर होनी थी, वो अस्पतालों के चक्कर काटते काटते कहीं खो जाती है। दोस्तों, जीवन अनमोल है। तंबाकू के सेवन के विनाशकारी प्रभावों को देखते हुए

0: साल 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 31 मई का दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। निकोटीन और तंबाकू की लत के आकर्षण को उजागर करना और उससे निपटना, ये थीम है साल 2026 की, जिसका उद्देश्य लोगों को इसके जोखिमों के बारे में याद दिलाना ही नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद तंबाकू उपयोगकर्ताओं को आकर्षित क्यों करता रहता है। माना दोस्तों कि तंबाकू छोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं, और जो खुद पर जीत जाए ना, उससे बड़ा विजेता तो कोई नहीं है। तंबाकू को ना कहना सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। कोटपा अधिनियम, विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण विनियमन यानी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, हमारे पास कानून है। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान वर्जित है, चेतावनियां भी हैं। आवश्यकता है तो समाज की सोच बदलने की। तो दोस्तों, घर में किसी को धूम्रपान करते देखें, उसे समझाइए प्यार से। दुकानदार स्कूल के पास तंबाकू बेचे, आवाज उठाइए, क्योंकि एक एक आवाज मिलकर आंदोलन बनती है। ना भूलें, तंबाकू कंपनियां आपसे पैसे लेती हैं और साथ में लेती हैं आपकी सांसें, आपके साल लेती हैं, आपके परिवार की हंसी छीन लेती हैं और बदले में देती हैं सिर्फ धुआं। तो एक बेहतर कल की शुरुआत होती है आज के एक फैसले से। तो अभी से इसी पल कहिए तंबाकू को ना, अपने लिए, अपने अपनों के लिए। तो आज की विविधा में बस इतना ही, मिलेंगे इसके अगले अंक में अन्य विषय के साथ। नमस्कार, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुनेंगे प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।
1: मेरा संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार।

0: बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बन रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के CG सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, ये सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहाँ पर लखनऊ में DRDO की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहाँ लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित ये परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को स्थापित किया गया है। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान कल से शुरू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस अभियान को राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी

0: को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए, उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट इक्विटी पोर्टल कल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में कल अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
3: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है, और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
1: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एवं पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 72 जिलों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की CCTV से निगरानी की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा चलने और वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, फरुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक के बीच बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया

0: रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती है। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है अपने रेडियो सेट पर 747 किलो हर्ट्ज पर। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में आज मैं हूं वैशाली आप सभी के साथ, और अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद अली अकबर खान का राग ललिता गौरी में सरोद वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अकबर खान का राग ललिता गौरी में सरोद वादन। इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, जिसे संपन्न करने का वक्त हो चला है, तो दीजिए अनुमति वैशाली को नमस्कार। श्रोताओं बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज़ पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्यघर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
2: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने

0: डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है।

0: के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya.

0: में बुध के रोज से शदीद बारिश, बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरूने मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नशर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम रोल अदा किया। वजीर दिफा ने कहा कि बहरे अरब में भारतीय बहरिया को पूरी तैयारी और ताकत के साथ तैनात किया गया था, जिससे लगातार दबाव बना रहा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी बहरिया अपनी बंदरगाहों तक महदूद होकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त हमले किए।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: बहरिया के सरबरा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने, दूर तक कार्रवाई करने और जंग से बाज रखने की अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग यिलांग कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले म्यांमार के सदर अपने 5 रोजा भारत दौरे पर कल बिहार के बोधगया पहुंचे और महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल शाम जनाब लियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने देरीना दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तहत म्यांमार के सदर के मुस्बत रुझान की तारीफ की। म्यांमार के सदर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती राब्तों को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों की ईंधन की बरामदात पर आयात होने वाले महसूलात पर नजरसानी की है। इस कदम का मकसद मगरबी एशिया के बहरान की वजह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खातिरख्वा घरेलू दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
2: वजारत मालियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की बरामद पर 1.5 रुपया फी लीटर और डीजल की बरामद पर 13.5 रुपये फी लीटर की ड्यूटी आयद होगी। हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदाती ड्यूटी 9.5 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत मालियात ने वाजे किया कि खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सड़क बुनियादी ढांचा सेस पर मुश्तमिल बरामदाती लेवीज, जिन्हें इस साल 27 मार्च को मुतारिफ कराया गया था, का खाम तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की औसत बैनुल अक्वामी कीमतों की बुनियाद पर हर 15 दिन बाद जायजा लिया जाता है। ताहम हुकूमत ने वाजे किया कि घरेलू खपत के पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नजरसानीशुदा ड्यूटीज का कल से इतलाक होगा, जो अगले 15 दिन तक नाफिज रहेंगी। नई दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आरजी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए यह फैसला किया गया है।

0: कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, एमएसएमई इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को इतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबिकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। आज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात के तई बेदारी पैदा करना है। यह दिन तंबाकू के इस्तेमाल के खात्मे के लिए आलमी इदारे सेहत WHO की आलमी पहल है। इस साल के तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन का उन्वान है निकोटीन और तंबाकू की लत से निमटना। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन मनाए जाने के हिस्से के तौर पर मरकजी सेहत सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने जुमे के रोज नई दिल्ली में तंबाकू से पाक तालीमी इदारों टॉफी ऐप का पायलट वर्जन लॉन्च किया। इस ऐप का मकसद मुल्क के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुखालिफ जाब्तों की निगरानी और निफाज को मुस्तहकम करना है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा श्रीवास्तव ने कहा कि मुल्क भर के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष इदारों और दीगर सेहत देखभाल मराकज में 2000 से ज्यादा तंबाकू नोशी मुखालिफ मराकज कायम किए गए हैं। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम नस्ब किए जाने की सताइश की है। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसे जदीद मौसमियाती निजाम कोहरे और खराब मौसमी हालात के दौरान परवाजों की कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। जनाब नायडू ने मजीद कहा कि इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर के मजीद हवाई अड्डों तक तौसी दी जाएगी जिससे मुसाफिरों के सफरी तजर्बे को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा और सेफ्टी में इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने के सानेहे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। मरने वालों में 7 अफराद का ताल्लुक पुणे शहर से और 14 अफराद का ताल्लुक पेचरी, चिंचोड़ और उर्वली कंचन इलाकों से है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी CID को सौंपी गई है। इस मामले में बड़ी इंतजामी कार्रवाई करते हुए 22 अहलकारों को अपने फराइज के अंजामदही में मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने पर मौतल कर दिया गया है। मौतल किए गए अहलकारों में 9 पुलिस अहलकार और रियासती आबकारी महकमे के 13 अफसरान शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की वजीर सकीना इट्टू ने जम्मू डिवीजन के समर जोन के तहत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 1 जून से 15 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। मोहतरमा इट्टू ने कहा कि जारी मौसम गर्मा के तनाजुर में यह फैसला लिया गया है ताकि तलबा तदरीसी अमले और कॉलेज अमले की बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मेल हासिल किया गया है। सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि एक मरबूत मुश्तरका तरीक़ेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा है कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रेयासिस ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला की वबा फूट पड़ने के बाद सफरी पाबंदियां आयद करने या अपनी सरहदें बंद कर देने वाले ममालिक से इन इकदाम पर दोबारा गौर करने की अपील की है। जनाब गेब्रेयासिस का कहना है कि इस तरह के इकदाम बीमारी से निमटने की कोशिशों में रुकावट बन सकते हैं। मशरकी कांगो के बुनिया में इजहार ख्याल करते हुए जनाब गेब्रेयासिस ने कहा कि बुनिया के उनके दौरे का मकसद मुतासर बिरादरियों के साथ सीधे तौर पर मसरूफ अमल होना है और सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में बीमारी से निमटने की कोशिशों को मुस्तहकम करने में मदद करना है। जमहूरिया कांगो के सेहत हुकाम ने 900 से ज्यादा मुश्तबा इबोला मामलों में 200 से ज्यादा मुश्तबा अमवात रिपोर्ट की हैं। वहीं पड़ोसी युगांडा ने राजधानी कंपाला में नए इन्फेक्शन समेत मजमुई तौर पर 9 मामलों की तस्दीक की है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी कल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मशरकी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ मकाम पर आज छींटे पड़ने के साथ झालाबारी भी हो सकती है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़

से विजयपाल जी का, शुभम यादव, शिखा, ऋचा गुड़िया, सुरभि, राजेश और विजय पांडे, आप सभी ने हमें मेल भेजा है और अपने गीत की फरमाइश भी की है और लिखा है कि तंबाकू एक ऐसा जहर है जो न केवल आपके स्वास्थ्य को ख़राब करता है बल्कि आपके परिवार को भी बर्बाद करता है। आइए हम सब तंबाकू के खिलाफ एकजुट हों और अपने जीवन को स्वस्थ बनाने का संकल्प लें। तंबाकू को ना कहें और जीवन को हाँ कहें। और इन्होंने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ये चंद लाइनें, चंद संदेश आप सभी श्रोताओं के लिए भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और हमारे श्रोता हैं जो हमें ईमेल लिख भेजे हैं। इन्होंने मेल भेजा है नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से, अक्रम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम रुबीना, आरिज, नदीम शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी। और कलेर बिहार से मेल है मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन का। और इन्होंने नमस्कार लिखा है, अपना फरमाइशी फिल्मी गीत भी हमें लिख भेजा है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से मेल है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप का। और कालका से मेल है शिवचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी का। इन्होंने भी अपने फरमाइशी फिल्मी गीत को सुनना चाहा है। ये मेल है बापू कॉलोनी, अब्दुल्ला मस्जिद, खंडवा, मध्य प्रदेश से शालिया डावर, हलीमा, जिक्रा, आयशा। और जिलाधार धर्मपुरी से मेल है मूसा जी, ईशा जी और जाकिर खत्री का। और आप सभी ने सुनना चाहा है मेरे लाल फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये हमारे श्रोता इन्होंने लिख भेजा है और कार्यक्रम इन्हें बेहद पसंद आता है, आकाशवाणी लखनऊ से खासकर जो प्रसारित किए जाते हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और उनके परिवार के सभी सदस्यों का मेल है। एक मेल और है इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर। इन्होंने हमें मेल लिख भेजा है और अपनी फरमाइश का गीत ये सुनना चाहते हैं। ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से मेल है रामराज, राजू भानु, राम शंकर और रक्षा मौर्य, राम सागर और इमरान बेग। इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार लिखा है। आपको भी प्यार भरा नमस्कार हमारी तरफ से। दाऊद सराय सहारनपुर से मेल है अनवर, शन्नो, मुदस्सर, मुजक्कर, ज़रीफ अंसारी जी का और इन्होंने आदाब लिखा है और अपने फरमाइशी फिल्मी गीत को सुनना चाहते हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से मेल है सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद और सानवी देशमुख का इन्होंने मेल भेजा है और आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम इन्हें बेहद पसंद आते हैं और इन्होंने प्यार भरा नमस्कार लिखा है। ये हमारे श्रोता हैं और इन्होंने लिखा है बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनके आशीर्वाद को ज़रूर पाएंगे और रिश्तों को संजो कर रखें, ज़रूरत पर काम आएंगे। बहुत ही अच्छा संदेश है आपका। सेठ खालिसपुर ऊँच गाँव अमेठी से मेल है और ये हमारे जो श्रोता हैं ये हैं भैया मोनू सेठ जी और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य और आप सभी सुनना चाहते हैं आक्रमण फिल्म का गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले, आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है
2: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन। प्यार भरा नमस्कार और हैप्पी संडे। ये लिख भेजा है हमारे श्रोता दुर्गा कॉलोनी हांसी से, राजू मिगलानी, बबिता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने, और अपने गीत की फरमाइश भी इन्होंने लिख भेजी है। एक मेल और है इसे भेजने वाले।

हमारे श्रोता हैं, इन्होंने मेल हमें लिख भेजा है। ये हैं धनौरी तेलीवाला से निसार, नौशाद, अयाना बाबू और आलिया। इन्होंने नमस्कार लिखा है और अपनी पसंदीदा गीत को ये सुनना चाहते हैं। और अगला जो मेल है इसे लिखने वाले हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है हमें कोथरूड पुणे महाराष्ट्र से मेल भेजा है। और सतीश, स्वास्तिक और दिव्यानी, तनु, तान्या, शिक्षा और इनके बहुत सारे मित्र बंधु हैं, इन्होंने मेल भेजा है और अपना फरमाइशी गीत ये सुनना चाहते हैं। गांव फ्रांसी हिसार से मेल है राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार जी का। इन्होंने भी अपने मनपसंद गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल लिख भेजा है। ये हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर जी और जियाउल मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल भेजा है। सोहन जोशी और पायल जोशी जी ने और तहिल से शुक्रिया भी अदा किया है। आप सभी सुनना चाहते हैं कुदरत फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: जाएगी ना।
1: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
3: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून

0: तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर। और अब लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मेल, आपको हार्दिक नमस्कार, आपको भी नमस्कार। भोपालगढ़ राजस्थान से मेल है धर्मेंद्र, कपिल, पूजा और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों का। इन्होंने मेल लिख भेजा है और अपनी फरमाइश का ये गीत भी सुनना चाहते हैं। और ये है अशोक सिंह, सुनीता, प्रीति, वेदा सिंह, जबलपुर मध्य प्रदेश से इन्होंने मेल भेजा है और नमस्कार भी लिख भेजा है। और ये हैं रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उदयभान, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश, बघेल और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। इनकी फरमाइश पर आइए सुन लेते हैं लता मंगेशकर, बाबला मेहता की आवाज़ में चांदनी फिल्म का प्यारा सा ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके मेल आपके गीत आकाशवाणी लखनऊ से। और ये मेल है हमारे श्रोता का, ये भेजने वाले हैं इन्होंने आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, साइना, निवान ने हमें मेल भेजा है। और इन्होंने सबको विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक रहने के लिए संदेश भेजा है। तो ये संदेश आपका है और सभी को इस चीज़ को समझना चाहिए कि तंबाकू का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है।

और अब जो मेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, इन्होंने मेल लिख भेजा है, ये हैं, इन्होंने लिखा है कि पानी बचाएं, जीवन बचाएं, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। बाजार रोड मुगीसापुर से ये मेल है जाकिर कमरुन निशा शबिस्ता लुबना और यश जी का। और आप सभी ने सुनना चाहा है शक्ति फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: इस गीत के साथ ही श्रोताओं, वक्त हो चला है आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम से इजाजत लेने का। आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा, सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार

0: लखनऊ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये विशेष परिचर्चा है केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में 12 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं जब लगातार तीसरी बार भाजपा की केंद्र में सरकार रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। इन 12 वर्षों में भारत का कितना विकास हुआ है, सामाजिक आर्थिक स्तर में कितना परिवर्तन आया है, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर में क्या चुनौतियां हैं और इन 12 वर्षों में उन्हें कैसे हासिल करने का प्रयास किया गया, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेन सिंह रावत हैं। वीरेन जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुशील जी।
0: जो 12 वर्षों का कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है, लगातार तीसरा कार्यकाल है ये नरेंद्र मोदी सरकार का, तो इसको आप भारत के विकास में किस तरीके का प्रभाव छोड़ने वाला, ये 12 वर्ष किस तरीके से भारत के इतिहास में याद रखे जाएंगे?
1: नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, आपने देखा दो बहुत ही माइलस्टोन चीजें हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएसटी जो लेकर आई 2017 में, बहुत पहले से ये पेंडिंग पड़ा था, पिछली सरकारें लाना चाहती थी लेकिन किसी वजह से नहीं ले पाई। दूसरा एक वैश्विक एक कोरोना काल आपने देखा। तो जब नरेंद्र मोदी सरकार की आप बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे, तो इन दोनों चीजों को आपको परिपेक्ष में रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो एक जीएसटी का जो पूरा एक रिफॉर्म था बिजनेस को और अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे पुश देना है, कैसे उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह यूज करना है, जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा था उसको लेके आना, और साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पे, जैसे मैंने कहा COVID-19 की जो एक काल था जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े जो विकसित देश भी हैं, यूरोप के हों चाहे यूएस हों चाहे इधर जापान को देख लें, वो भी किस तरह से स्पीका को झेला और किस तरह से वो अपने को आगे लेके चले, और भारत ने इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था। तो मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इस दौरान भी किस तरह से आपके जो लोकल इकोनॉमी थी, जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, उसको कैसे नेविगेट करके सक्सेसफुली ले जाने का काम किया है। 12 सालों में आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे क्वाड बना है, भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस का जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के पूरे पैराडाइम को देखते हुए बनाया गया, खासतौर से चाइना को कैसे कंटेन करना है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, उसको कैसे लेके जाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को कैसे उसमें यील्ड बढ़ा के कैसे एक्सपोर्ट से उसको मार्केट को, जिसमें फार्म टू फोर्क में जैसे एक लिंकेजेस की जो बात पहले से चली आ रही थी उसको कैसे चरितार्थ किया है। एमएसएमई सेक्टर हो, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर को लेके, कोल को लेके, क्योंकि ये कमोडिटीज ऐसी हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको लेके बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, हमेशा भारत कहीं ना कहीं टेंटर हुक्स पे रहता था, उसको लेके बहुत ही सुदृढ़ता से लेके चला है। अभी आपने देखा वेस्ट एशिया पे जिस तरीके का एक ऑल क्राइसिस चल रहा है, उस दौरान भी कैसे नेविगेट किया गया है। रशिया यूक्रेन का वॉर वैसे तो दूर पे चल रहा है लेकिन उसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी है वो भी काफी बाधित हुई। आपने देखा इसराइल और गाजा में जो एक अभी भी चल रहा है, आपने देखा उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के जितने भी आप देखेंगे घटक को देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता की एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों को जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एक केंद्र सरकार है वो उसने किस तरह से नेविगेट किया है जिससे हमारी इकोनॉमी हो, हमारी जो सिक्योरिटी को लेके जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं, आगे जाके जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह की बात है, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ना केवल कंप्यूटर तक सीमित रह गया है लेकिन सिक्योरिटी मिलिट्री वेयर में यूज हो रहा है। बहुत सारे युद्ध अभी जो आपने देखा ग्लोबल जो चल रहे हैं उसमें AI का किस तरह से यूज हो रहा है, उस परिपेक्ष में किस तरह से हम अपने को ना केवल सुदृढ़ रखें, अपने को सुरक्षित रखें, बल्कि एक नेक्स्ट लीप लेके जाएं, क्योंकि AI से जो है जॉब का एक पूरा लिंकेज है, जॉब जाएंगी, नई जॉब्स आएंगी, लेकिन स्किलिंग का जो पूरा एक वैल्यू चेन है उसको कैसे आगे लेके जाना है, और ना केवल डोमेस्टिक, क्योंकि अब जो वर्क फोर्स है वो केवल एक जगह सीमित नहीं रहता है, वो इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। तो जो हमारा वर्क फोर्स निकल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेश स्टेट है इंडिया का और करीब 10% के आसपास का GDP कंट्रीब्यूट करता है, तो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, सारे जो मिलके जिस तरह से AI को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है जिससे ना केवल हमारी मिलिट्री और सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको संरक्षित किया जा सके, बल्कि उसको जॉब के साथ कैसे अलाइन करना है। तो जब आप सारी चीजों को एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे तो देखेंगे जो केंद्र सरकार ने काफी अच्छा काम किया है।
0: जी, हम कुछ खास सेक्टर्स की चर्चा करते हैं, जैसे कि हम युवाओं के लिए 12 सालों में कितनी स्थितियां बदली हैं, रोजगार से लेकर के आपने AI की बात की, पढ़ाई को लेकर के ये क्या क्या चेंजेस हुए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, लगभग 500 के आसपास जो है नए विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए हैं जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों विश्वविद्यालय हैं, एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में वहां तक दूर दराज तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके इनके लिए काम हो रहा है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे की, किस तरीके से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया वो एक स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें

0: एक्सप्रेस वे की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है मुंबई में, दिल्ली मुंबई कनेक्टिविटी, खासतौर पर सीमा के क्षेत्रों में जिन चुनौतियों की आपने चर्चा की उसमें बहुत बड़ी चुनौती ये भी थी कि करगिल युद्ध के बाद पहली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे पहले गलवान हुआ था, तो इस नाते सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती। 12 सालों में आप क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं?
1: देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जो अपना इकोसिस्टम बनाता है, और वो इकोसिस्टम ना केवल आप, जैसे आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माउंटेनस रीजन है, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे हमारे इंटरनेशनल

0: एक ऐसी चीज होती है जो अपना इकोसिस्टम बनाता है, और वो इकोसिस्टम ना केवल आप जैसे आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि सिक्योरिटी को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माउंटेनस रीजन है जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पे हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगी हुई हैं, वहां पे अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कितनी जल्दी से मिलिट्री वेयर और हमारी आर्मी वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचे, ना केवल पहुंचे बल्कि लॉजिस्टिक्स का पूरा जो सप्लाई चेन है वो सुदृढ़ता से बना रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ना केवल मिलिट्री के लिए लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी आता है। तो आपने जैसे अभी आपने कई चीजें मेंशन करी हैं, एक्सप्रेसवेज की बात आप कर लें, चाहे एयरपोर्ट्स की बात कर लें, चाहे ना केवल एक्सप्रेसवेज बल्कि जो टर्शरी रोड्स हैं जो स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी बनती है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार लोन से लेके एक एक्सपर्ट जो एक इनपुट होता है उसको लेके, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे आपने देखा कि लखनऊ कानपुर का जो एक्सप्रेसवे है वो NHAI बना रहा है, अभी कुछ दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा, तो ये जब आप पूरा देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो मोदी सरकार है वो पहले से भी काफी बुलिश रही है और उसने उस चीज को चरितार्थ किया है, और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि भारत ने इन्वेस्टमेंट को लेके काफी नए नए आयाम गढ़े हैं। बहुत सारे आपने देखा, एप्पल का प्लांट इंडिया में आया है, सैमसंग का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है आपके नोएडा में लगा हुआ है, इसी तरीके के अन्य क्षेत्रों में AI को लेके भारत की जो कंपनियां अग्रणी कंपनियां हैं विदेशी कंपनियों के साथ उनका टाई अप होता है, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं होगा अच्छा तब तक इन्वेस्टर जो है किसी भी उसको बाईपास कर देता है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी बुलिश रही है और काफी अच्छा काम हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम हो।
1: जी, और अगर हम 12 सालों का जो एक तरीके से लेखा जोखा जब आदमी करने बैठता है, जब आप तरीके से देखते हैं कि क्या बड़ी चीजें हुई, तो हम उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कोरोना काल से शुरू हुई जो योजना थी वो PM गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन पूरे महीने नसीब हो सके, इसके लिए राशन की दुकानों से अन्न मिल रहा है, और स्वच्छता अभियान एक मिशन की तरह से शुरू हुआ, 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट उसके अंदर जो है वो बन चुके हैं, हर घर जल की अगर बात करें 15 करोड़ से ज्यादा देश भर में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जो एक बहुत गेम चेंजर योजना थी वो PM आवास योजना भी, 4 करोड़ से ज्यादा घर उसके तहत जो है वो पात्र लोगों को दिए जा चुके हैं, मुद्रा योजना के तहत जो है 50 करोड़ से ऊपर का लोन दिया जा चुका है। तो ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन अंत में जो मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि देश के युवा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई, सरकार ने शिक्षा नीति में पूरी तरीके से बदलाव करने की कोशिश की, युवाओं के लिए अगर आप देखें तो बहुत छोटे से संक्षेप में मुख्तसर सा एक जवाब चाहेंगे कि इसमें क्या 12 साल में युवाओं के लिए इस सरकार से उम्मीद रही और क्या कितना मिला?
0: देखिए, किसी भी देश का जो पूरा डेस्टिनी होती है वो युवाओं के हाथ में होती है, और इस समय इंडिया और इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा यूथ वर्कफोर्स है उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप को लेके, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं एक जो जॉब मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है, ना केवल जॉब मार्केट सारे भी डोमेन्स को डिसरप्ट कर रहा है, खासतौर से हमारे युवा जो डिग्री लेके निकल रहा है उसको कैसे जॉब के साथ जोड़ना है, ना केवल सैलरीड जॉब बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप, तो स्टार्टअप के जो कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया है। आपने देखा कि अपने मन की बात में स्टार्टअप को लेके बहुत ही बुलिश रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंकरेज करने का है, और युवा भी इस चीज को समझ रहे हैं और पॉजिटिवली ले रहे हैं कि ना केवल वो नौकरी की तरफ जाएं बल्कि खुद स्वयं का उद्यम करें। उसको लेके बैंक से जो लोन का पूरा एक इकोसिस्टम है वो भी डेवलप किया गया, बहुत सारी स्कीम्स है MSME को लेके कि कोलैटरल फ्री लोन कैसे देना है, स्टार्टअप के लिए अलग स्कीम्स है, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत सारी स्कीम्स है जो स्टार्टअप को बढ़ावा देती है, क्योंकि महिलाएं, क्योंकि हमारा 50% पॉपुलेशन की है और युवा हमारे कल के भविष्य हैं, तो इन दोनों को जो है सुदृढ़ कैसे करना है, क्योंकि जब ये सुदृढ़ रहेंगे, ये जब स्ट्रांग रहेंगे तभी हमारी आगे की अर्थव्यवस्था, हमारा जो आगे का पूरी डेस्टिनी है वो भी एक सही पाथ पे चलेगी।
1: जी वीरेन जी, आपने 12 साल के सरकार के कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कार्यक्रम आज के मेहमान आप सुनेंगे सुबह 10 बजे से आकाशवाणी लखनऊ FM रेनबो 100.7 MHz पर। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी आप कार्यक्रम को सुन सकते हैं। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज सुनिएगा श्री सुनील कुमार राय, पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ परिक्षेत्र से सुरेंद्र राजेश्वरी की बातचीत। हेल्थ एंड फिटनेस।

ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे से। आज इस कार्यक्रम में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में डॉक्टर जीशानुद्दीन अहमद से बातचीत की जाएगी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच पर भी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देश गान 747 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा शायर बशीर बद्र को आकाशवाणी लखनऊ की जानिब से खिराज अकीदत। आवाज रेखा मिश्रा की है। इसके अलावा आप सुनेंगे खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम। सदाकार हैं शाजिया खान और सुरेंद्र राजेश्वरी।
1: मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इन शेरों के खालिक मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र साहब 28 मई 2026 को इस जहाने फानी से कूच कर गए। आज के इस उर्दू कार्यक्रम में हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी अदबी, इल्मी और शायरी की खिदमात को सलाम करते हैं। बशीर बद्र साहब का कलाम मोहब्बत, इंसानियत और जिंदगी के नाजुक एहसास का आईना रहा है। उनकी यादें और उनकी शायरी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।

0: आमीन। आज हम उर्दू प्रोग्राम की महफिल सुखन में बात करेंगे पद्म श्री अवार्ड याफ्ता सत्या एकेडमी इनाम याफ्ता बा कमाल जमाल शख्सियत इकाई इमेज आमद आस आसमान और आहट जैसे शेरी मजमुओं के तख्लीककार जदीद उर्दू गजलियात के अलमबरदार अपने मुनफरिद लबो लहजे के अजीमुल मर्तबत शायर उर्दू शायरी के चश्मो चराग जनाब बशीर बद्र साहब की, जिन्होंने अपनी शायरी के चराग से अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर दिया और जिनकी गजलों ने दिल के कोने कोने में जाकर उजाला कर दिया। इसी मौके पर बशीर साहब फरमाते हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए, मैं खुद भी एहतियातन उस तरफ से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए, समंदर के सफर में इस तरह आवाज दे मुझको, हवाएं तेज हो और कश्तियों में शाम हो जाए। सामीन, बशीर बद्र साहब सिर्फ शायर नहीं बल्कि आशिक़े सुखन है। बिलाशुबा उनकी गजलों ने उर्दू शायरी को नई सांसें अता की हैं। जरा ये शेर समात फरमाए, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बशीर बद्र साहब की गजलें जब मुशायरों में पढ़ी जाती तो लोग दीवानावार दाद देते, वो महफिल में आते तो लफ्जों की खुशबू बिखर जाती। ये अशार इसके बखूबी मिसदाक हैं। दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, गम है आवारा अकेले में भटक जाता है, गम है आवारा अकेले में भटक जाता है, जिस जगह रहिए वहां मिलते मिलाते रहिए, जाने कब चांद बिखर जाए घने जंगल में, जाने कब चांद बिखर जाए घने जंगल में, अपने घर के दरो दीवार सजाते रहिए। इतना ही नहीं, बद्र साहब की लिखी हुई गजलों को फिल्मी दुनिया के बहुत से गुलकार हजरात ने अपनी आवाज देकर उसे हर दिल का गुनगुनाता हुआ नगमा भी बना दिया है। ऐसे ही एक गजल न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। सामीन, बशीर बद्र साहब की शायरी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो आम जिंदगी की छोटी छोटी बातों को बड़े सादे मगर असर अंगेज अल्फाज में कहे जाते हैं। उनके मिसरे रोजमर्रा के जुमलों की तरह दिल में उतर जाते हैं। इस पसे मंजर में वो फरमाते हैं, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र साहब का कमाल यही है कि उनकी शायरी में दिल की धड़कन सुनाई देती है। मोहब्बत हो या जुदाई, उम्मीद हो या मायूसी, हर जज्बा उनके यहाँ अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। इस पर वो कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी है खो जाए तो सोना है।
1: आदाब सामे, एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खत के लिए शुक्रिया। मैं आपकी मेजबान शाजिया खान और मेरे साथ इस सफर में साथ दे रहे हैं सुरेंद्र राजेश्वरी।
2: सभी सुनने वालों को राजेश्वरी का आदाब और शाजिया खान साहब आपको भी बहुत बहुत आदाब। लगभग एक महीने के बाद मुलाकात का मौका फराहम हुआ है सुनने वालों के साथ में।
1: जी,
2: अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। मैं समझता हूँ कि तमाम हमारे जितने भी सुनने वाले हैं बहुत खुश होंगे और सेहतमंद होंगे।
1: बिल्कुल, तो बिला

0: रिजवानुल रजा साहब जो लिखते हैं, आज रेडियो से नश्र होने वाले उर्दू प्रोग्राम में बैदबाजी से लुत्फंदोज हुआ। शम्सुल आरफीन की निजामत में तमाम शुरका ने बेहतरीन और मयारी अशार सुनाए। आखिर में जनाब आसिफ इकबाल साहब ने रेडियो के उर्दू नशरियात पर अपने ख्यालात का इजहार किया और उसकी अहमियत और जरूरत के साथ उसकी अफादियत पे भी रोशनी डाली। दिली मुबारकबाद।
1: बहुत शुक्रिया रिजवान रजा साहब आपको। और बैदबाजी का प्रोग्राम शाहजा बड़ा एक अपने आप में खुद में एक बड़ी बहुत मजे की चीज है।
0: बहुत मजे।
1: आप ये देखें कि ये शुरू बहुत पहले इस प्रोग्राम में कभी हुआ करता था
0: जी।
1: बाद में ये आसिफ साहब ने दोबारा इसको शुरू किया तो मुझे लगता है कि सुनने वालों तक उस तरीके से पहुंच भी रहा है, तो शायद पसंद आ रहा है लोगों को और अच्छा भी था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: अगला खत हमें भेजा है दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। और ये लिखते हैं, हमें आपका उर्दू कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हमें दिनांक 7 मई 2026 का उर्दू प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम में नवाबीन अवध की गजाएं विषय पर मेहमान हफीज अतीक इदवई जी से प्रेजेंटर शम्सुल आरफीन साहब की बातचीत बहुत अच्छी लगी। और इन्हीं का एक खत हमें और मौसूल हुआ है, अगर इजाजत हो मैं वो भी पढ़ दूं।
1: बिल्कुल
0: जी। जो अगला खत इन्होंने भेजा है वो हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी @90 क्विज प्रोग्राम के लिए भेजा है, जिसके मुताबिक ये लिखते हैं, हमें आपका उर्दू कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हमें दिनांक 18 मई 2026 दिन सोमवार का उर्दू प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी @90 विषय पर इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ कैंपस में की गई बातचीत और क्विज टाइम पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा। प्रेजेंटर जमशेद सिद्दीकी, शम्सुल आरफीन, आसिफ इकबाल जी को हार्दिक बधाई।
1: शाहजा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हमारे कार्यक्रमों को लगातार सुनते हैं
0: जी,
1: और लगभग सारे कार्यक्रमों में इनका खत आता है और
0: हमारे बड़े अजीज सामे हैं।
1: आपने नवाबीन अवध की जो गजाएं थी इस पर जो अपनी प्रोग्राम था और खासतौर से आकाशवाणी जो क्विज प्रोग्राम आपने सुना, वो कोशिश ये थी कि जो 90 साल का हमारा आकाशवाणी का सफर है उस पर तमाम सारे प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में किए जा रहे हैं और उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम भी किया था क्विज का। आपको पसंद आया नागनपुरी जी और आपके तमाम परिवार के लोगों को, आपके दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला खत हमें मौसूल हुआ है लखनऊ से ही। लिखने वाली है आफरीन नाज। ये लिखती है, ये हमारे प्रोग्राम किस्सा चार दरवेश के मुतालिक लिखती है और इन्होंने लिखा है, आपका प्रोग्राम किस्से चार दरवेश की पहली किस्त सुनकर दिल खुश हो गया। बागो बहार को जिस खूबसूरत अंदाज, साफ जुबान और दिल नशी पेशकश के साथ पेश किया गया वो बेहद मुतासिर कुन था। खास तौर पर शाज़े खान साहिबा की पुरसोज आवाज और अंदाजे बयान ने दास्तान को गोया जिंदा कर दिया। पहला दरवेश की दास्तान में इश्क, राज और दर्द की जो कैफियत थी उसने हमें आखिर तक अपने सहर में बांधे रखा। उम्मीद है आने वाली किस्तें भी इसी तरह दिलचस्प और यादगार होंगी। पूरे प्रोग्राम की टीम को दिली मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं।
1: आफरीन ना साहिबा, पहले तो शुक्रिया आपका और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसकी जो अगली किस्त आएंगी आप तक, जिस तरह से इस किस्त को आपने सुना है, पसंद किया, इंशाल्लाह आने वाली किस्त भी इसी तरह से होगी, हमारी कोशिश भी होगी। रही बात मुबारकबाद देने की, शाजिया तो यहाँ साथ बैठी हुई हैं, शाजिया आपको बहुत मुबारक हो,
0: ये
1: प्रोग्राम आपने पसंद किया, इसकी दावत तो अलग से होगी। हम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लगातार हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और हमें खत भी इरसाल कर रहे हैं। आप सबका, आपके समातों का बेहद शुक्रिया।
0: एक खत हमारे पास और आया है जो खासकर कुछ जानना चाहते हैं
1: क्या,
0: और ये लिखने वाले हैं जुबैर इदरी साहब सीतापुर से।
1: अच्छा,
0: ये लिखते हैं, मैं इस उर्दू प्रोग्राम में शामिल होना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस शानदार प्रोग्राम में किस तरह मैं शामिल हो सकता हूँ।
1: जुबैर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में इस्तकबाल भी करते हैं हम आपका। और देखिए, आकाशवाणी के किसी भी प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो पहले तो ये मालूम हो कि आपको बूर किस्म हासिल है, आप लिखते क्या हैं, शायर हैं या मकाला निगार हैं या अफसाना लिखते हैं, अफसाना निगार हैं या किसी तकरीर के जरिए आप पहुंचना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमें पहले तो लिखें और कुछ अगर आपने लिखा है तो उसको हम तक रिसाल करें, तो इंशाल्लाह अगर इस लायक होगा तो उसको जरूर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, तब आपको मधु किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया बहरहाल, आपने जानना चाहा।
0: और हमारे जो एक सबसे अजीज तरीन सामे हैं, हाफिज मसूद साहब।
1: अच्छा,
0: अगर उनका खत हम शामिल ना करें प्रोग्राम में तो मेरा ख्याल है राजेश्वरी जी, हमारा खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम अधूरा रह जाए।
1: जाहिर सी बात है, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बगैर महफिल भी अधूरी होती है और प्रोग्राम भी।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे हाफिज मसूद साहब ने 3 प्रोग्राम के मुतालिक खत इरसाल किया है। खत के लिए शुक्रिया, महफिल शायरी और अफसाना, दुनिया के नक्शे में आदमी। खत के लिए शुक्रिया के मुतालिक हाफिज मसूद साहब लिखते हैं, बाद अर्ज ये कि आज 30 अप्रैल 2026 बरोज जुमेरात खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम सुनकर बेहद मुतासिर हुआ। इस प्रोग्राम में कर्ब-ओ-जवार के अलावा दूर दराज से भी काफी खत मौसूल हुए, जिन्हें मोहतरमा शाज़िया खान

0: साहिबा ने अपने बेहतरीन अंदाज में पढ़ा और मोहतरम सुरेंद्र राजेश्वरी साहब ने खूब खूब पजीराई की। आज के प्रोग्राम में उस्ताद मोहतरम सैयदुल हसन खां गुहर खैराबादी के कलाम की तारीफ और अपने बेहतरीन दोस्त महबूब खैराबादी का लाजवाब खत सुनकर दिल बाग बाग हो गया। मैं इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए मोहतरम आसिफ इकबाल साहब, सुरेंद्र राजेश्वरी साहब, मोहतरमा शाजिया खान साहिबा और आकाशवाणी लखनऊ के सभी जिम्मेदारान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अगला खत अफसाना दुनिया के नक्शे में आदमी के मुतालिक हाफिज मसूद साहब लिखते हैं कि उमैर साहब की मेजबानी में सुनकर बहुत अच्छा लगा, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। यकीनन अफसाना मुख्तसर होने के साथ साथ कम वक्त में भी कारी को सोचने पर मजबूर करता है। आज के अफसाने का मौजू था दुनिया के नक्शे में आदमी, जिसे अफसाना निगार शाहिद अख्तर साहब ने बेहतरीन लबो लहजे में पेश किया, जिसे सुनकर दिल बाग बाग हो गया। अफसाने का अहम किरदार मुजीब, जिसे पढ़ाई का शौक, बाप गुस्से में चूर, माँ मोहब्बत की पैकर, दूसरे गुर्बत, किताब और अखबार पढ़ने का मंजर, बाप के सवालात, मुजीब के जवाबात पर बेहतरीन रोशनी डाली गई। इस बेहतरीन अफसाने के लिए शाहिद अख्तर साहब को दिली मुबारकबाद। आखिर में कलाम शायर के तहत मोहतरमा शगुफ्ता अंजुम साहिबा ने अपने बेहतरीन तरन्नुम में उम्दा कलाम पेश किया, जो बहुत अच्छा लगा और क्या खूब शेर पढ़ा। इश्क है आग का दरिया, ये बुजुर्गों ने कहा, खुद को इस पार से उस पार करूं या ना करूं। इस बेहतरीन पेशकश के लिए मोहतरम आसिफ इकबाल साहब, सैयद मोहम्मद उमैर साहब, शाहिद अख्तर साहब, शगुफ्ता अंजुम साहिबा और आकाशवाणी लखनऊ की पूरी टीम को दिली मुबारकबाद। इसी के साथ इनका जो अगला खत है वो हमारे प्रोग्राम महफिल शायरी के मुतालिक है, जिसके मुतालिक ये लिखते हैं, आकाशवाणी लखनऊ से नशर उर्दू प्रोग्राम मोहतरम शमसुल आरफीन साहब की शानदार निजामत और बेहतरीन मेजबानी में बहुत अच्छा लगा, जिसमें बेहतरीन शोराए कराम अतीक फतेहपुरी, सूफी गोंडवी और आमिर मुख्तार साहबान ने शिरकत की और अपने उम्दा कलाम से तमाम सामईन को महजूज फरमाया। बेशक अतीक फतेहपुरी साहब एक उम्दा शायर के साथ साथ बेहतरीन तरन्नुम के भी मालिक हैं। उन्होंने क्या खूब पढ़ा, अपने दुश्मन को भी सीने से लगाया मैंने। इनके अलावा सूफी गोंडवी और आमिर मुख्तार साहबान ने भी बहुत उम्दा कलाम सुनाया, खुसूसन आमिर मुख्तार साहब का अंदाज कलाम तरन्नुम और ये शेर, लिख रहा है कसीदे जालिम के, हो गया कितना शर्मसार कलम, बहुत अच्छा लगा। इस बेहतरीन पेशकश के लिए मोहतरम आसिफ इकबाल साहब, शमसुल आरफीन साहब, सभी शोराए कराम और आकाशवाणी लखनऊ की पूरी टीम को दिली मुबारकबाद।
1: शाजिया, क्या खूब, वाकई आपने भी कहा कि अगर हाफिज मसूद साहब का खत न पढ़ा जाता
0: जी
1: तो शायद प्रोग्राम की खूबसूरती में वो बात नहीं होती
0: जी।
1: कितना
0: चांद न लग पाते,
1: कितना तफसील से सारे प्रोग्राम को सुनना, पहले खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम, महफिल शायरी, अफसाना इन्होंने सुना, दुनिया के नक्शे में आदमी। भाई हाफिज मसूद साहब कैसे शुक्रिया अदा करें कि इतना कीमती वक्त आप आकाशवाणी के इस उर्दू प्रोग्राम को देते हैं और जो हमारी कोशिश है आप तक पहुंचने की, तो ये अंदाजा होता है आपके खतों को पढ़ करके, देख करके, कि कितना मुश्किल होता है किसी के लिए जरा से भी वक्त निकालना। और आपने वो भी, बल्कि 9:30 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, ऑफिस के जाने का भी वक्त होता है, कहीं बाहर काम जाने का भी वक्त होता है, लेकिन बावजूद इसके कि आप न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए या घर में होते हैं तो रेडियो सेट के जरिए हमारे सारे प्रोग्राम को आप सुनते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हम कैसे शुक्रिया अदा करें आपका। लेकिन फिर भी रिवायतन ये कहना हो गई कि आपकी समातों का भी है शुक्रिया हाफिज मसूद साहब।
0: ये लिखने वाली हैं सिदरा, जो बैंगलोर से लिख रही हैं, और ये लिखती हैं, मुझे आपके सारे उर्दू प्रोग्राम बेहद पसंद हैं, जो बेहद मालूमाती और नए तर्ज बयान पर मुश्तमिल होते हैं।
1: शाजिया जी, आपने जिस मोहब्बत से, जितने प्यार से इस खत को पढ़ा है, हम कैसे शुक्रिया अदा करें आपका।
0: तो इसी के साथ आज का हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम खत के लिए शुक्रिया यही इख्तिताम पजीर होता है।
1: लेकिन इससे कबल की रुख्सत हो, शाजिया खान साहब, पहले एड्रेस भी जरूर बता दें।
0: बिल्कुल, आप हमें ईमेल के जरिए अपने खत भेज सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है kklsurdu@gmail.com। साथ ही अब हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए पेश खिदमत है और वो है 7991778157।
1: इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं राजेश्वरी,
0: मैं शाजिया खान
1: आपसे इजाजत लेते हैं।
0: आदाब।
2: उर्दू कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम। सदाकार थे सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान, पेशकश आसिफ इकबाल की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से पेश किया जा रहा था। 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज सुनेंगे मगन मिश्र के गाए अवधि लोक गीत। मगन मिश्र के स्वर में पहले प्रस्तुत है देवी गीत, जिसके बोल हैं जियरा आनंद होई।

जियरा आनंद होई जाए हो जहां उतरे भवानी। अभी आप सुन रहे थे मगन मिश्र के स्वर में देवी गीत, और अब प्रस्तुत है मगन मिश्र के स्वर में गंगा गीत, जिसके बोल हैं चलो करें स्नान।

चलो करें गंगा स्नान, ओ गंगा की लहर लहरिया। अभी आप सुन रहे थे मगन मिश्र के स्वर में गंगा गीत। लोक रंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मगन मिश्र के गाए अवधि लोकगीत। संगत करता थे नाल पर अवध बिहारी वर्मा, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर संजय श्रीवास्तव। आपको बता दें मगन मिश्र के गाए अवधि लोकगीत का आप आनंद ले सकेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर।

श्रोताओं, समय है आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम का। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम सबसे पहले आपको सुनवाएंगे अनुज श्रीवास्तव और ममता सक्सेना के स्वर में देवी गीत। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद, शारदा गुप्त, मौसम रुद्र रिद्धि, ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश रानी, कुसुम पलक और पंखुरी, राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत, सोनाली सूर्यांशी, कोमल मेनका, माधवी साध्वी, तन्मयराज और गुनगुन ने। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं देवी गीत स्वर अनुज श्रीवास्तव और ममता सक्सेना का।

वीणा बजाओ मोरी माँ आज मोरे अंगनामा। अभी आप अनु श्रीवास्तव और ममता सक्सेना के स्वर में देवी गीत सुन रहे थे और अब प्रस्तुत है छप रहिया अक्रम अंजाना के स्वर में। इसे सुनने के लिए पत्र भेजा है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, शीतल तरंग, अर्जुन सिंह भदौरिया, शिवबख्श सिंह ने, ग्राम कैथनपुरवा, पोस्ट सातनपुरवा, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश से।

अक्रम अंजाना के स्वर में अभी आप छपरहिया सुन रहे थे। इसी के साथ आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। श्रोताओं, आप पुनः सुन सकेंगे 10:20 से आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। बिहार के गया जी में कल महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले पर चिंता व्यक्त की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप के बीच यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। कोलंबिया में आज राष्ट्रपति पद के लिए के चुनाव के लिए मतदान। और बैडमिंटन सिंगापुर ओपन के पुरुष डबल्स फाइनल में आज सात्विक साई रज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का

0: प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन हाउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया जी के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल गौसी ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया परमाणु बिजली संयंत्र में टरबाइन बिल्डिंग पर ड्रोन हमले की खबर के बाद चिंता प्रकट की है। IAEA ने बताया कि टरबाइन बिल्डिंग पर ड्रोन हमले से उसकी दीवार में छेद हो गया। IAEA की टीम ने नुकसान का जायजा लेने के लिए उस इलाके में जाने की अनुमति मांगी है। एक रिपोर्ट।
1: महानिदेशक राफेल गौसी ने चेतावनी दी है कि परमाणु केंद्रों पर या उसके आसपास होने वाले किसी भी हमले से गंभीर खतरा पैदा होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों को किसी भी हाल में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। रूस के सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने कहा कि कल यूक्रेनी ड्रोन ने यूनिट 6 के टर्बाइन आइलैंड पर हमला किया। इससे एक ढांचे को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मुख्य उपकरणों पर कोई असर नहीं पड़ा। अभी किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। ज़ापोरिज़िया संयंत्र यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक है। यह मार्च 2022 से रूस के नियंत्रण में है। IAEA ने इस स्थल के आसपास सैन्य गतिविधियों से होने वाले खतरों के बारे में बार बार चेतावनी दी है और परमाणु बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की मांग की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधोनाम गेब्रेसियस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधोनोम का मत है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। पूर्वी कांगो के बुनिया में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के प्रतिबंध बीमारी के नियंत्रण को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम पारदर्शिता और आपसी विश्वास को भी कमजोर करते हैं। कांगो में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इबोला के 900 से अधिक संदिग्ध मामलों और 220 से अधिक संदिग्ध मौतों की जानकारी दी है। दूसरी ओर पड़ोसी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में नए संक्रमण सहित कुल 900 मामलों की पुष्टि हुई है। अधिकारियों के अनुसार ये प्रकोप इबोला के बुंडी बुगियो स्ट्रेन से संबंधित है। इसके लिए फिलहाल कोई स्वीकृत टीका और विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान निर्धारित है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। किसी उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: वर्तमान राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि कोलंबिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल एक बार और 4 साल के लिए होता है। पेट्रो देश के आधुनिक इतिहास के पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं। सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन की ओर से सीनेटर इवान सेपेडा मुख्य उम्मीदवार हैं। वे पेट्रो की सामाजिक और आर्थिक नीतियों तथा देश में शांति स्थापित करने की उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का वादा कर रहे हैं। वहीं दक्षिणपंथी उम्मीदवार एबलार्डो डेला एस्प्रियला कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर सीनेटर पालोमा वालेंसिया सुरक्षा और आर्थिक विकास पर आधारित रूढ़िवादी नीतियों के साथ मतदाताओं का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ ने भारत को क्षेत्र

0: स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बताया है। उन्होंने सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला संवाद में भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन का महत्वपूर्ण आधार बताया। श्री हेक्सेथ ने भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा औद्योगिक क्षमताओं की भी खुलकर प्रशंसा की। श्री हेक्सेथ ने कहा कि भारत और अमरीका सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के लिए संयुक्त उत्पादन पहलों पर काम कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने संबंधी प्रस्तावित समझौते के बीच ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.73% गिरकर $87.36 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि ब्रेंट 1.77% गिरकर $92.05 प्रति बैरल पर स्थिर रहा। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने AUKUS सुरक्षा समझौते के तहत सैन्य क्षमता बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा मजबूत करने और समुद्र के भीतर केबल की सुरक्षा के लिए पानी के नीचे ड्रोन तकनीक विकसित और तैनात करने की संयुक्त भागीदारी की घोषणा की। इन नेताओं ने सिंगापुर में आयोजित शंग्रीला संवाद सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि अंडरसी व्हीकल UUV तकनीक के अगले वर्ष तक तैयार होने की संभावना है। ये सेंसर शस्त्र प्रणाली और अन्य क्षमताओं से युक्त होगी और समुद्र की तलहटी में बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करेगी, निगरानी रखेगी तथा सैन्य अभियानों में मदद करेगी। रूस ने आर्मेनिया में अपने राजदूत सर्गेई कोपेरिकिन को परामर्श के लिए मॉस्को वापस बुला लिया है। 7 जून को होने वाले चुनाव से पहले यूरोपीय संघ के साथ संबंध मजबूत करने के आर्मेनिया के प्रयासों को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर ऐसा किया गया है। और अब खबरें खेल जगत से।
1: सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजल अल्फियान से होगा। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को हराया था। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मन PSG ने लगातार दूसरी बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। बुडापेस्ट में फाइनल में PSG ने आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। और अब बात करें महिला क्रिकेट की, तो ब्रिस्टल में खेले गए T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। इसके अलावा IPL क्रिकेट के फाइनल में आज गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। बिहार के गया जी में कल महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले पर चिंता व्यक्त की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप के बीच यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देश से अपने फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। कोलंबिया में आज राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। स्वागत है एक बार फिर से आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम में। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे संजोली पांडे के स्वर में खेमटा। इसे सुनने के लिए पत्र भेजा है मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर, जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, संदीप, अनंत, नीतू, प्राची और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने।

तारामती करती रुदनवा। अभी आप संजोली पांडे के स्वर में खेमटा सुन रहे थे और अब आइए सुनते हैं रश्मि चौधरी के स्वर में लोक भजन, जिसके बोल हैं ऐसे निठुर घनश्याम। और सुनने के लिए पत्र भेजा है बनोसा दरियापुर महाराष्ट्र से राजेश चव्हाण, संदीप किशोर, सचिन और पूरा चव्हाण परिवार ने।

0: ऐसो निठुर घनश्याम, अभी आप रश्मि चौधरी के स्वर में लोक भजन सुन रहे थे। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं आपकी पसंद के लोक गीत कार्यक्रम।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है डॉक्टर रंजना अग्रहरि के स्वर में सोहर। इसे सुनने के लिए पत्र भेजा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मी का बलविंदर जैतेक और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने।

करुआडीही प्रतापपुर प्रयागराज से पत्र भेजा है रामप्रकाश गौतम, मंजू, संतोष प्रधान, राजेंद्र यादव और रामचंद्र गौतम ने, और सुनना चाहते हैं मीनू खरे और रश्मि खरे के स्वर में बारामासा।

लैले जय हो ऊधो बाबा रे पाती हबरी। अभी आप सुन रहे थे मीनू खरे और रश्मि खरे के स्वर में बारहमासा। और अब आइए सुनते हैं संजू मिश्रा के स्वर में गंगा गीत। इसे सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है गांव भड़भूजी जिला आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ, रीना, सुषमा, दुर्गा, परी, आयुष, सुभाष, मधुबाला, ओम प्रकाश और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने।

0: गंगा किनारे लगा मेला, चलो सखी गंगा नहाई। अभी आपने संजू मिश्रा के स्वर में गंगा गीत सुना। आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: देवरी भाटापारा से पत्र भेजा है गन्नूलाल, के आर साहू, अश्विनी, गणेश मिस्त्री से और दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी, शुभम, सौरभ रावत ने। और आपने फरमाइश की है डॉक्टर अंजू भारती के स्वर में कहरा सुनने की।

डॉक्टर अंजू भारती के स्वर में अभी आपने कहरा सुना। इसी लोकगीत के साथ ही आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैक चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
13: नमस्कार सर। नमस्कार।
14: नमस्कार सर।
2: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है।

0: कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा, तो

0: ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है। बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना। कच्चे आम का स्वाद

गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर

भारतीय को गर्व से भर दिया। नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रो

इकोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की

0: समस्या बहुत परेशान करती थी, उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी से मन की बात। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है मन की बात प्रोग्राम का उर्दू तर्जुमा।
3: मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे लोग कौमी मफाद और समाजी भलाई के लिए ऐसी शानदार खिदमात अंजाम दे रहे हैं और जब इनके बारे में सुनते हैं तो हमें एक नई तरगीब मिलती है। आज के प्रोग्राम का आगाज मैं एथलेटिक्स में मुल्क की एक ऐसी कामयाबी से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची

0: करके दिखाएगा मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ दो दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं। एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरे प्यारे हिम्मतलों, इस वक्त मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं। इस मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पानी पीते रहिए और अगर धूप में निकलना ज़रूरी हो तो एहतियात के साथ निकलिए। इस सिलसिले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जारी करदा हिदायत को भी ज़रूर याद रखें। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी का मुकाबला करने का एक तरीका कई दफ़ा बावर्ची खाने में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे खानों और मशरूबात का अंदाज भी बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगती है और कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी मशरूबात का दौर। देसी मशरूबात से आप भी वाकिफ हैं। अगर आप शुमाली हिंदुस्तान जाएं तो आपको आम पन्ना मिलेगा, कच्चे आम का मज़ा और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ तकरीबन हर खाने की साथी बन जाती है। बिहार, झारखंड और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोकण और गोवा में कोकम शरबत और सोल कढ़ी। जनूबी हिंदुस्तान में पानकम, नीरमोर और संबारम, जबकि ओडिशा में बेलपन्ना सिर्फ मशरूबात नहीं बल्कि मकामी सकाफत और रिवायत का हिस्सा है। इन सब में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी नजर आती है। और एक बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारी रसोई से निकली हैं, हमारे खेत खलिहान से निकली हैं। इनके पीछे कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं बल्कि नस्लों का तजर्बा और दानाई इसमें शामिल है। आप भी गर्मियों में इन देसी मशरूबात का भरपूर लुत्फ उठाइए। साथियों, गर्मियों के साथ ही घर में एक और चीज़ का जिक्र शुरू हो जाता है और वो है आम। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर हो जहां गर्मियों में आम का जिक्र न होता हो। हर इलाके का अपना आम, अपना जायका और अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आम रस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की खास बात होती है, पकने के बाद भी इसका रंग अक्सर सब्जी रहता है। बिहार का जरदालू अपनी खुशबू के लिए मशहूर है। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। जनूबी हिंदुस्तान जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर और उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का स्वर्णरेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका जायका भी बदल जाता है। और साथियों, आम का ये सफ़र गांव से आलमी मंडियों तक पहुंच रहा है। आज मन की बात के ज़रिए मैं आम की काश्त से वाबस्ता अपने किसान भाई बहनों की तारीफ करूंगा। आप मुल्क की ज़रई मीशत के लिए एक आम किसान नहीं, बहुत ख़ास हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मियों के इन दिनों में वैसे तो छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसी क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका दाखिला लेने का मन करेगा। साथियों, ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हों, नौजवान भी और बुज़ुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, न कोई बड़ी इमारत, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे दिलचस्प बात वहां क्लास दरिया में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकी कोशिश है। केरलम के आलवा में साजी वाला शेरिल नामी एक शख्स ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहा है। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैराकी सीख चुके हैं। साजी जी ने माजूर बच्चों को भी तैराकी सिखाई है। इस कोशिश के पीछे एक दर्दनाक वाकया भी छुपा है। चंद साल पहले एक किश्ती हादसे में कई तलबा जान की बाजी हार गए थे। इस वाकये ने साजी जी को अंदर तक झिझोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि अगर इन बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जातीं। बस यहीं से शुरू हुई उनकी ये मुहिम। साथियों, साजी वाला शेरिल जी की ज़िंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। खिदमत के लिए हमेशा बड़े वसाइल की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरी होता है एक अच्छा इरादा और मुसलसल कोशिश। इसी जज्बे के पल पर हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। मेरे प्यारे हमवतनों, गुज़श्ता दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का मौका मिला। वहाँ मैं कई मीटिंगों में शरीक हुआ। इसी दौरान एक ऐसा लम्हा आया जिसने हर हिंदुस्तानी को फख्र से भर दिया। नीदरलैंड में मुनक़िद खुसूसी तकरीब

में चोला दौर की कदीम तांबे की तख्तियां भारत को वापस सौंपी गईं। इस तकरीब में नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। इन तांबे की तख्तियों की वापसी पर मुझे मुल्क और बैरून मुल्क से मुसलसल पैगाम मौसूल हो रहे हैं। लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं और फख्र महसूस कर रहे हैं। दुनिया भर में तमिल बिरादरी में भी इस हवाले से खासा जोश है। साथियों, इन तांबे की तख्तियों के बारे में लोगों में काफ़ी तजस्सुस भी है, इसलिए आज मैं इससे मुतालिक चंद बातें आपके साथ मुश्तरक करना चाहता हूँ। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की तख्तियाँ शामिल हैं। ये बुनियादी तौर पर राजा राजेंद्र चोला अव्वल की जानिब से अपने वालिद राजा राज राजा चोला के एक वादे को पूरा करने से मुतालिक हैं। इनमें आनई मंगलम नामी गांव को एक बौद्ध विहार के तौर पर अतीय किए जाने का जिक्र मिलता है। इन तख्तियों में चोला खानदान की कामयाबियों का भी तफसीली बयान मौजूद है। इनसे मालूम होता है कि चोला सल्तनत की बहरी ताकत कितनी मजबूत थी। जुनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात के बारे में भी अहम मालूमात हासिल होती है। चोला सल्तनत की अजीम तारीख और सकाफत पर हम सबको फख्र है। साथियों, हमारी हुकूमत भारत की ऐसी कीमती तारीखी विरासत के तहफ्फुज़ के लिए मुसलसल काम कर रही है। इसी सिलसिले में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक अहम दरियाफ्त हुई है। यहाँ 3 नायाब तांबे की तख्तियाँ मिली हैं। ये पांडुवंशी खानदान के हुक्मरान महर्षि बाला अर्जुन के दौरे हुकूमत से वाबस्ता मानी जा रही हैं। माहिरीन के मुताबिक ये नवेश्ताई जात 6 और 7 सदी ईस्वी के हैं, यानी तकरीबन 1400 से 1500 साल पुराने। ये तांबे की तख्तियाँ कदीम ब्राह्मी दर्शन खत और पाली जबान में लिखी गई हैं। इनसे उस दौर की हुकूमती इंतजामिया, मजहब और सकाफत के बारे में अहम मालूमात हासिल होती हैं। साथियों, हम हिंदुस्तानियों में फलकियात यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमेशा खासी दिलचस्पी रही है। हमारे मुल्क में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज यानी रसदगाहें मौजूद हैं। यहाँ हैरतअंगेज रियाजती दरियाफ्ती हुई हैं। समंदरी सफ़र हो, पंचांग हो या हमारे त्यौहार, इन सब का ताल्लुक आसमान और सितारों से रहा है। हमारे यहाँ फलकियात ने हर नस्ल में तजस्सुस पैदा किया है, इसे तहकीक और दरियाफ्त की तरफ रागिब किया है और आज के नौजवानों में भी इसके लिए काफ़ी जोश नज़र आता है। आजकल आप भी देखते होंगे कि मुल्क भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी सरगर्मियाँ दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में मालूमात मिली। यहाँ मुशाहिदाती सेशन मुनक़िद किए जाते हैं। इस इदारे ने देही इलाकों में फलकियात को मकबूल बनाने का एक मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नामी एक टीम ने 30 घंटे पर मुश्तमिल एक नहायत मुनफरिद कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात के वक्त सितारों को देखना बजात खुद एक हैरत अंगेज तजर्बा है। एस्ट्रो केराला नामी इदारा रात के मुशाहिदाती कैंप और वर्कशॉप्स का इनेकाद करता है। यहाँ नौजवान दूरबीन बनाना और सितारों के नक्शे इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलात से लेकर कच्छ के रन तक मुतादित फलकियाती तकरीबात मुनक्किद की हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी फलकियात के कदीम तरीन इदारों में से एक है। यहाँ मुशाहिदाती सहूलियात के साथ किताबें, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सहूलत भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूँगा, जो तलबा की क्यादत में कायम एक कौमी नेटवर्क है और मुल्क भर के फलकियात और फलकी तबीयात के क्लबों को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी दिलचस्पियों के लिए वक्त निकालना और मुसलसल कुछ नया सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। मैं नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा कि किसी फलकियाती क्लब से ज़रूर वाबस्ता हों और इन छुट्टियों में किसी प्लैनेटेरियम का भी ज़रूर दौरा करें। साथियों, जो लोग मन की बात प्रोग्राम टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो गुज़श्ता दिनों बहुत ज़ेर बहस रही। इसमें कुछ लोग इंतहाई सब्र और एहतियात से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि इस पूरी कार्रवाई में तकरीबन 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इस कामयाबी में भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस ने अहम किरदार अदा किया। ये वाकया उत्तर प्रदेश का है, जहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे वक्त भी नमामि गंगे मुहिम के तहत तैयार की गई ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत एहतियात के साथ डॉल्फिन को बाहर निकाला गया, उसका मायना और इलाज किया गया और फिर

0: लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उनसे सीखिए और अगर मुमकिन हो तो खुद भी किसी नेक काम का हिस्सा बनिए। अगले महीने मन की बात में मजीद ऐसी ही मुतासिर कुन कहानियों के साथ मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात का उर्दू तर्जुमा। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दीजिए प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल मंच।

0: प्यारे बच्चों, जय हिंद।
1: जय हिंद दीदी।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को जय हिंद। हाजिर हैं हम लेकर आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल मंच। आज आपके साथ हूँ मैं स्वरा।
3: मैं युसरा खान।
0: और मैं आपकी राजलक्ष्मी दीदी। स्वागत है आप सभी का। युसरा और स्वरा, आजकल तो खूब मस्ती हो रही होगी।
2: जी दीदी, गर्मी की छुट्टियों का पूरा आनंद लिया जा रहा है।
3: हाँ स्वरा, मैं भी खूब इंजॉय कर रही हूँ। अपनी सिंगिंग को ढेर सारा टाइम दे रही हूँ।
0: अरे वाह, मतलब समय का पूरा सदुपयोग हो रहा है। जब छुट्टियाँ होती हैं तो हमारे मम्मी पापा घूमने का भी प्रोग्राम बनाते हैं। जिनके साथ हम पूरा साल नहीं रह पाते, जिनसे नहीं मिल पाते, वहाँ भी जाना होता है।
2: जी दीदी, हर बार छुट्टियों में मैं अपने घर जरूर जाती हूँ।
3: अपने घर?
2: हाँ युसरा, जहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं, हमारा घर वही है। पता है, वहाँ बहुत ही मजा आता है।
0: आएगा क्यों नहीं, अपना घर अपना ही होता है। और फिर सारे कजिन्स मिलते हैं। मुझे भी अपने बचपन की बहुत याद आती है। हम लोग तो अपनी दादी के साथ ही रहते थे, तो छुट्टियों में नानी के यहाँ जाया करते थे।
3: अच्छा दीदी।
0: हाँ युसरा, मेरी नानी का घर जहाँ था, वहाँ की लोकेशन बहुत ही सुंदर थी। गांव के किनारे नदी बहती थी, सामने आम का बाग था, नदी के पास मंदिर और बहुत सारे खेत और बाग थे। आप लोगों को आश्चर्य होगा, गर्मी की दोपहर में भी वहाँ गर्मी नहीं लगती थी।
2: मुझे कोई आश्चर्य नहीं दीदी, मैंने भी ऐसा गांव में देखा है। सचमुच वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती जितनी यहाँ शहर में होती है।
0: सही कहा स्वरा, हम लोग दोपहर में भी घर में नहीं बैठते थे। बाग में बने मंदिर में हमारा अड्डा हुआ करता था। नदी में नहाना, आम जामुन खाना, पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई खेलते कूदते, कब दिन बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। और फिर रात में

0: खुले आसमान के नीचे सबकी चारपाइयां लग जाती थी। तब शुरू होता था पहेलियों, कहानियों, चुटकुलों का दौर, हंसने हंसाने की बातें। हमारी नानी की कहानी से कहानी निकलती ही जाती थी और वो कहानी कभी खत्म ही नहीं होती थी। हमारी छुट्टियाँ खत्म हो जाती थी।
1: अच्छा, इतनी बड़ी कहानी होती थी?
2: होती नहीं थी, नानी उसको खींच कर बड़ा बना देती थी, क्यों दीदी?
0: हाँ बिल्कुल सही स्वरा, तब हम लोगों के लिए नानी के गांव के सभी लोग हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे। बुजुर्ग हैं तो नानी नाना, मम्मी की उम्र के हैं तो मौसी मामा, सबसे हमारा नाता था। क्या मजाल हम किसी को वहाँ नाम लेकर बुलाएं, तुरंत टोक दिया जाता था। हम अपने से सभी बड़ों का सम्मान करते थे।
1: हम भी अपने बड़ों की बात मानते हैं दीदी, लेकिन हाँ, केवल अपने घर के लोगों की।
2: हाँ, अगर कोई दूसरा हमें टोक देता है तो बुरा लगता है।
0: हाँ, लेकिन हमारे बचपन में ऐसा नहीं था स्वरा। गांव का हर बड़ा हमें गलत करने पर टोक देता था और हमें बुरा भी नहीं लगता था। अगर कभी लगता भी था तो घर में मम्मी पापा से शिकायत करने पर यही सुनने को मिलता था, तुमसे बड़े हैं, टोक दिया तो क्या हो गया, उन्हें दुनिया जहान के बारे में तुमसे ज्यादा पता है, सही बात पर तो नहीं टोका, बस बात खत्म।
1: ओह, आज तो ऐसा नहीं है दीदी।
2: हाँ, कई बच्चों को तो मम्मी पापा का टोकना भी बुरा लगता है।
0: इसीलिए तो आज इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमें अपने से बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए।
1: जी दीदी, हम भी उसकी कोशिश तो कर ही सकते हैं।
2: बिल्कुल युसरा, अब से हम भी थोड़ा टाइम बड़ों के साथ बिताएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी बात मानेंगे।
0: ये हुई ना बात, नेक काम में देरी नहीं करना, आज से ही इस पर अमल करना, और फिर हर तरफ होगा खुशनुमा माहौल, सात सुरों से सजा मधुर संगीत, हंसी मुस्कुराहटें, खुशियाँ और
3: मुस्कुरा

0: वाह दी, मैं तो सच में तितली बनकर उड़ने लगी थी।
1: सचमुच गीत सुनकर तो बहुत ही मजा आया।
2: मजा आया ना, इसीलिए तो हमारी पिटारी से ये गीत उछलकर बाहर आ गया।

0: गीता, स्वरा और युसरा आज है 31 मई और आज हम मना रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस, मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे।
1: अच्छा दीदी, तो ये दिन क्यों मनाया जाता है?
2: स्वरा, दुनिया में हर साल लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग तंबाकू के सेवन से होने वाली गंभीर समस्याओं के बारे में जाने, इसका सेवन ना करने के बारे में जागरूक रहें।
3: दीदी, जब ये इतनी हार्मफुल है तो लोग इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं?
2: ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है युसरा। लोगों को अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए और इसके गंभीर दुष्प्रभावों को देखते हुए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब बातों का ताना बाना लेकर माया मिश्रा दीदी ने आप लोगों को सुनाने के लिए बुनी है एक कहानी। इस कहानी का शीर्षक है कोशिश। तो सुननी है कहानी सभी को?
1: जी दीदी, बिल्कुल सुननी है।
2: हमारे बाल साथी भी सुने ये कहानी कोशिश माया मिश्रा दीदी से।
4: शाम के 4 बज रहे थे। अजय बड़े मजे में साइकिल की घंटी बजाता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपने घर की ओर चला जा रहा था। वह बहुत खुश था। आज क्लास टेस्ट पे उसके सबसे ज्यादा नंबर आए थे। सब ने उसके लिए तालियां बजाई थी क्लास में। ट्यूशन में भी सर ने उसकी बहुत तारीफ की थी। आज घर पहुंचकर मम्मी को बताऊंगा और आइसक्रीम की डिमांड भी करूंगा, अजय मन ही मन सोचता हुआ साइकिल की स्पीड को बढ़ाते हुए घर की ओर भागा जा रहा था। घर पहुंचकर लॉन में अपनी साइकिल खड़ी कर घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे घर के अंदर से मम्मी पापा की जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई पड़ी। तुम्हें पता है मेरी इम्यूनिटी वीक है, बेटे को भी जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है, फिर भी तुम्हारी सिगरेट की आदत नहीं छूट रही है, मम्मी कह रही थी। मैं सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा, समझी तुम? नहीं छूट रही मुझसे, और मैं बस एक सिगरेट का ही तो शौक रखता हूँ। तुम्हें पता है कितना स्ट्रेसफुल रहता हूँ, उसे कम करने की दवा है यह, समझी? पापा ने जवाब दिया। किसी ने अजय की तरफ ध्यान नहीं दिया। अजय चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर लेट गया। ठीक ही तो कह रही है मम्मी, सिगरेट को तो छोड़ ही देना चाहिए, टीचर भी बताती है कि सिगरेट से बहुत नुकसान पहुंचता है, लेकिन पापा के लिए तो यह दवा है। सोचते सोचते अजय सो गया। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। दूसरे दिन सुबह उसने चुपचाप नाश्ता किया, अपना टिफिन बॉक्स उठाया और स्कूल चला गया। दिन भर गुमसुम रहा। गेम पीरियड में जाकर वह ग्राउंड के बेंच पर बैठ गया। कुछ देर में उसका बेस्ट फ्रेंड रोहन उसे खोजता हुआ आ गया। चलो ना अजय, चलकर फुटबॉल खेलते हैं, रोहन भी बेंच पर बैठते हुए बोला। बोलो ना, क्या हो गया है? रोहन उसी के पास बिल्कुल सट के बैठ गया। क्लास में भी आज बहुत चुपचाप थे। अब अजय रोहन की ओर देखकर रो पड़ा। अजय और रोहन क्लास के सबसे तेज विद्यार्थी थे, दोनों पक्के दोस्त थे। खेल कूद पढ़ाई लिखाई स्कूल की सभी प्रतियोगिताओं में दोनों हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अजय बहुत हंसमुख था, हमेशा खुश रहने वाला। आज उसे रोता देखकर रोहन चिंतित हो गया। वह रो ही जा रहा था, कुछ देर तक रोता रहा, फिर अजय ने रोहन को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, रोहन पापा, पापा। क्या पापा? रोहन घबराकर जोर से बोल पड़ा। अजय ने कहा, पापा बहुत सिगरेट पीते हैं रोहन, शाम को जब घर आते हैं पूरा घर सिगरेट के धुएं से भर जाता है, मुझे और मम्मी दोनों को खांसी आने लगती है। मम्मी ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानते। ओह, तो ये बात है, उफ, डर गया था मैं तो, रोहन ने कहा। हाँ, डरने की ही तो बात है रोहन, तुम्हें नहीं पता क्या कि स्मोकिंग से लंग कैंसर हो जाता है? अजय ने कहा। हाँ पता तो है, बट ये अंकल की लत छुटाई कैसे जाए? साइंस की क्लास में मैम ने कितनी डिटेल में समझाया था स्मोकिंग और तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में, रोहन ने कहा। स्मोकिंग कैंसर, स्ट्रोक और COPD के कारण भी होते हैं, इसलिए मुझे पापा की बहुत चिंता होने लगी है। ये सिगरेट नहीं है, ये जहर है, जहर, अजय कहे जा रहा था। मम्मी की तबीयत कितनी खराब थी अभी पिछले महीने, उनके ऊपर डायरेक्ट तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है सिगरेट का, लेकिन हाँ उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उन्हें डॉक्टर ने किसी भी तरह के इन्फेक्शन या किसी भी तरह और जैसे धुएं इन सब चीजों से बचकर रहने के लिए कहा है। देखो ना, मेरी खांसी भी तो ठीक नहीं हो रही थी, इसका भी रीजन कहीं ना कहीं मुझे सिगरेट ही लग रहा है। हाँ, रोहन ने कहा। चलो अच्छा, अभी आज घर चलते हैं, फिर कुछ ना कुछ सोचेंगे और कुछ रास्ता निकालेंगे। दोनों घर चले गए। दूसरे दिन स्कूल पहुंचते ही दोनों अपनी मैम से पूछकर कंप्यूटर लैब में जाकर बैठ गए। वहां उन्होंने तंबाकू से होने वाले नुकसान और उसे कैसे दूर किया जाए इसके बारे में पूरी जानकारी ली। फिर उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से कुछ ऐसा किया जाए कि अजय के पापा ठीक हो जाएं, उनकी सिगरेट की लत छूट जाए। अब उन दोनों ने अजय के पापा के सिगरेट की लत को छुड़ाने की मुहिम छेड़ सी दी। रोहन

अजय के पास पहुंचा और धीरे से कहा, सुनो अजय, तुम चाहो तो तुम्हारे पापा सिगरेट छोड़ सकते हैं, या कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हो तुम। अजय ने पूछा, कैसे? एक तरीका है। हाँ हाँ बताओ तो क्या है वो। उसने कहा, ठीक है मैं बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इसके लिए तुम्हें मार भी पड़े और डांट भी पड़ जाए, तो सावधान रहना। रोहन बोला, अच्छा ठीक है बताओ तो। अजय ने पूछा, तो कल से तुम एक काम करना, घर जाना और पापा की सिगरेट के डिब्बे से दो सिगरेट रोज निकालकर अपनी अलमारी में छिपा देना। जब तक तुम पकड़े ना जाओ तब तक तुम ऐसा ही करते रहना, और एक दिन जब देखना कि पापा घर आ रहे हैं तो सिगरेट झूठ मूठ जलाकर कहीं साइड में खड़े हो जाना। क्या कह रहे हो, मैं चोरी करूं? ये चोरी नहीं है, पापा को सही करने का तरीका है, रोहन कह रहा था। जब अंकल तुमको पकड़ेंगे ना तब देखना क्या होगा। अजय बोल पड़ा, ओहो शायद मुझे बहुत मार पड़ेगी, लेकिन क्या उन पर कोई असर पड़ेगा? कोई और रास्ता भी तो नहीं है, रोहन ने कहा। ठीक है करके देखता हूँ, रोहन कह रहा था। और साथ ही साथ हम लोग स्कूल में भी कुछ ऐसा करते हैं जिससे धूम्रपान निषेध पर कुछ जागरूकता फैलाई जा सके। हाँ ठीक है, चलो मैम से बात करते हैं। अजय और रोहन अपनी क्लास टीचर से जाकर बोले, मैम हम लोग चाहते हैं कि एक नाटक करें, क्योंकि धूम्रपान निषेध दिवस आ रहा है, उस दिन हम लोग अपने स्कूल में एक नाटक करें और सभी पेरेंट्स को बुलाएं, ये आइडिया कैसा रहेगा? टीचर ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है मैं प्रिंसिपल मैम से बात करती हूँ, क्या तुम लोग स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो? दोनों एक साथ बोल पड़े, हाँ मैम बिल्कुल। तो ठीक है जाकर स्क्रिप्ट तैयार करो, मैं मैम से बात करती हूँ। जब दोनों ने मैम को अपनी स्क्रिप्ट दिखाई तो मैम ने कहा, वाह क्या बात है, चलो मैं प्रिंसिपल मैम से बात करती हूँ। जब वो प्रिंसिपल मैम के पास गई तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है उस दिन हम शहर के सीएमओ को भी बुलाते हैं, वो एक अलग तरह का थॉट्स दे पाएंगे उस प्रोग्राम में। अब फिर क्या था, अजय और रोहन पापा को ठीक करने के लिए जोर शोर से लग गए। स्कूल में स्क्रिप्ट की रिहर्सल चल रही थी और दूसरी तरफ घर में पापा के सिगरेट के डिब्बे से एक दो सिगरेट रोज निकाली जा रही थी और उसे अलमारी में रख दिया जा रहा था। एक दिन उसके पापा ने गौर किया, आजकल 3-4 सिगरेट उनके डिब्बे में रोज कम हो रहे हैं। उन्हें शक हुआ तो उन्होंने अजय की मम्मी से पूछा, मुझे लग रहा है मेरे सिगरेट के डिब्बे से कोई सिगरेट निकाल रहा है। कौन निकालेगा, सिगरेट आपके सिवा कोई और पीता भी है क्या, मम्मी बोली। फिर एक दिन उन्हें लगा कि बाथरूम में किसी ने सिगरेट पिया है, अब वो निगरानी रखने लगे। अजय तो यही चाहता था, वो तो इसी मौके की तलाश में था। जब 2 दिन बाद उसके स्कूल में फाइनल प्ले था, उस दिन उसके पापा जब शाम को आए तो उन्होंने देखा कि अजय लॉन में लगे पेड़ के नीचे सिगरेट पी रहा है। अब फिर क्या था, पापा को तो शक था ही, उस दिन उन्होंने अजय को रंगे हाथ पकड़ लिया। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अजय की खूब पिटाई कर दी और अजय चुपचाप पिटता रहा और रोता रहा, कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन अजय स्कूल भी नहीं जा पाया। उसके पापा को थोड़ा पछतावा तो हो रहा था, इसलिए वो अजय के पास गए और धीरे से कहा, बेटा अब सिगरेट कभी मत पीना, ये बहुत नुकसानदेह चीज है। देखो ना मुझे एक बार लत लग गई है और मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये बहुत हार्मफुल है बेटा। अजय ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, पापा मेरे यहाँ प्ले है कल, आप आएंगे ना? हाँ जरूर आऊंगा बेटा, मम्मी भी आएंगी देखने तुम्हारा प्ले, तुम इतने दिनों से रिहर्सल जो कर रहे हो। दूसरे दिन अजय का प्ले था, अजय के पापा मम्मी, रोहन के पापा मम्मी और भी सारे बच्चों के पापा मम्मी प्ले देखने पहुंच गए। चीफ गेस्ट के रूप में शहर के सीएमओ को बुलाया गया। रोहन और अजय ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, दरअसल वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट अजय के घर की कहानी थी, कि किस तरीके से अजय अपने पापा को सिगरेट पीता देख, मम्मी को परेशान होता देख दुखी हो गया था, और किस तरीके से उसने अपने दोस्त से सहायता मांगी तो उसके दोस्त ने उसे क्या तरीका बताया जो अजय ने अपनाया था, किस तरीके से उसके पापा नाराज हुए थे और उसकी पिटाई हुई थी। पिटाई वाली सीन तो बहुत ही ओरिजिनल लग रही थी, क्योंकि पापा से मार खाने के बाद अभी भी अजय के चेहरे पे कुछ दाग और शरीर पर कुछ चोट के निशान बचे हुए थे। अजय ने इतना वास्तविक एक्टिंग किया कि उसके पापा वहीं पर रोने लगे, उन्हें अब सब कुछ समझ में आ रहा था, वो वाकई बहुत शर्मिंदा थे। अजय यही तो चाहता था कि पापा को समझ में आए कि दरअसल सिगरेट कितनी बुरी लत है। प्ले खत्म होने के बाद सीएमओ साहब ने बहुत सारे तरीके भी बताए जिससे कि सिगरेट छोड़ा जा सकता है। अजय ने उसे बहुत ध्यान से सुना, प्ले की बहुत तारीफ हुई और अजय को पुरस्कृत भी किया गया। शाम को जब अजय अपने मम्मी पापा के साथ घर आया तो उसके पापा ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं समझ रहा हूँ तुम कितना तकलीफ सह रहे थे, अब मैं पूरी कोशिश

0: करूंगा कि सिगरेट छोड़ दूं। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? हाँ पापा, बिल्कुल करूंगा पापा। लव यू, थैंक यू पापा।
1: वाह दीदी, माया मिश्रा दीदी ने तो बहुत ही बढ़िया कहानी हमको सुनाई। इसके लिए दीदी को ढेर सारा धन्यवाद।
2: इंसान में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर सकता है, बस उसमें सोच, लगन और मेहनत होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी।
2: युसरा, हमारी ये बातें आकाशवाणी के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं और ये काम पिछले 90 सालों से बिना रुके थके आज तक चलता आ रहा है। इसी कड़ी में अब हम चलते हैं
3: नॉलेज बैंक आकाशवाणी @90।
2: हाँ, और आज की कड़ी में हम सुनवाने जा रहे हैं अपने केंद्र आकाशवाणी लखनऊ के विषय में।
4: ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी।
5: बच्चों, लखनऊ की सरजमी पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्श वाक्य के साथ हम सबका साथ निभा रहा है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। बच्चों, आपको बता दें कि इस केंद्र की स्थापना और इसके प्रसारण की शुरुआत 2 अप्रैल 1938 को 18 एबर्ट मार्ग स्थित एक किराए के मकान से हुई। बाद में आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र 18 विधानसभा मार्ग में स्थानांतरित हुआ। बच्चों, आपको ये भी बता दें कि इस केंद्र की गिनती 9 पुरातात्विक महत्व के आकाशवाणी केंद्रों में की जाती है जो अखंड भारत की आजादी के पहले से कार्यरत थे। बच्चों, आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र प्राइमरी चैनल कहलाता है और पूर्व में इसका प्रसारण मीडियम वेव और शॉर्ट वेव दोनों पर किया जाता था। वर्तमान में प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण मीडियम वेव पर किया जाता है। इसे मीडियम वेव 747 यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुनते हैं। इस चैनल की प्रसारण क्षमता में उत्तर प्रदेश की लगभग 70% जनसंख्या आती है, मतलब लाखों करोड़ों श्रोता। प्राइमरी चैनल के माध्यम से ही बच्चों आप अपना बाल मंच और बाल गोपाल कार्यक्रम सुनते हैं।
6: सभी दोस्तों को जय हिंद। नमस्ते अनुषा।
7: नमस्ते दीदी। नमस्ते दोस्तों।
5: और अब बात करें आकाशवाणी लखनऊ के विविध भारती सेवा की, तो इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1963 को हुआ था। विविध भारती सेवा को स्वस्थ मनोरंजन और विज्ञापन प्रसारण का चैनल भी माना जाता है। और बच्चों, अब बात करें AIR FM रेनबो की। इस चैनल की शुरुआत 20 अगस्त 2000 को हुई। ये लखनऊ और इसके आसपास के 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों में बहुत ही लोकप्रिय चैनल है। FM रेनबो 100.7 MHz पर सुना जाता है और ये सभी के दिलों की धड़कन है।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: बच्चों, आकाशवाणी लखनऊ का केंद्र जब 18 विधानसभा मार्ग स्थित इमारत में स्थानांतरित हुआ था तब इसके स्टूडियोज अलग थे। बाद में बने नई तकनीकों के साथ भव्य स्टूडियोज। इन स्टूडियोज में टाइप 4 का सेटअप है और इसका उद्घाटन 26 नवंबर 1978 को किया गया। बच्चों, स्टूडियो के अंदर म्यूजिक स्टूडियो है, टॉक स्टूडियो है, नाटक यानी ड्रामा के स्टूडियोज हैं, VIP स्टूडियोज जैसे अलग अलग 8 स्टूडियोज हैं जिनमें रिकॉर्डिंग की जाती है, डबिंग एडिटिंग की जाती है और कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। बच्चों, स्टूडियोज में डिजिटल कंप्यूटराइज सुविधाएं हैं। बात कंप्यूटर की चली तो आपको बता दें कि कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और प्रसारण की सुविधा जून 2002 से शुरू हुई। बच्चों, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का नाटक, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है। देश के बहुत सारे नामे गिरामी कलाकारों ने इस केंद्र के माध्यम से संगीत, साहित्य और नाटक की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। हिंदुस्तानी संगीत के प्रचार प्रसार और संरक्षण में आकाशवाणी के इस केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संगीत जगत के पूर्व के अधिकांश शीर्ष कलाकार इस केंद्र से जुड़े रहे हैं। शास्त्रीय संगीत में विदुषी सिद्धेश्वरी देवी, विदुषी बेगम अख्तर, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खां और सुगम संगीत में तलत महमूद, मदन मोहन, जयदेव और अनूप जलोटा जैसे सुप्रसिद्ध कलाकारों ने इस केंद्र का नाम रोशन किया और इनमें से कई कलाकारों ने तो बच्चों अपनी संगीत यात्रा की शुरुआत ही आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से की थी। साहित्य के क्षेत्र में बच्चों बात करें तो देश के प्रमुख लेखकों और कवियों में शुमार होने वाले बहुत से लोगों ने आकाशवाणी लखनऊ को ही अपनी

0: व्यक्ति का माध्यम बनाया। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, अमृतलाल नागर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, कुंवर चंद्र प्रकाश, मजाज लखनवी और केपी सक्सेना जैसे लेखक और कवि आकाशवाणी लखनऊ की ही देन कहे जा सकते हैं। बच्चों, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र ने अपने इस सफर में ढेर सारी उपलब्धियां पाई हैं और ये यात्रा आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। हो सकता है कि कल आप भी आकाशवाणी लखनऊ से जुड़कर अपना नाम रोशन करें।
1: दीदी, आज अपने आकाशवाणी लखनऊ केंद्र के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा।
2: इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और अब मिल लेते हैं अपने नन्हे साथियों से।
4: बाल साथियों, आज हमारे स्टूडियो में एक नन्ही साथी आई हुई और ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहने हैं, फ्लावर वाली, सिर पर भी फ्लावर वाली ही हेयर बैंड लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, आपका नाम क्या है?
5: प्रसिद्धि।
4: प्रसिद्धि, आप किस क्लास में पढ़ती हो?
5: मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ।
4: तो आपको

0: धन्यवाद।
1: और अब मिल लेते हैं अपने नन्हे साथियों से।
2: बाल साथियों, आज हमारे स्टूडियो में एक नन्ही साथी आई हुई है और ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहने हैं, फ्लावर वाली, सिर पर भी फ्लावर वाली ही हेयर बैंड लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, आपका नाम क्या है?
3: प्रसिद्धि।
2: प्रसिद्धि, आप किस क्लास में पढ़ती हो?
3: मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ।
2: तो आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है?
3: हाँ।
2: और इसके अलावा क्या अच्छा लगता है?
3: मुझे ड्रॉइंग करना अच्छा लगता है।
2: तो क्या क्या ड्रॉ कर लेती हो आप?
3: मैं बहुत कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ।
2: अरे वाह। और आपको आज सुनाना क्या है हम लोगों को?
3: मैं आप लोगों के सामने एक कविता सुनाने वाली हूँ, चांद पर।
2: चांद पर ले नहीं जाएंगी चांद पर हम लोगों को?
3: नहीं,
2: क्यों, कविता सुनाएंगी। चलिए आज कविता सुना दीजिए, फिर कभी चांद पर चलेंगे, है ना?
3: चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना,

0: साथ में चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुटी है।
1: अरे वाह, अच्छा इसीलिए आप आज चांद पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि कल से छुट्टी होगी तब हम लोग चांद पर जाएंगे। और हमारे साथ एक और हमारे नन्हे से साथी हैं, आपका क्या नाम है?
2: कटके।
1: आप क्या सुनाओगे?
2: कछुआ जल का।
1: कछुआ जल का राजा है, सुनाइए।
2: कछुआ जल का राजा है, कितना मोटा राजा है, हाँ लगाओ कूदेगा, भालेगा लोगे कूदेगा, चार पापड़ी खाएगा, ऊंचे सुर में गाएगा।
3: दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा।
4: हाँ युसरा, सही कहा।
3: दीदी अब क्या निकलेगा आपके पिटारे से?
1: युसरा वही बताने जा रहे हैं, अब हम बात करेंगे आने वाले दिनों में पढ़ने वाले विशेष दिवसों की।
4: दीदी मुझे तो ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा लगता है, नई नई रोचक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले आप क्या बताने जा रही हैं?
1: तो सबसे पहले बात पहली तारीख की, मतलब 1 जून की। इस दिन अपने माता पिता को सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। इसकी शुरुआत 2012 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव से हुई थी। बच्चों आपके पेरेंट्स आपके लिए जो करते हैं उसके प्रति आभार देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है।
4: जी दीदी, और हर साल इसकी थीम भी रहती है। इस बार की थीम है अभिभावकों के लिए एकजुट, मतलब टुगेदर फॉर पेरेंट्स।
1: तो इस दिन अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी पसंद के अनुसार कुछ प्लान करें, उन्हें आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद जरूर दें। माता पिता के लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल वही होता है जब उनके बच्चे उनकी बात मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बचपन में मम्मी पापा हमारी फरमाइशों को पूरा करने, पढ़ाने लिखाने, हमारे पालन पोषण के लिए कितनी मेहनत करते हैं।
3: जी दीदी, इसीलिए मैं अपने पेरेंट्स को ज्यादा परेशान नहीं करती।
1: अरे वाह युसरा और स्वरा दोनों ही, और कार्यक्रम सुनने वाले हमारे नन्हे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन कभी न कभी तो आप लोगों ने भी मम्मी पापा से कोई न कोई फरमाइश या जिद जरूर की होगी।
3: मुझे तो वैसे सारी जरूरत की चीजें मिल ही जाती हैं, लेकिन मैंने एक बार मम्मा से वीडियो गेम्स दिलाने की जिद की थी।
1: तो जिद पूरी हुई या नहीं?
3: नहीं हुई दीदी, मम्मा ने कहा पढ़ाई करो, फिजूल का काम नहीं।
1: और स्वरा आपकी जिद?
4: दीदी तब मैं 6-7 साल की रही होंगी और मैंने साइकिल की जिद की थी, क्योंकि मेरी सहेली को नई नई साइकिल मिली थी।
1: तो आपको साइकिल मिली कि नहीं?
4: दीदी मिली थी।
1: हाँ, क्योंकि वीडियो गेम्स खेलना हमारे लिए अच्छा नहीं है, जबकि साइकिल चलाने से हमारे शरीर का व्यायाम होता है।
4: जी दीदी, इसीलिए हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ यही हम भी बताने वाले थे, साइकिल परिवहन का बहुत ही अच्छा साधन है। इसमें ना पेट्रोल का खर्च, ना पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला धुआं, मतलब कम खर्च में कई फायदे। पर्यावरण की सुरक्षा में साइकिल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात पर्यावरण की हो रही है तो

0: बात कर लेते हैं 5 जून की।
1: जी दीदी, इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
0: पहली बार इसे 1973 में मनाया गया था। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस साल इसकी थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, मतलब हमें क्लाइमेट एक्शन लेना होगा।
1: इस थीम के पीछे मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन पर केवल बात न कर उनका समाधान करना है, जिससे धरती हमारे रहने के लिए सुरक्षित रहे, हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल, इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। धरती जो बदलाव के संकेत हमें दे रही है, उन्हें देखना होगा, समझना होगा और उनके अनुसार काम करना होगा। पानी बचाना होगा, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने होंगे और ऊर्जा के नए साधनों का प्रयोग करना होगा। हर तरफ हरियाली होगी तभी धरती पर खुशहाली होगी।
2: बिल्कुल सही दीदी, नहीं तो हम कैसे रहेंगे?
0: वही तो, अगर हमारी धरती, हमारा पर्यावरण ये सुरक्षित नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे?
1: सही कहा दीदी, हर बात के लिए एक सही समय होता है। अगर उस समय चूक जाता है तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है।
0: स्वरा, आपने समय की इतनी बात की तो हमें भी कार्यक्रम के समय की याद आ गई। अब समय हो चला है विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले अपने कार्यक्रम का ईमेल एड्रेस बता देते हैं।
1: हमारा ईमेल एड्रेस है bmbg.airlko@gmail.com।
0: इस ईमेल पर अपने सुझाव, फरमाइशें, प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। हमें आपके ईमेल्स का इंतजार रहेगा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति
2: यसरा खान को,
1: स्वरा त्रिपाठी को
0: और राजलक्ष्मी दीदी को।
3: जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंच। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 kHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

प्रेम पर्वत, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे, स्वर लता मंगेशकर के, शब्द रचना जान निसार अख्तर की और संगीत जयदेव का है।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म अनुराग का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत SD बर्मन का और स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के हैं।

और अब लीजिए सुनिए रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया फिल्म पहली का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है हेमलता और सुरेश वाडकर ने।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म कामचोर का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल इंदीवर के और संगीत रोशन का है।

फिल्म कामचोर के इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली

0: गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
9: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
10: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
11: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
10: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं।

0: आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग,
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए, रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
3: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को शदीद गर्मी के मौजूदा मौसम में बेहद एहतियात बरतने के साथ सरकारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से ज्यादा मकदार में पानी पीने और धूप से बचाव के तरीके इस्तेमाल करके घर से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मियों के साथ साथ आम का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी के लंगड़ा के साथ हर इलाके के आम का जायका अनोखा और उसकी महक सौंधी होती है। उन्होंने कहा कि आम हमारी ज़रई मईशत के लिए भी बहुत खास है। वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे मुहिम के तहत बनाई गई हिंदुस्तान की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें खुसूसी रोल अदा किया है।
4: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके। जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते।
3: वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया।
4: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी हो, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गए।
3: वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें तरगीब देता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि आप सभी अपने आसपास की जा रही ऐसी कोशिशों को ज़रूर देखें और जो लोग मुआशरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सताइश कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। फर्टिलाइजर के तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल को फरोग देने के लिए 1 महीने की खेत बचाओ मुहिम कल से शुरू होगी। मरकजी वजीर बराए ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस मुहिम को कौमी मुहिम बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुहिम का खास मकसद फर्टिलाइजर का तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल, मौसम के चैलेंजेस के मद्देनजर किसानों को वक्त पर मशवरा, पंचायत सतह पर किसानों की शराकत दारी और गांवों को बराए रास्त इसकी के फायदे पर मरकूज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और इत्तलात तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। जनाब वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और दीगर खसूसी मादनी और एडवांस्ड अशिया का प्रोडक्शन कर रहा है। पूरी रियासत में आज उत्तर प्रदेश मुश्तरका

0: बीएड दाखिला इम्तिहान 2026 का इनेकाद किया जा रहा है। इस इम्तिहान में 72 इजला में कायम 1011 इम्तिहान मराकज पर कुल 4,44,958 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। ये इम्तिहान दो मीटिंगों में मुनक़िद हो रहा है। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इम्तिहान के मद्देनज़र इंतजामिया ने हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इम्तिहान मराकज की CCTV से निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% एडिशनल फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज नाफिस करने का फैसला किया है। अगले महीने सार्फीन को अपने बिजली बिल में 10% ज्यादा अदायगी करनी होगी। आज आलमी नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म करने के मकसद से आलमी सेहत तंजीम के जरिए शुरू की गई खसूसी आलमी पहल का हिस्सा है। इस साल का मौजू है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। और रियासत के बेशतर अजला में तेज हवाएं चलने और बारिश होने से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है और आवाम को गर्मी से नजात मिली है। मुरादाबाद, फरुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक और बारिश होने की खबर है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के 56 अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन अजला में खसूसी तौर से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोंडा, बलरामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बरेली, हमीरपुर और महोबा शामिल। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 kHz पर। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम, आज इतवार है। आज सुनिए हिबा तहरीन की लिखी ये झलकी। शीर्षक है दर्जी की मर्जी। निर्देशन अतीश कुमार श्रीवास्तव का है।

0: सुनिए जी, मास्टर दर्जी प्यारे लाल की दुकान यही है ना?
1: जी जी मोहतरमा, आप बिल्कुल सही जगह तशरीफ लाई हैं। नाचीज को ही दर्जी प्यारे लखनवी के नाम से सारा शहर जानता है। लखनऊ में हमसे पुरानी टेलरिंग की कोई दुकान है ही नहीं।
0: अच्छा जी,
1: अब वो क्या है, दरअसल हम अंग्रेजों के जमाने के टेलर हैं।
0: तब तो मास्टर जी मैं बिल्कुल सही जगह पहुंची हूँ। दरअसल मुझे ना एक अनारकली सूट सिलवाना है। कपड़ा इम्पोर्टेड है, खराब ना होने पाए। और हाँ, अनारकली पहन के मैं ठीक वैसी लगूं
1: जैसे मुगले आजम में मधुबाला और उमराव जान में रेखा।
0: जी जी प्यारे लाल जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
1: अरे मैडम, आपकी इस पतली कमर पर अनारकली का घेरा क्या गजब ढाएगा, आप सोच भी नहीं सकती हैं। यकीन मानिए, आपको देखकर भाई साहब भी खुद को शहजादा सलीम तसव्वुर करने लगेंगे, यकीन मानिए।
2: कहाँ है, मैं पूछती हूँ, कहाँ है वो दो टके का दर्जी?
1: अरे खन्ना मैडम, आप तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। अर्ज क्या है छोटू?
3: इरशाद,
1: वो आए दुकान हमारी, खुदा की रहमत है। वो आए दुकान हमारी, खुदा की रहमत है, कभी हम उनको कभी दुकान को देखते हैं।
2: वाह वाह वाह वाह,
4: बंद कीजिए अपनी दो टके की शायरी और ये बताइए कि मैंने आपको जो ब्लाउज सिलने को दिया था और आपसे कहा था कि स्लीवलेस बनाइएगा, आपने तो इसे बैकलेस बना दिया, ये क्या मजाक है?
1: अरे मैडम, बस इतनी सी बात। इसी बात पर आपकी खिदमत में एक शेर और अर्ज कर रहा हूँ। नजर ना लगे कहीं उसके दस्ते बाजू को,

0: नजर ना लगे कहीं उसके दस्ते बाजू को, ये लोग क्यों मेरे जख्म जिगर को देखते हैं।
1: लगता है सीधी तरह से आपकी भेजी शरीफ में मेरी बात गई नहीं। मैं पूछती हूँ कि स्लीवलेस की जगह ब्लाउज बैकलेस क्यों सिला?
0: अब वो दरअसल मसला कुछ ऐसा है मैडम जी कि प्यारे लखनवी अपने पुराने कस्टमर का खास ख्याल रखता है। दरअसल जब मैं आपके बाजुओं की नाप ले रहा था ना, तो उस वक्त दुकान के आजू बाजू में कुछ शरारती नौजवान आपके बाजुओं की तरफ इशारा करके आपस में ठिठोली कर रहे थे। बस मुझे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई आपके बाजुओं की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत करे। उसी वक्त मैंने प्यारे ने ये तय कर लिया कि आपके बाजुओं को जमाने की बुरी नजर नहीं लगने दूंगा। भले ही ब्लाउज बैकलेस सिल जाए, लेकिन स्लीवलेस तौबा तौबा कभी नहीं, कभी नहीं।
2: वाह उस्ताद वाह, आप कितने महान हैं। आखिर आपके पुरखे अंग्रेजों के जमाने के टेलर जो थे।
1: मास्टर जी, आपको मेरा कितना ख्याल है।
0: आपका खादिम हूं जी। जरा एक काम करते हैं, पेमेंट की बात भी हो जाए।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये रहे आपके सिलाई के पैसे।
0: ये तो बस 500 है, सिलाई के तो 1500 हुए ना मैडम।
1: प्यारे लाल जी, पूरे पैसे दे दिए तो लोगों की बुरी नजर आपको और आपकी दुकान को लग जाने का डर है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्लीवलेस को बैकलेस बना दिया और चले हैं पूरे पैसे मांगने।
0: अरे अरे अरे, लेकिन सुनिए तो सही मैडम जी।
3: अरे बाय बाय,
0: चली गई, बेड़ा

0: अंकल जी, अरे ओ अंकल जी, मेरा लहंगा सिल गया क्या?
1: अरे पिंकी बिटिया, आओ पिंकी बिटिया, बड़े दिन बाद आई है। लेकिन बिटिया, ये कौन से लहंगे की बात कर रही हो तुम है?
0: ओफो अंकल, एक तो आपको भूलने की बहुत बुरी बीमारी है। अरे पिछले ही हफ्ते तो दिया था सिलने को, आपने हर हाल में आज देने का वादा किया था, मुझे आज शाम फंक्शन में पहनना है।
1: ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया बिटिया, याद आ गया। अरे छोटो, ओ छोटो, अबे कहाँ मर गया बे?
2: आया मसाब, आया
3: मसाब, आपकी बेगम साहिबा ने शरबत बनाने के लिए बुलाया था, उनको हैदराबादी शिकंजी पिला दिया था।
1: सब काम छोड़, पहले पिंकी बिटिया का नीला लहंगा जल्दी से लेकर आओ।
0: क्या कहा, नीला लहंगा? अरे मेरा लहंगा तो पीले रंग का था, हल्दी के फंक्शन के लिए।
1: अरे मर गया तू प्यारे, लगता है पीला लहंगा दूसरी कस्टमर को पैक होकर चला गया। अरे बिटिया, क्या फर्क पड़ता है, अरे पीला हो या नीला, तुम पर तो सभी रंग जचते हैं बिटिया। ऐसा करो, आज नीला लहंगा ले जाओ, मंगल को पीला रंग ले जाना।
0: मंगल ग्रह से आएगा क्या? मंगल को कान खोल के सुन लो मिस्टर प्यारे लाल, घंटे भर बाद फिर आऊंगी, तब तक मेरा पीला लहंगा यहाँ होना चाहिए, वरना।
1: वरना क्या बिटिया?
0: वरना लोग टुकड़ों में ढूंढते फिर रहे होंगे कि प्यारे कहाँ हैं और लाल कहाँ, समझ गए ना?
1: समझ गया, अच्छी तरह समझ गया।
3: पसीना पोछ लो उस्ताद, आपकी हैदराबादी बेगम तशरीफ ला रही हैं।
1: बेगम यहाँ?
4: हाँ मियाँ, ये कैसी कैसी शोर की आवाज़ा घर के अंदर तक आ रही हैं?
1: अरे कुछ नहीं हुआ बेगम, मेरी उम्दा सिलाई को देखकर कस्टमर खुशी से चीख ही पड़ी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, अंदर जाओ।
4: अंदर नक्को जाएगी मैं तो गड़बड़ झाला बाजार जाने को निकली, सुना है अपने हैदराबाद से भी सस्ता सामान, वो मेकअप वाला ना, वो मिलता इधर को।
1: हाँ हाँ बेगम, एकदम सही सुना है आपने, नेक काम में देरी नहीं करते हैं। एक काम करो, अब तुम बस अब 9-2-11 हो लो।
4: है क्या बोले?
1: मेरा मतलब है बेगम, फौरन से पेशतर जाइए, जाइए ना।
4: हाँ मियाँ, अच्छा मजाक करते हो तुम भी, बाजार जाने के वास्ते मगर करारे नोट भी तो चाहिए होंगे ना।

0: नोट।
1: अच्छा ये लीजिए, अब देर ना कीजिए।
2: तुम्हारे वास्ते ना इमली डाल के खट्टी दाल बनाई है, खाना ना भूलना। मैं चली गड़बड़ झाला।
0: गड़बड़ झाला।
3: अरे भाई प्यारे लाल जी, सुनते हो?
0: कौन है भैया, अब क्या मुसीबत आ गई है?
3: अरे प्यारे लाल जी, गजब हो गया भाई।
0: आइए आइए जनाब, आइए, शादी मुबारक हो आपको।

0: अरे भाई प्यारे लाल जी सुनते हो?
1: कौन है भैया? अब क्या मुसीबत आ गई?
0: अरे प्यारे लाल जी गजब हो गया भाई।
1: आइए आइए जनाब आइए, शादी मुबारक हो आपको।
0: अरे शादी मेरी नहीं है भाई, मेरे लड़के की है और वो भी कल।
1: आप खुद इतने जवान और हैंडसम हैं कि लड़की वाले भी एक दफा चकरा जाएं कि बाप बेटे में से आखिर दूल्हा कौन है।
0: मजाक छोड़िए प्यारे लाल जी, पहले ये बताइए शादी की शेरवानी के साथ जो पैजामा था उसका हाफ निकर कौन सिलता है भाई? अब कल मेरा लड़का क्या पहनेगा शेरवानी के नीचे?
1: हैं? ऐसे कैसे हो सकता है भला? छोटो, ए छोटो के बच्चे।
2: जी हाँ मालिक।
1: अबे ये शेरवानी के पजामे का निक्कर कैसे बना बे?
3: उस्ताद गुस्ताखी माफ हो, आपने ही मुझसे पजामे की लंबाई छांटने को कहा था। हुआ यूं कि कल रात को लाइट चली गई थी तो मैंने आपकी बेगम को छोटा करने को कह दिया था, फिर मुझे लगा कहीं वो भूल ना गई हो इसलिए मैंने भी छांट दिया।
1: और मुझे लगा कहीं तुम भूल ना गए हो इसलिए मैंने भी।
0: अरे भाई कोई मुझे भी कुछ बताएगा कि चल क्या रहा है आखिर?
1: जनाब गर्मी बहुत है, आराम से तशरीफ रखिए। ए छोटो।
3: जी उस्ताद।
1: ठंडा ठंडा ठंडा लेके आओ।
3: अभी लाया।
0: प्यारे लाल जी आप बस पाजामे के बारे में बताइए।
1: जी जी मैं उसी पर आ रहा हूँ हुजूर, गर्मी का आलम तो आप देख ही रहे हैं ना। एक तो इतनी गर्मी में शादियों का मुहूर्त पता नहीं कौन कमबख्त निकालता है, ऊपर से भारी भरकम शेरवानी का बोझ। अब आप ही बताइए शेरवानी के बोझ तले पूरा पजामा पहनकर दूल्हा बेचारा तो बेहोश हो जाएगा ना गर्मी से। बस इसलिए मैंने फ्यूजन का रास्ता चुना और शेरवानी पर बरमूडा। आप देखिएगा अब यही फैशन लेटेस्ट फैशन बनने वाला है और इस नए फैशन का सेहरा आपके सिर बंधेगा।
0: प्यारे लाल जी ये बरमूडा बरमूडा रखिए अपने पास और जब फैशन में आ जाए ना तो खुद ही शेरवानी पर निक्कर पहन लेना, बड़े आए फ्यूजन वाले।
1: सुनिए तो पैसे तो कर लेना, कोई बात नहीं। अरे प्यारे होता है कभी कभी ऐसा भी होता है, गर्दिश में होता रे, ना घबराना प्यारे। अबे छोटो।
3: जी उस्ताद।
1: अबे कहाँ मर गया था बे, ठंडा लाया?
3: हाँ उस्ताद, एक आपके लिए और एक अपने लिए।
1: हैं? चल पी।
4: आदाब अर्ज है प्यारे लाल लखनवी, आप ही हैं?
1: आदाब आदाब मोहतरमा, कहिए ना क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मैं ही हूँ आपका प्यारे मतलब प्यारे लाल।
3: और मैं हूँ प्यारे का दुलारे छोटू।
1: अरे चुप कर, जाके मीठा पान लेके आ।
3: ठीक है
1: फरमाइए ना गुलाम, क्या खिदमत करे आपकी?
4: गुलाम? लेकिन आप तो प्यारे हैं ना।
1: जी हम तो हमेशा से प्यारे हैं। काम बताइए आप।
4: जी वो दरअसल सूट सिलवाना है, नाप ले लीजिए। वैसे क्या सिलाई लेते हैं आप?
1: सिलाई का क्या है, पहले नाप ले लेते हैं ना।
4: हाँ हाँ तो लीजिए ना नाप, सूट भी साथ ही है।
1: हा?
4: और हाँ कुर्ते में बाजू नेट वाली लगाइएगा।
3: कौन सा नेट, 4G या 5G?
1: या तब तो हाथों की नाप लेनी होगी। आपके हाथ हैं? आपके हाथ तो बड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं, और ये खूबसूरत पतली नाजुक उंगलियां, इन उंगलियों को देखकर पुरानी फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है।
3: लैला की उंगलियां, मजनू की पसलियां, ककड़ियां ले लो ककड़ियां।
1: अरे चुप हो जा, ये देखो हला बोलता रहता चुप।
4: हाँ तो आप क्या कह रहे थे? वो दरअसल मुझे देर हो रही है।
1: जी जी जी मैं तो कह रहा था सूट तो चुटकियों में सिल जाएगा लेकिन आपकी शान में शेर अर्ज किए बिना नहीं जाने दूंगा।
4: इरशाद इरशाद।
1: अर्ज क्या है कि पहले हमने उनको देखा एंगल बदल बदल के। पहले हमने उनको देखा एंगल बदल बदल के।
4: आगे की लाइन मैं बताऊं? फिर हमने उनको पीटा सैंडल बदल बदल के।
1: अरे अरे अरे ये क्या बहन जी?
4: बहन जी

0: माफ करो दीदी।
1: उस्ताद ये तो भाभी है।
0: हाँ
2: हौ मियां, सिलाई के बहाने तुम ये करते, औरतानु छेड़खानी करते, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी।
0: अरे बेगम, तुम मेरा मतलब है, आप तो गड़बड़ झाला गई थी ना।
2: गड़बड़ झाला गई मेरी जूती, मैं तुमको चार मीनार पहुंचाने के वास्ते यहीं छुप गई थी।
3: भागले छोटू, आज तो उस्ताद का बैंड बाजा भारत सब निकलने वाला है।
0: देखें बेगम, हम लखनवी हैं, समझा कीजिए ना, शायराना गुफ्तगु हमारी रगों में।
2: बहुत हो गई दर्जी की मर्जी, सिलाई की दुकान बंद कराती, आज से मैं तुमको हैदराबादी बिरयानी सिखाती।
0: देखो बेगम, ऐसा जुल्म ना करो बेगम, हम अंग्रेजों के जमाने के टेलर हैं। हमें और कुछ नहीं भाती, आपको और कुछ नहीं भाती।
2: अभी मैं बताती, अभी बताती
0: छोटू बचा, अरे छोटू बचा मुझे।
4: मुझे मेरी बीवी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है।

0: दर्जी की मर्जी। अभी आप सुन रहे थे हिबा तहरीम की लिखी ये झलकी। कलाकार थे वरुण टमटा, रोहित सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, वनिता शर्मा, सना शेख, कीर्ति श्रीवास्तव और विदुषी भारद्वाज। निर्देशन था अतिश कुमार श्रीवास्तव का। इसके साथ ही आज इतवार है कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय वट।
1: अक्षय वट परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम। अक्षय वट। हाथों की लकीरें उम्र बताती हैं, पर चेहरे की मुस्कान रूह की तंदुरुस्ती बयां करती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अलका चौधरी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का विशेष कार्यक्रम अक्षयवट। साथियों, अक्षयवट यानी वो वृक्ष जो कभी नहीं सूखता। हमारे समाज के बुजुर्ग भी उसी वट वृक्ष की तरह हैं जिनकी छाया में पीढ़ियां पलती हैं। लेकिन सोचिए, अगर उस वट वृक्ष की जड़ों को तंबाकू जैसी कोई दीमक धीरे धीरे खोखला कर रही हो, तो क्या वह छाया बनी रह पाएगी? आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम बात करेंगे कैसे तंबाकू के धुएं और जहर को पीछे छोड़कर हम एक गौरवशाली और गरिमामय वृद्धावस्था जी सकते हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध और सेवानिवृत्त ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर आर प्रधान जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, आपने अपने लंबे करियर में हजारों मरीजों का इलाज किया है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को यह बताइए कि तंबाकू विशेषकर हमारे वरिष्ठ नागरिकों के मुख स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित करता है?
2: तंबाकू एक ऐसी चीज है जो शुरू होती है यंग स्टेज में, तंबाकू आदत पड़ती है और वो लत बन जाती है, फिर वो छूटती नहीं है और वो वृद्ध अवस्था तक चलती रहती है। और वृद्ध अवस्था में ये ज्यादा नुकसान करती है एज कम्पेयर टू यंग एज में, उतना नुकसान शायद नहीं करती
1: जी।
2: समझ लीजिए, युवा अवस्था से वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते 50 से 55 साल तो हो ही जाते हैं
1: जी।
2: और इतना लंबा समय तंबाकू का प्रयोग करना अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है।
1: डॉक्टर साहब, विशेषकर हमारे मुख स्वास्थ्य को ये कैसे प्रभावित करता है?
2: मुख स्वास्थ्य को प्रभावित ऐसे करता है कि एक तो जो रेगुलर जनरल बीमारियां हैं जैसे पायरिया, जैसे दांतों टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, जगह बन जाना, क्योंकि तंबाकू के साथ अकेला तंबाकू नहीं होता, उसके साथ तो सुपारी होती है या पान होता है या कुछ और भी होता है। सबसे बड़ी चीज जो है जिसका हम लोगों को बहुत चिंता रहती है वो है कैंसर। कैंसर पहले नहीं होता, कैंसर से पहले कुछ लक्षण होते हैं, उनको हमको समझना पड़ेगा और उनको देखना चाहिए, और जब वो आए तब तंबाकू से बिल्कुल दूरी रखनी चाहिए
1: जी।

0: उनमें से है सफेद दाग बनना मुंह के अंदर
1: जी,
0: जिसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। दूसरा एक है मुंह में जकड़न, मुंह ज्यादा न खुलना, जिसको हम लोग सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। उसमें मांसपेशियां जकड़ जाती हैं जिससे कि मुंह खुलने में तकलीफ होती है, मुंह खुलता ही नहीं जाता। हमने ऐसे मरीज भी देखे हैं जिनका मुंह एक सूत भी नहीं खुलता। तो ऐसे मरीजों को किसी भी चीज में बहुत दिक्कत होती है। आप जाहिर है खाना खाना, पानी पीना, बातचीत करना, हर चीज उनकी अवरुद्ध हो जाती है
1: जी। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, इसके बाद कैंसर,
0: जब कैंसर बन जाता है तो पहले तो हम लोग ये समझना पड़ेगा कि ओरल कैंसर या मुख का कैंसर बदन के बाकी कैंसरों में सबसे ज्यादा होता है। ये 30-40% तक सब कैंसरों में हिंदुस्तान में होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में खाना पीना, मसाले, तंबाकू, सुपारी, इन चीजों का प्रयोग ज्यादा होता है। अन्य विश्व के मुल्कों में 15-16% होता है।
1: अच्छा।
0: हमारे यहाँ 30-40% तक होता है।
1: बहुत बड़ा गैप है, ये
0: गैप है और बहुत ज्यादा प्रकोप है इस चीज
1: जी
0: का।
1: जी,
0: इसलिए इसको बड़ी जोर जबरदस्ती या हर तरीके से कोशिश करके इसको रोकना चाहिए
1: जी।
0: और ये सिखाना चाहिए सबको कि ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, इसको ना होने दें
1: जी। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग सोचते हैं, खासकर बुजुर्ग, कि अब तो उम्र हो गई है, अब तंबाकू छोड़ने से क्या ही फायदा है। तो क्या बुढ़ापे में तंबाकू छोड़ना वास्तव में शरीर को लाभ पहुंचाता है?
0: तंबाकू छोड़ना किसी भी उम्र में शरीर को बहुत लाभ पहुंचाता है
1: जी।
0: तंबाकू में निकोटीन होता है
1: जी।
0: निकोटीन हमारी धमनियों को और आर्टरीज को और टिश्यूज को उल्टी तरह से असर करता है
1: जी।
0: और आर्टरीज में मोटाई आ जाती है, उनकी दीवारें मोटी रहती हैं, उनके अंदर रक्त बहने का रास्ता कम हो जाता है
1: जी। जी,
0: तो हार्ट को भी असर करेगा, लंग को भी असर करेगा, किडनी को भी असर करेगा। ये इतना धीरे धीरे होता है कि आपको समझ में नहीं आता है
1: जी,
0: पर होता जरूर है।
1: मतलब जैसे कहते हैं कि स्लो पॉइजन है।
0: स्लो पॉइजन है। तंबाकू से दिमाग पे भी असर पड़ता है, जबकि धमनियां कम हो जाएंगी तो दिमाग में भी ब्लड कम जाएगा, तो आपकी सोचने की शक्ति या याद रखने की शक्ति भी कमजोर पड़ती जाती है।
1: तो मतलब अगर हमारे बुजुर्ग इस उम्र में भी अगर वो दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें तंबाकू छोड़ना है, तो वो अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं।
0: अगर तय कर लें कि छोड़ना है
1: जी,
0: तो छोड़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है
1: जी।
0: किसी भी चीज को छोड़ा जा सकता है, अगर आपके मन ने दृढ़ निश्चय कर लिया आपने कि ये नहीं करना है
1: जी, जी,
0: तो आप नहीं करेंगे उसको। लेकिन जहाँ भी जरा मन में कमजोरी है, क्या चलो एक बार ले लेते हैं
1: जी, जी,
0: आज ले लेते हैं, कल छोड़ देंगे, वो कल कभी नहीं आता। आज ही छोड़ना है, इसी वक्त छोड़ना है। छोड़ने के बाद आपको 4-6-10 रोज दिक्कत होगी
1: जी,
0: क्योंकि आपकी आदत है। आपको टॉयलेट जाने में दिक्कत होगी, आपको बातचीत में दिक्कत होगी, आपको मेंटल क्लैरिटी में सोचने में कष्ट होगा। तंबाकू होता तो आराम हो जाता
1: जी, जी।
0: कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो तंबाकू का सहारा ले लेते हैं फट से, वो आपको ओवरकम करना पड़ेगा। जब आप उसको छोड़ेंगे, उसके 10-8 रोज बाद आपको असर दिखाई देना शुरू होगा कि आपकी सोचने की शक्ति भी इम्प्रूव हो रही है और आपके फिजिकल एक्टिविटीज भी इम्प्रूव करती हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, सर्जन होने के नाते आपने तंबाकू के कारण होने वाले बहुत से गंभीर ऑपरेशंस किए होंगे, तो क्या आपको कोई ऐसा अनुभव याद है जिससे हमारे बुजुर्ग साथी प्रेरित हो सकें?
0: कैंसर के ऑपरेशन बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े भी होते हैं
1: जी,
0: जिसमें अक्सर टिश्यूज को या बदन के तंत्रों को या अवयवों को इधर से उधर खिसकाना पड़ता है
1: जी।
0: आसानी से स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, जो मुंह की लाइनिंग है, उसको खिसकाना पड़ता है। कभी कभी हड्डी को भी काट के हटाना पड़ता है जबकि कैंसर वहां तक पहुंच जाए। और जब ऐसा होता है तो चेहरा बिल्कुल विकृत हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए दूसरे जगह से हड्डी निकाल के, जैसे हिप बोन्स के पास से या पैर की लंबी हड्डी से हड्डी का टुकड़ा निकाल के वहाँ लगा के उसको रोकना पड़ता है। लंबा ऑपरेशन है और काफ़ी इसमें मॉर्बिडिटी मॉर्बिडिटी बहुत होती है। मतलब मरीज को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है, लंबा खर्चा होता है ऑपरेशन में, इसलिए बेस्ट है तंबाकू की आदत को छोड़ दें।
1: डॉक्टर साहब, जो बुजुर्ग लंबे समय से तंबाकू की लत में हैं, उन्हें आप क्या सरल सुझाव देना चाहेंगे कि वे इस लत से छुटकारा पा सकें?
0: देखिए, इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि गरी का टुकड़ा
1: जी
0: मुंह में डाल लें, उसको चबाते रहें, या आजकल बहुत बढ़िया च्युइंगम्स आ गई हैं वो लेके चबाते रहें। उससे वो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मुंह में कुछ चबा रहा हूँ। बहुत लोग लौंग डाल लेते हैं, बहुत लोग इलायची डाल लेते हैं
1: जी,
0: वो सब कर सकते हैं, उनसे नुकसान नहीं होता है। पर तंबाकू किसी भी हालत में आपको छोड़ना

0: भी है।
1: तो डॉक्टर साहब, इस तरीके के चबाने वाली चीजों को लेके और अपने मन में दृढ़ शक्ति रख के हमारे बुजुर्ग तंबाकू छोड़ सकते हैं?
0: छोड़ सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि बुजुर्ग अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं?
0: देखिए, ओरल हेल्थ एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज के बारे में है
1: जी।
0: दांत है, म्यूकोजा है, जुबान है, तालू है, इन सबको कैसे स्वस्थ रखें और कोऑर्डिनेटेड रखें
1: जी।
0: सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके मुंह में दांत हैं
1: जी
0: तो सुबह और शाम ब्रश करें। रात को खाने के बाद सोने से पहले ब्रश ज्यादा इम्पोर्टेंट है
1: जी
0: बनिस्बत सुबह के। और जहां तक हो सके ब्रेकफास्ट के नाश्ते के बाद या खाने के बाद ब्रश जरूर करें। हमारी परंपरा है कि हम कुल्ला करते हैं
1: जी,
0: अगर उसी में ब्रश करें बिना पेस्ट लगाए
1: जी जी
0: तो ज्यादा सफाई होगी। नंबर दो, हम लोगों को चाहिए कि अपने दंत चिकित्सक को समय समय पर दिखाएं, न कि इंतजार करें कि जब दर्द हो या तकलीफ हो तब जाएं
1: जी।
0: दिखाएं, चेकअप कराएं, 5-7-10 मिनट लगेंगे
1: जी।
0: चेकअप करके वो बता देंगे कि सब ठीक है या कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि अगर मुंह सफेद दाग हो रहा है या लाल दाग हो रहा है तो वो आपको नहीं दिखेगा, वो दंत चिकित्सक आसानी से देख लेगा और आपको राय देगा भैया ये हो रहा है, इसको आप इस तरह से रोक सकते हैं या इसका सरल उपाय है वो करा लीजिए। और हमारे योग में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मुंह के स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरी ग्लैंड्स को सपोर्ट करता है
1: जी।
0: उसमें होता है भ्रामरी, एक चीज होती है
1: जी जी,
0: जिसमें अपने दोनों हाथ सर पर रख के जहाँ पर ये दोनों बोन्स मिलती हैं, टेम्पोरल बोन्स और पीछे की बोन आके मिलती है उस मध्य पॉइंट के जिसको तालू कहते हैं सर का
1: जी जी,
0: वहाँ पर दोनों हाथ रख के वह ऐसे आवाज निकाले, जुबान तालू में लगा के आवाज निकाले
1: जी।
0: उससे पिट्यूटरी भी स्टिमुलेट होती है और आपकी जुबान का मूवमेंट भी ठीक रहता है और नाक से आवाज निकलती है तो वो भी पैसेज क्लियर रहता है
1: जी। चलते चलते डॉक्टर साहब, और आप हमारे बुजुर्ग साथियों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: सबसे पहली सलाह यही है जो अभी तक बात कर रहे थे कि तंबाकू या इस तरह का कोई व्यसन न पालें, उसकी आदत न डालें। और बहुत चीजें हैं, प्रकृति ने या भगवान ने बहुत चीजें बनाई हैं खाने पीने के लिए। लोग कहते हैं तंबाकू भी तो उसी में से है
1: जी,
0: है पर नुकसानदेह है, उसको हमने पहचान लिया है। अब जरूरत है कि आप सब लोग पहचाने और तंबाकू से दूर रहें। नंबर दो, मेरी राय ये रहेगी कि भाई थोड़ा बहुत चलना फिरना जरूर करें
1: जी,
0: चलते फिरते रहें, एक जगह बैठ के या बिस्तरे पर लेट के घर के अंदर बॉडी के जॉइंट्स और मसल सब वीक हो जाते हैं
1: जी,
0: वो बुढ़ापे को और कष्ट में बनाते हैं। इसलिए चलते फिरते रहिए, सुबह दोपहर शाम जब कन्वीनियंट हो, जब मौका लगे आप चलिए फिरिए जरूर, घर से बाहर निकलिए
1: जी,
0: घर के एनवायरनमेंट से बाहर निकल के दुनिया देखिए क्या हो रहा है, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए और अपने खाने पीने पर खास ध्यान रखें
1: जी।
0: खाना समय से खाएं, जो भी समय हो एक समय तय कर लीजिए, उसी पीरियड में खाना खाइए और उसके बाद थोड़ा आराम भी जरूरी है
1: जी।
0: पूरी नींद ले रात को, नींद के लिए अक्सर लोगों को मैंने देखा गोली खानी पड़ती है
1: जी,
0: या दवा खानी पड़ती है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत व्यायाम करते रहेंगे, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहेंगे, 4-5 किलोमीटर रोज चलेंगे, और लोग कहते हैं कि सुबह सुबह चलिए, अच्छा है सुबह बहुत अच्छा है क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता, भीड़ नहीं होती और मौसम भी अच्छा होता है। ये जरूरी नहीं कि सुबह ही चलें, जब मौका हो चलिए जरूर
1: जी। और डॉक्टर साहब, क्या खान पान में कुछ ऐसी विशेष सावधानियां बरतें हमारे बुजुर्ग की वो ज्यादा स्वस्थ रह सके?
0: देखिए, खाना सिंपल, जो आपका घर का खाना हो
1: जी
0: वो आप नियम पूर्वक खाएं और भरपेट खाएं, ये नहीं कि अरे थोड़ा खाएंगे कम खाएंगे, भरपेट खाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा
1: जी
0: और बदन को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा
1: जी।
0: उसमें खाने में ये जरूर देख लीजिए कि हरी सब्जियां, दाल, गेहूं की रोटी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप और रोटियां और जो अनाज हैं उनकी रोटियां खाएं, गेहूं की खाइए, सफेद चावल खाइए, भूरा चावल या काला चावल ढूंढने की कोशिश न करिए, मिल जाए तो खा लीजिए, लेकिन सफेद चावल और दाल
1: जी,
0: दाल मूंग उड़द अरहर कोई दाल हो
1: जी
0: आप जरूर खाइए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं
1: जी
0: तो हफ्ते में 2-3 दिन नॉन वेजिटेरियन खाना भी खाइए। और अंडे के बारे में बड़ी डिबेट है
1: जी,
0: अंडा
1: जी।
0: खाया जाए ना खाया जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन आजकल की नई रिसर्च है कि अंडे में सारे वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो अक्सर हम लोगों को बाहर से टेबलेट के रूप में लेने पड़ते हैं
1: जी,
0: और अंडे में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, ये एस्टेब्लिश हो गया है
1: जी।
0: तो अगर आप अंडा खा सकते हैं या आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा जरूर खाएं, रोज खाएं।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से बताया कि कैसे एक तंबाकू मुक्त जीवन ही वास्तव

0: में गौरव शैली बुढ़ापा है। अक्षय वट के इस मंच पर आने के लिए और हमारे श्रोताओं को मार्गदर्शन देने के लिए आपका हृदय से आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साथियों, बुढ़ापा जीवन का उपसंहार नहीं बल्कि एक नया अध्याय होना चाहिए। एक ऐसा अध्याय जो तंबाकू की कड़वाहट से नहीं बल्कि स्वास्थ्य की मिठास से लिखा जाए। याद रखिए, आपके परिवार को आपकी सलाह से ज्यादा आपकी मौजूदगी की जरूरत है। तंबाकू को छोड़ें ताकि अक्षयवट की यह छाया घनी और हरी भरी बनी रहे। प्यारे श्रोताओं, अक्षयवट कार्यक्रम सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आपका अपना मंच है। हम चाहते हैं कि आप भी इस चर्चा का हिस्सा बने। आज के विषय तंबाकू मुक्त बुढ़ापा पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने या आपके किसी मित्र ने इस लत को छोड़ने में सफलता पाई है, या आप डॉक्टर साहब से स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष जानकारी चाहते हैं? हमें पत्र लिखकर जरूर बताएं। आपके अनुभव और आपकी बातें दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। अपने पत्र आप इस पते पर भेज सकते हैं, कार्यक्रम अक्षयवट, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी लखनऊ, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता नोट कर लीजिए, pkldlko@gmail.com। आपकी हर चिट्ठी का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अक्षयवट की इसी शीतल छाव में। नमस्कार। अक्षयवट परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम। अक्षयवट।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षयवट। इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया डॉक्टर अलका चौधरी ने। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को विकास चंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म नाम के इस गीत के साथ, जिसे आवाज़ दी है पंकज उदास ने। गीत के बोल आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। सुनने का अनुरोध किया है हेड कांस्टेबल CRPF जम्मू कश्मीर से धर्मेंद्र यादव, देवेंद्र सिंह यादव, दंगल यादव, अभिनव यादव, दीपेश, अनामिका, अनुराग और सुनीता यादव। हेड कांस्टेबल संजय सिंह, आशाराम सिंह, कशिश देवी, आयुष कुमार, विश्वास कुमार, जिला शाहजहांपुर से। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर फिल्म नाम का ये गीत।

सुरक्षा जवान आवास विकास लखनऊ से और भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लखनऊ से सब इंस्पेक्टर जेपी यादव, सब इंस्पेक्टर डीके तिवारी, सब इंस्पेक्टर डीएस यादव, सब इंस्पेक्टर एके यादव, सब इंस्पेक्टर डीएन यादव, प्रमोद मिश्रा, दरोगा सिंह, सब इंस्पेक्टर एके सिंह, सब इंस्पेक्टर एसपी सिंह, रितेश मिश्रा, वीरेंद्र यादव और राजेंद्र सोनी। आप सब ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत, जिसे लिखा है इंदीवर ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हीर रांझा से, स्वर लता मंगेशकर के, गीत के बोल कैफी आजमी के और संगीत मदन मोहन का है, सुनने का अनुरोध किया है आप सबने। सब इंस्पेक्टर शुभम चौधरी, मोहित सिद्धू हाईकोर्ट लखनऊ से, साइबर सेल लखनऊ से अनुज सिद्धू माइक्रोसॉफ्ट सीनियर इंजीनियर, मुरादाबाद से आबकारी निरीक्षक अक्षय चौधरी, अलीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र मोहन सिंह, अभिषेक योग्यता कन्हैयालाल, प्रिया वीर सिंह, बबलू प्रमोद राज, योगेश्वर मीनू और सीतापुर से बसंत कुमार। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म हीर रांझा का ये गीत।

और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। सुनने का अनुरोध करते हैं अशोक कुमार सिंह, भूतपूर्व कंपनी कमांडर बाराबंकी से। बाराबंकी से ही कुंतेश कश्यप, दिनेश वर्मा, पीयूष वर्मा, अंजनी कुमार, लवकुश, राम दुलारी पटेल, नवीन जायसवाल, राज बहादुर, अर्जुन यादव, ताहिर अब्बास रिजवी, बलवंत सिंह, आदर्श वर्मा, मोहित वर्मा और इनके सभी मित्र। पुलिस लाइन बाराबंकी से रंजीत सिंह और मुन्नी सिंह। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप

0: गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली हैं। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को

0: सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
2: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS

0: अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकननेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा

0: अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह दोहरे से भेंटवार्ता। विषय है जायद फसलों में सामयिक प्रबंधन। आपसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जायद की फसलों में मक्का, मूंगफली, मेंथा, उर्द, मूंग और लोबिया की फसल आपके खेत में खड़ी है। जहां फसल खेत में है तो सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र गब्बापुर सिरसिया श्रावस्ती से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह दोहरे साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय जायद की फसलें खेत में खड़ी हैं, ऐसे में कौन कौन से सामयिक बिंदु हैं जिन पर किसान भाइयों बहनों को विशेष ध्यान देना है?
3: नमस्कार किसान बहनों एवं भाइयों, जैसा कि इस समय मूंग, उर्द और हमारी मक्का, मूंगफली जो जायद की फसलें होती हैं, इस समय जो हम लोग तैयारी के कगार पर खड़े हो गए आके, अब हमको फसल को बचाना है, तो उस फसल के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो सिंचाई का प्रबंध हम अवश्य करें। सिंचाई का प्रबंध हमको करने के लिए कम से कम शुरुआत से लेकर 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता जरूरत पड़ती है। जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे पहले हम अपना मेंथा का जो प्रयोग करते हैं रुपाई के लिए, तो रुपाई के तुरंत ही समय बाद एक सिंचाई हम दे देते हैं। उसके बाद हम 10-15 दिन के अंतराल पे 5-6 सिंचाइयां करते रहते हैं, जिससे कि हमारी फसल नमी बरकरार रहे और खरपतवार जमने की आशंका कम हो।
2: यानी फसल की प्यास बुझाते रहना है। जो भी फसलें हैं, चाहे मेंथा है, मक्का है, मूंगफली है, उर्द, मूंग, लोबिया है, क्रांतिक अवस्थाओं पर,
3: हाँ क्रांतिक अवस्थाओं पर जब हम पहुंचते हैं उस समय तो हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।
2: तो मेंथा में कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं हैं डॉक्टर साहब?
3: देखिए, मेंथा जब हमारा बिल्कुल तैयार होने के कगार पर आता है तो हमको कटाई की आवश्यकता होती है। उस समय हम क्या करते हैं कि एक फसल काट लेते हैं, उसके बाद 10-15 दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं। पुनः एक सिंचाई करने के बाद दूसरी मेंथा की हम तैयारी कर लेते हैं, उसको हम कटाई कर देते हैं उस पर।
2: और मक्के में सिंचाई की बात करें तो?
3: मक्के में हम सिंचाई की बात करते हैं। मक्का देखिए, हमारी जो फसल है, मक्के में सिंचाई 5-6 होती हैं। हर 10 या 15 दिन के अंतराल पर हम अगर सिंचाई करते रहते हैं तो हमारा खरपतवार भी नहीं जमता उसमें, और मिट्टी हमेशा भुरभुरी रहती है, जिससे पौधों की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने लगती है।
2: लेकिन कुछ क्रांतिक अवस्थाएं हैं जिन पर फसल को प्यास ज़्यादा लगती है मक्के में?
3: उसमें क्या करते हैं हम, जैसे मक्का लगाते हैं हम
2: जी,
3: उसमें निरंतर या फिर फुलझड़ी के द्वारा जो हम लोग सिंचाई करते हैं,
2: बौछारी सिंचाई
3: करते हैं, तो उसमें भी लगातार वो करती रहने चाहिए। इससे हमारी क्रांतिक अवस्थाएं पे बिल्कुल तैयार होने लगती हैं।
2: और डॉक्टर साहब, जो मूंगफली है उसमें भी तो फसल को प्यास लगेगी?
3: जी सर, मूंगफली में भी फसल को प्यास लगती है। मूंगफली के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 5-6 प्रकार की जो सिंचाई होती है उसमें भी हम लोग नमी बनाए रखते हैं। ठीक है, खेत में नमी होना हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। अगर नमी नहीं होगी तो हमारी खेती में उत्पादन की प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम इसको सिंचाई करते रहते हैं 10-15 दिन के अंतराल पे, मिट्टी को सींचते रहते हैं ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके।
2: यानी जो भी जायद की फसलें हैं उनकी क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करते रहना है, पानी का प्रबंध करते रहना है। डॉक्टर साहब, जल निकास भी तो महत्वपूर्ण होना चाहिए।
3: जल निकास उस समय हमारा जब ज़्यादा हो जाता है, जैसे हमारा खेत समतल नहीं है, कहीं पे ऊंचाई होती कहीं नीचाई होती, तो उस समय वो भर जाता है, तो हम नीचे वाले के साइड में अपना पानी निकाल सकते हैं, इससे हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है।
2: अगर कोई बेमौसम बारिश हो रही है तो जल निकास का प्रबंध भी रखना जरूरी है।
3: बिल्कुल जरूरी है सर।
2: और खरपतवारों का प्रबंधन भी तो जरूरी है, क्योंकि
3: ये जो मूंगफली में होते हैं जो खरपतवार रोकते हैं, उनको अगर समय पर निराई गुड़ाई उसकी कर दी जाए, समय पर 30-45 दिन के बाद निराई गुड़ाई कर दी जाए, तो खरपतवार हमारा वहीं खत्म हो जाता है। अगर किसान भाई नहीं कर पा रहा है निराई, तो उसके लिए रासायनिक

0: दवाएं आती हैं वो प्रयोग कर ले अपना।
1: और मक्का और मूंग उर्द में भी तो ध्यान रखना है।
0: जी मूंग उर्द में भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। जो हम जो बुवाई का तरीका है या सिंचाई का हमारा खरपतवार नियंत्रण है, इसमें अब अति आवश्यक कार्य होता है, तो उसके लिए 30 से 45 दिन पर निराई कर दें। जैसे हमारी जो उर्द मूंग की क्रॉप होती है वो सेंसिटिव होती है ज़्यादातर,
1: जी
0: तो रासायनिक का हम प्रयोग ना करके हम मैनुअली हाथ से निराई गुड़ाई कर दें। एक 30 35 दिन के बाद उसको निराई गुड़ाई कर दें, उसके बाद हम खरपतवार को ना जम दें तो हमारी उपज पे अत्यंत प्रभाव नहीं
1: अच्छा
0: अच्छा प्रभाव पड़ जाता है।
1: डॉक्टर साहब, खरपतवार प्रबंधन की बात हो गई, इसके पहले जल प्रबंधन की बात हो गई, अगर कोई पोषक तत्व देना है बाकी तो उसका प्रबंधन भी तो जरूरी है।
0: प्रबंधन जरूर देखिए, इस समय अब ज़्यादातर हमारी फसल तैयार होने को है, तो इसलिए हम ज़्यादातर कोई केमिकल वगैरह रसायनों का छिड़काव ना करके,
1: या रासायनिक खाद का प्रयोग न करें,
0: हाँ रासायनिक खाद का
1: अगर
0: प्रयोग
1: कहीं जल मिले उर्वरक देना बाकी है तो।
0: देना बाकी, तो इस समय हमारे हिसाब से बहुत कम मात्रा में दें वो लोग किसान
1: अच्छा
0: भाई।
1: डॉक्टर साहब, फसल सुरक्षा भी तो महत्वपूर्ण है,
0: जी फसल सुरक्षा महत्वपूर्ण है।
1: तो मक्का है, मूंगफली है, मेंथा है, उर्द मूंग लोबिया है, इनमें फसल सुरक्षा में क्या कुछ करें किसान भाई बहन?
0: देखिए किसान भाई, इस समय जो हमारा जो फसल सुरक्षा है, सबसे पहले हम अपना कीट का प्रबंध करें और रोग का प्रबंध करें,
1: और इसके लिए नियमित रूप से निगरानी करते रहें।
0: निगरानी करते रहें नियमित रूप से। जैसे किसान भाइयों को ये मतलब जानकर ज़्यादा अच्छा खुशी होगी कि जैसे हम कोई भी क्रॉप करते हैं, अगर मैं खेत पे उसको निगरानी के तौर पर बराबर देखता रहता हूँ, तो हमारी उपज में 5 से 10% का इफाजा हो सकता है,
1: अपने आप
0: अपने आप होता है सर। किस लिए? क्योंकि हम उसको जैसे हमने खेत को बो दिया है, उसके बाद हम 10 15 दिन बाद वहाँ पहुँचते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता इसमें कौन रोग आ गया। अगर मैं पर डे खास तौर से अगर घूमने जाऊँ वहाँ पे, खेत की निगरानी कर दूँ, मेड़बंदी सही से कर लूँ, तो हमारे कीड़े नहीं जा सकते उसमें।
1: तो कौन कौन से हानिकारक कीट हैं जो जायद फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं डॉक्टर
0: हाँ
1: साहब?
0: जैसे मूंगफली है, मूंगफली में सफ़ेद लट दीमक होता है सर, ऐसे रस चूसक वाला कीट होता है, और बिहारी रोगनी इल्ली होती है, और पत्ती सुरकी कीट होता है,
1: यानी ये सारे हानिकारक कीट हैं
0: हानिकारक
1: जो
0: कीट हैं जो हमारी मूंगफली को नुकसान पहुंचाते हैं।
1: कुछ काटने चबाने वाले हैं, कुछ रस
0: हाँ
1: चूसने
0: कुछ रस
1: वाले हैं।
0: चूस रहे हैं, कुछ पत्तियों को चूसने वाले हैं, कुछ कीड़ों अंदर फली में जाके बैठ काट देते हैं, वो सब यही कीट होते हैं।
1: तो इनका प्रबंधन भी तो अलग-अलग होगा,
0: हाँ प्रबंधन है,
1: जैसे
0: जैसे मूंगफली में जो जड़ वाले उपचार के लिए बुवाई के समय कार्बोक्यूरान 3G 10 kg पर एकड़ मिट्टी में डालें, तो उससे जो हमारे जो शुरुआती जो है कीट वो नहीं आ पाते हैं,
1: अगर
0: दूर
1: बेसल डोज में दे दें तो
0: बेसल डोज
1: ज्यादा,
0: में दे दें तो ज़्यादा अच्छा
1: लेकिन
0: रहता है।
1: इस समय फसल खड़ी है तो सिंचाई नाली में क्लोरपाइरीफास का प्रयोग करें।
0: वो दीमक के लिए क्लोरोफारीफास सबसे बेस्ट आता है, उसका प्रयोग कर दें नालियों में, उसको डाल
1: इसके
0: दें।
1: अलावा
0: इसके अलावा जो पत्ती झुलसी कीट होती है, इसमें टाइमोफेंट फायराइड आता है एक, इस प्रयोग करें इसका।
1: हाँ
0: अब जैसे मूंगफली में रोग का नियंत्रण की हम बात कर लेते हैं,
1: हाँ
0: जैसे टिक्का रोग है, ये कई पत्तियों पर कथई रंग के जो धब्बे होते हैं वैसे ये बने दिखाई देते हैं, तो इसके लिए हमको कार्बेंडाजिम और प्लस मैंगोजैब दोनों का मिश्रण करके 400 ग्राम पर एकड़ का प्रयोग करके 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें इसको।
1: अगर जरूरत है तो दोबारा छिड़काव कर
0: हाँ
1: दें।
0: ज़रूरत है तो दोबारा छिड़काव करें, नहीं तो नहीं।
1: और अन्य जो जायद की फसलें हैं उनमें हानिकारक कीट और बीमारियों में?
0: उनकी हानिकारक जैसे मेंथा हो गया, मक्का हो गया, मक्के में भी कीट प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं हमारी फसल पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अब जैसे विशेषकर मक्के में बेंजोएट जो एक दवा आती है, ये फार्म आर्मी वर्म कीट होता है, उसके लिए 5 से 10 ट्राइकोकार्ड प्रति एकड़ का प्रयोग करें, या 0.4
1: इमामेक्टिन बेंजोएट।
0: बेंजोएट 0.4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर दें। इसी में एक और कीट लगता है तना छेदक, ये तने के अंदर से खाता है जिसमें गोप सूख जाती हैं, नियंत्रण के लिए पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें, तो या फिर कार्बोक्यूरान 35 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव कर दें,
1: यानी खेत में नमी रहे तो ये दानेदार दवा का इस्तेमाल कर दें
0: कर
1: जहां
0: दें
1: तना छेदक की समस्या है
0: जी
1: मक्के में।
0: मक्के में।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे जायद फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र गब्बापुर सिरसिया श्रावस्ती आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है 8 7 55 23

0: 9892 87 55 23 98 92।
1: जायद की फसलें जहां भी आपके खेत में हैं, चाहे मक्का है, मेंथा है, मूंगफली है, उर्द मूंग लोबिया है, तो उसकी नियमित रूप से निगरानी करते रहें। और चार मुख्य बिंदु हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। एक तो फसल की प्यास बुझाते रहना है, खरपतवारों से मुक्त रखना है खेत को, और जो पोषक तत्वों की मात्रा शेष रह गई है उसका प्रयोग करना है, और फसल सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना है। डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह दोहरे साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, और जायद फसलों में सामयिक प्रबंधन इस समय क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जायद फसलों में सामयिक प्रबंधन, अभी आप डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह दोहरे से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। इसके साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
7: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
8: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
9: बिल हो रहा है।
8: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
10: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज अपराह्न 3:15 पर संस्कृत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज, संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से वार्ता, जिसका विषय रहेगा योग कर्मसु कौशलम। श्रोता सुनेंगे रिकॉर्डेड फोन इन कार्यक्रम। हेलो डॉक्टर, अपराह्न 3:30 पर आज का विषय है गर्मी का मौसम और स्वास्थ्य रक्षा के विभिन्न उपाय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अभय नारायण तिवारी और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे सुभाष खन्ना। संकल्प कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 4:00। इसमें आप सुनेंगे विकास मिश्रा से भेंट वार्ता, विषय रहेगा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, भेंट करेंगे सुरेंद्र राजेश्वरी। युवा तरंग कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर और नई उड़ान आप सुनेंगे शाम 5:45 पर। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आज आप सुनिएगा लोकभाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे शुकदेव प्रसाद छैल, राम दुलारे सिंह सुजान और रवि प्रकाश अवस्थी। कार्यक्रम का संचालन भी रवि प्रकाश अवस्थी करेंगे। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर मोहम्मद फहद फारूकी से भेंटवार्ता सुनिएगा सफलता की कहानी के अंतर्गत आम की सघन बागवानी विषय पर, आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगी सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर। हिंदी कार्यक्रम में रात्रि 8:00 आप सुनेंगे

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अपराह्न के 2:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मगन मिश्र के गाए कुछ अवधि लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस निर्गुण के साथ।

लोक माधुरी कार्यक्रम में इस समय आप मगन मिश्र के गाए कुछ अवधि लोकगीत आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुन रहे हैं। अब लीजिए सुनिए ये किसानी गीत।

अभी आपने सुना मगन मिश्र की आवाज़ में ये किसानी गीत। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म पारस मणि का ये गीत, जिसे लिखा है असद भोपाली ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, स्वर लता मंगेशकर और कमल बड़ौत के हैं। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब लीजिए सुनिए फिल्म लोफर का ये गीत, जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया फिल्म खिलौना का यह गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

0: अब सुनिए हमारा आज का ये कार्यक्रम। हेलो डॉक्टर।
1: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि हम इस मौसम में बहुत परेशान हो रहे हैं। कई बार हमें दिक्कतें हो रही हैं, कई बार ऐसी दिक्कतें हो रही हैं जिन्हें हम शायद थोड़ा बहुत जानते भी हैं पर उसके बारे में हम गंभीर नहीं होते, उसके बारे में विमर्श नहीं करते और वो हमें बड़ी दिक्कत कर जाती है। या कई बार जो हमारे बड़े बूढ़े हैं जो प्री डिजीज रख रहे हैं, जो डायबिटिक हैं या हार्ट की कोई दिक्कत है, श्वसन संबंधी कोई दिक्कत है और हम ध्यान नहीं देते या वो स्वयं में ध्यान नहीं देते, वो बीमारी कुछ बढ़कर आ जाती है या गर्मी का जो प्रभाव होता है वो उन्हें परेशान करता है। और एक और बात की जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं कई बार वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये जो गर्मी का मौसम है इसमें हम बचें कैसे, कौन सी बीमारियां होती हैं, कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या दिखते हैं और सबसे बड़ी बात कि इनसे बचाव कैसे हो, ये ढेर सारी बातें आज हम करेंगे डॉक्टर अभय तिवारी से। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं और लगातार कई दशकों से इस विधा में कार्य कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत बहुत आभार आपका जो आपने मुझे ये सुअवसर दिया कि हम आपके श्रोता के साथ रूबरू हो पाए और कुछ आयुर्वेदिक या भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित कुछ विषय हम उनको बता पाए। तो जब भी हम कभी भी इस तरह की चर्चा करेंगे तो उसमें हमें लगता है कि हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, ये टैगलाइन पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वस्थ रहना या रखना ये डॉक्टर या चिकित्सक की जिम्मेदारी है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को खुद को स्वस्थ रखने के लिए खुद की जिम्मेदारी वहन करनी पड़ेगी या उठानी पड़ेगी खुद की। क्योंकि देखिए स्वस्थ रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अंतरिक्ष में यान भेजने जैसा नहीं है। तो इस बात को दृष्टि में रखते हुए हमारे आचार्यों ने प्राचीन ग्रंथ में लिख रखा है कि स्वस्थ रहने का सबसे सरल तरीका क्या है कि आहार ही औषधि है।
1: जी, जी, जी,
2: हर ऋतु के अनुसार आपका आहार और भोजन होना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे आपको पता होगा कि 6 ऋतुओं में पूरे साल को वर्गीकृत कर रखा है और ऋतु के अनुसार हमारा आहार दिनचर्या रात्रिचर्या इत्यादि सब निर्देशित है। अनुभव के आधार पे बहुत सारी चीजें हमारे पूर्वज हमें बताते हैं
1: जी।
2: हम ज्ञानता या अज्ञानता दोनों ही पक्ष शामिल आती है, ज्ञान होने की वजह से भी हम उसका त्याग कर देते हैं और अज्ञानता में तो त्याग कर ही देते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक आयुर्वेद में एक श्लोक है
1: जी।
2: कि पत्थे क्षति गदारतस्य किम औषधि निसे उड़े और पत्थे अशति गदारतस्य किम औषधि निसे उड़े। इसका मतलब ये हुआ कि पथ्य और उचित आहार विहार से अगर आप रहिएगा तो आपको औषधि की क्या आवश्यकता है और इसका जहां परित्याग करिएगा तो औषधि आपकी क्या कर लेगी।
1: वैसे कौन कौन सी बीमारियां इस मौसम में घर करती हैं या दिक्कत करती हैं?
2: अब जैसे ग्रीष्म ऋतु है
1: जी,
2: तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो पित्त हमारा काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
1: जी जी,
2: अग्नि सूर्य प्रखरता के साथ काफी तीव्र रहते हैं तो अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, शरीर में तीव्रता अम्लता रुक्षता ड्राइनेस ये सब बहुत बढ़ जाती है। हमारा सूर्य तीखा होने की वजह से, बहुत स्ट्रांग हार्ड होने की वजह से जो स्निग्ध जो हमारे शरीर में चिकनापन है
1: जी, जी, जी,
2: उसको ग्रहण कर लेता है तो शरीर में रुक्षता ड्राइनेस आ जाती है
1: जी, जी, जी, जी,
2: जिसकी वजह से हम लोग को बहुतर जो कॉमन फीचर्स है कि हीट स्ट्रोक, आप एक सामान्य भाषा में अंग्रेजी का शब्द है जिसको देहाती भाषा में हम लोग लू लगना कहते हैं, वो होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
1: जी जी, तो क्या कोई लक्षण दिखने लगते हैं जब लू होता है?
2: हाँ, जब लू लगेगा आपको तो उसका सबसे पहला लक्षण है कि आपका मुंह सूखने लगेगा, त्वचा में रुक्षता ड्राइनेस आ जाएगी, आपको चक्कर कमजोरी सा महसूस होने लगेगा, अचानक आपको बहुत सी दुर्बलता शरीर में महसूस होने लगेगी। तो उससे बचाव करने का सबसे जो सरल तरीका है कि जैसे ही आप अपने घर से निकलें अपने आप को रिहाइड्रेट करें, माने प्रचुर मात्रा में पानी पिए। और प्रचुर मात्रा में पानी कहने का मतलब ये नहीं कि आप 10 लीटर पानी पिए, एक सामान्य व्यक्ति को 3 से 4 लीटर जल का ग्रहण जरूर करना चाहिए अगर वो सामान्य कार्य कर रहा है और अगर वो परिश्रमी है, व्यायाम कर रहा है, लेबर क्लास है, मेहनत कर रहा है, कोई जिमिंग वगैरह ज्यादा कर रहे हैं तो अपनी पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन पानी ज्यादा ग्रहण करने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जल का ग्रहण कर रहा है उसको कोई जीर्ण व्याधि तो नहीं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: कहीं वो गुर्दे का रोगी तो नहीं है, कहीं वो हृदय रोगी तो नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति अनावश्यक रूप से 3-4 लीटर पानी नहीं पियेंगे, उनको जो चिकित्सक ने निर्देशित कर रखा है उनको उतना ही जल ग्रहण करना है।
1: आपने प्री डिजीज की बात की कि जैसे कोई व्यक्ति गुर्दे की बीमारी से पीड़ित है या डायबिटीज है या उसको हार्ट की कोई दिक्कत है, अस्थमा है या सांस संबंधी और कोई दिक्कत है, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। जैसे आपने कहा कि भाई हम पानी पीने का एक आपने विकल्प बताया कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पीजिए, लेकिन उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो हमारे ऐसे जो वृद्धजन है या जो हमारे ऐसे मित्र हैं जो पहले से दिक्कत में हैं, वो कैसे खुद को निर्धारित करें, कैसे सुरक्षित रखें गर्मी में।
0: देखिए, सबसे पहले तो आपको जो पूर्व की जो भी औषधियां, जैसे आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर हैं, अगर वो चल रही हैं तो उसको यथावत ही आप लेते रहें,
1: जी
0: अनावश्यक रूप से अपने से उसको कोई चेंज न करें जब
1: ना
0: तक कि आपको चिकित्सक कोई सलाह मशवरा न दे। बीमारियों से बचने का जो सबसे सरल तरीका है कि इस ऋतु में
1: जी
0: आपको स्निग्ध माने चिकनाई युक्त आहार जैसे घी का प्रयोग करना चाहिए। इस ऋतु में जैसे सरसों तेल का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि वो कटु रस प्रधान है।
1: जी
0: ग्रीष्म ऋतु में ये आप ध्यान रखिए कि आपको इसमें ज्यादातर सेवन करना है मधुर, तिक्त और
1: जी
0: कषाय रस का। आपको अम्ल माने ज्यादा खट्टा, कटु माने कड़वा और लवण नमकीन अत्यधिक, इन
1: जी
0: सब
1: जी जी
0: चीजों का त्याग करना है। तो आप अगर डायबिटिक हैं तो उस हिसाब से जो आपका आहार की तालिका चार्ट बनाई गई है उसके हिसाब से अपना भोजन ग्रहण करें। मुख्य रूप से केवल 2 बार आप भोजन ग्रहण करें और बीच में 6 घंटे का गैप रखें।
1: जी
0: हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि याम मध्यम न भुक्तव्यम, याम युग्मम न लंघेत। याम का मतलब होता है कि प्रहर, एक प्रहर के बीच में दोबारा न खाएं और 2 प्रहर से ज्यादा कभी खाली पेट न रहें। तो
1: जी
0: जो
1: जी
0: भी डायबिटिक रोगी हैं उस पे विशेष ध्यान देंगे
1: जी जी
0: कि
1: जी
0: उनका
1: जी
0: आहार जो शास्त्र सम्मत है, जो साइंटिफिक है, उसी तरीके से आहार लें। हर 2 घंटे पे भोजन न ग्रहण करें, 3 घंटे से पहले भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और 6 घंटे से ज्यादा कभी भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए। और रात्रि के प्रहर में मतलब सायं 7 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए सामान्य अवस्था में। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है
1: जी
0: कि जब हम लेट भोजन करते हैं तो भोजन करने के 1.5 घंटे के बाद हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं और वो सुलाने में मदद करता है।
1: जी जी
0: तो आप
1: जी जी
0: जितना लेट भोजन करेंगे आपको मेलाटोनिन हार्मोन उतना लेट बनेगा, तो उतना लेट आप सोएंगे। बहुत साधारण सी भाषा है, रातें छोटी दिन बड़ा हो रहा है।
1: जी जी
0: तो
1: जी जी
0: ये जो भी क्रॉनिक डिजीज से संबंधित व्यक्ति है, जिसको कोई भी जीर्ण व्याधि है, उसको सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि हल्का और सुपाच्य भोजन करे अपनी ताकत और अग्नि के हिसाब से। एक भोजन हमको आपको सूट कर सकता है लेकिन हो सकता है वो तीसरे व्यक्ति को सूट न करे। तो आप अपनी अग्नि क्षमता जो आपके लिए इजीली सुपाच्य है उस तरह का भोजन करें, नियत समय पे भोजन करें, गैप ज्यादा न रखें। स्वस्थ रहने के लिए हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन तरीका बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त उत्थिष्ठ जीर्णा जीर्ण निरूपयो स्वस्थो रक्षार्थमायुष।
1: जी
0: माने जिस व्यक्ति को भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने की इच्छा है उसे ब्रह्म मुहूर्त में माने सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। उठ करके आप थोड़ा सा उषापान माने जल पीजिए,
1: जी
0: नॉर्मल जल, बहुत गुनगुना भी नहीं और बहुत शीतल भी नहीं, जल का सेवन करें। उसके बाद अपना दिनचर्या जैसे शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के
1: जी जी जी
0: दातुन
1: जी
0: करें। कोशिश करें अगर संभव हो तो नीम की दातुन इस ऋतु में जरूर करें कि नीम तिक्त रस प्रधान होता है
1: जी जी
0: और तिक्त रस पित्त का शमन करता है। आप देखे होंगे कि जब हम लोग नीम का दातुन करते हैं तो हमको उबकाई सी आने लगती है,
1: जी जी जी जी
0: तो
1: जी
0: बेसिक क्या होता है वो पित्त को उत्तेजित करता है और पित्त बाहर निकलता है। तो एक जैसे आपने कहा ना डायबिटीज, तो अगर
1: जी
0: हमसे पूछिए तो मुझे तो ये लगता है कि केवल डायबिटीज रोगी अगर केवल नीम का दातुन ही करना शुरू कर दे तो डायबिटीज से काफी हद तक बच सकता है, क्योंकि नीम का दातुन एक औषधि है।
1: जी जी
0: आप
1: जी
0: देखिए,
1: जी
0: अब
1: जी
0: प्राचीन, बहुत प्राचीन नहीं, 30-40 साल पहले हमारे दादा परदादा गांव इत्यादि में नीम की दातुनी करते थे, लेकिन आप बहुत कम सुने होंगे कि आपके दादा परदादा को डायबिटीज था।
1: जी जी
0: हमारे
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: चिकित्सक मित्र कहते थे कि उस समय जांच नहीं होती थी।
1: हाँ
0: अरे
1: हाँ
0: भाई, जांच
1: बिल्कुल
0: नहीं होती
1: जी
0: थी
1: जी
0: तो
1: जी
0: भी आप लंबे समय तक डायबिटीज के साथ जीवित नहीं रह सकते हैं। वो खेती किसानी करते थे, नंगे पैर चलते थे, कील इत्यादि पैरों में चुभ जाती थी, पर
1: जी
0: उनके
1: जी
0: घाव
1: जी
0: जल्दी भर जाते थे। हल चलाते वक्त हल लग जाता था तो गहरा घाव बन जाता था, बट उनकी हीलिंग हो जाती थी। इसका
1: जी जी
0: मतलब कि उनको मधुमेह
1: नहीं
0: नहीं
1: था
0: था।
1: जी जी जी जी
0: नियमित शारीरिक श्रम करते

0: रूखे अनाज खाते थे, बिल्कुल संयमित था, प्रकृति के साथ जगते थे और प्रकृति के साथ सोते थे। मुझे लगता है पुनः आज इन्हीं सब चीजों की आवश्यकता है। देखिए, मधुमेह या हृदय रोग
1: जी
0: एक ऐसी बीमारी है जिसको हमने आपने पैदा किया है, ये वंशानुगत ज्यादा नहीं है। अगर वंशानुगत आप इसको मानते भी हैं
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: आप अपने कार्यों से इसको ठीक कर सकते हैं। ये ऐसी कोई आनुवांशिक बीमारी नहीं है कि अगली पीढ़ी में भी जाएगी। आप अगर जागरूक हो जाएं, समय पे आहार विहार इन सब चीजों का
1: हाँ, तो
0: ठीक
1: आप
0: से
1: बीमारी से
0: पालन
1: इससे
0: करें तो
1: बच
0: आप स्वस्थ हो
1: जाएंगे
0: सकते हैं।
1: जी। आपने कार्य के आधार पर कहा है कि जैसे किसान की आपने बात कर ली, आजकल जो हमारे बहुत युवा हैं जो दिन भर काम करते हैं, खासकर गर्मी में, कि बहुत शारीरिक श्रम कर रहे हैं, या वो भी जो थोड़ी देर में एसी में बैठ जा रहे हैं, थोड़ी देर में बाहर घूम रहे हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें कि जब तापांतर भी बहुत हो जा रहा है और एक लगातार बाहर काम कर रहा है।
0: देखिए, हमें आनुवांशिक रूप से अनुकूलन की क्षमता हमारे शरीर में मिली हुई है,
1: जी
0: हमारे मसल्स मेमोरी में ये चीजें पड़ी हुई हैं कि हम कैसे सामंजस्य बैठाएं। तो बस उसको थोड़ा सा ट्रिगर करने की जरूरत है।
1: जी जी जी
0: आप
1: जी
0: ऐसे समझिए कि बाल्यकाल में अगर आप साइकिल चलाना सीखते हैं और अगर आप 30 साल साइकिल नहीं भी चलाएं और आपको साइकिल दे दी जाएगी तो फिर आपको ABCD से शुरू नहीं करना है।
1: आप
0: थोड़ा
1: फ्री
0: डगमगाएंगे, आप
1: जी
0: तुरंत
1: जी
0: साइकिल पे बैठ जाएंगे और साइकिल चल
1: चल
0: जाएगी।
1: जाएगा।
0: तो ये जो ताप से बचना, शीत से बचना, ये हमारे सेल्स में मसल्स मेमोरी के रूप में पहले से है।
1: है
0: हम
1: जी।
0: भारतवासी को बस इसको थोड़ा सा जैसे हम अपनी आदत में लाएंगे, वो पुनः हमारी मसल्स मेमोरी जो अपने आप को रिजनरेट करके
1: रिकॉल कर
0: इजीली
1: लेंगे
0: रिकॉल कर लेगी।
1: जी जी
0: तो
1: जी जी
0: जितने भी युवा हैं, चूंकि हमारे DNA में पहले से पड़ा हुआ है,
1: जी जी जी
0: आप
1: जी
0: केवल ब्रह्म मुहूर्त में कुछ दिन उठने का प्रयास करिए। नियत समय पे उठिए, जैसा कि मैं बताया, जल इत्यादि बाहर निकलने से पहले परिपूर्ण मात्रा में पीजिए। युवा हैं, अत्यधिक शारीरिक व्यायाम इस ऋतु में मत करिए,
1: जी जी जी
0: बल
1: जी
0: का आधा उपयोग करिए शारीरिक शक्ति का। पेय पदार्थ को समय समय पे पीते रहें। पेय
1: जी
0: पदार्थ में भी मुख्य रूप से जैसा मैं कहूंगा कि सौंफ और मिश्री का शरबत बनाइए या सौंफ का पानी पीजिए,
1: जी जी जी
0: नारियल
1: जी
0: का पानी पीजिए, प्राकृतिक पेय पदार्थ की तरफ जाइए, छाछ मट्ठा पीजिए,
1: जी जी जी
0: पानी
1: जी
0: पीजिए,
1: जी
0: खीरा ककड़ी तरबूजा, जितने जलीय, आप देखिए प्रकृति की कितनी बड़ी सौगात है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है और खीरा ककड़ी तरबूज खरबूजा ऐसे ही टेम्परेचर में होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में जल है। तो सीजनल और रीजनल फूड के प्रति जाइए
1: जी जी जी
0: और
1: जी
0: जो
1: जी
0: घर का बना हल्का सुपाच्य भोजन हो उसको करिए, जलीय अंश का ज्यादा सेवन करिए,
1: जी
0: खीरा तरबूज ककड़ी जितना आप खा सकते हैं इनको खाइए, रोटी की मात्रा अभी कम कर दें,
1: जी
0: कार्बोहाइड्रेट लें लेकिन कम से कम मात्रा में लें और रसाहार की तरफ ज्यादा ध्यान दें।
1: जी हम उम्र की बात कर ही रहे थे और बच्चों की भी आपने बात की। कई बार हमारे बच्चे बता नहीं पाते कि हमें यह दिक्कत हो रही है या हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, कैसे हम उनको पूर्व में ही वो दिनचर्या रख दें या वो खान पान रख दें इस मौसम में, विशेषकर गर्मी के मौसम में, कि उनको कोई डिजीज ना हो।
0: तो देखिए, 5 साल से ऊपर का बच्चा तो बोलने में सक्षम है,
1: जी
0: जैसा उसको हम सिखाएंगे वैसा वो सीख
1: सीख
0: जाएगा।
1: जाएगा जी।
0: लेकिन जो न्यूनेट्स हैं या जो जो नवजात शिशु हैं उनको ठीक रखने का सबसे सरल तरीका है कि अगर मान लीजिए 6 महीने के अंदर का बच्चा है
1: जी
0: तो माता उसको केवल अपना स्तनपान कराएं, बाहर का कोई भी चीज उसको न दें। अगर
1: जी
0: उनको दुग्ध खुद नहीं बन रहा है तो ऐसे आहार आते हैं जो दुग्धवर्धक होते हैं, भोजन आहार के रूप में उनका प्रयोग शुरू करें और माता अपने आप को शीतल कूल काम रखें, ऐसे आहार द्रव्यों का प्रयोग करें जिससे उनके शरीर में शीतलता है, पित्त का समन हो। मैं इस ऋतु की केवल बात कर रहा हूँ,
1: हम गर्मी की ही बात कर
0: हाँ
1: रहे हैं।
0: इस
1: जी जी
0: ऋतु की
1: जी
0: बात कर रहे हैं, कि ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिससे उनके शरीर में बल भी रहे, बल का क्षय न हो, क्योंकि सूर्य जो है आपके बल को अवशोषित कर लेता है।
1: जी जी जी जी
0: आपके जितने रसाहार हैं, जो लिम्फेटिक चैनल में जो भी रस है शरीर में जलीय अंश है, उसको ये सोख लेता है अपनी गर्मी से,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: आपको बहुत दुर्बलता महसूस होती है। तो
1: जी
0: माताओं को भी चाहिए कि अपने आपको आहार के द्वारा संतृप्त करें।
1: जी
0: जैसे मान लीजिए किसी बालक को बार बार पेट में दर्द हो रहा है या इस तरह की चीजें हो रहा है, तो
1: जी
0: ऐसी माता खुद सौंफ का धनिये का मिश्रण बना लें,
1: जी
0: उसको पानी में उबाल लें या पानी में भिगो के छान के उसका पानी पिए, जो वायु का भी अनुलोमन करेगा और पित्त का भी समन करेगा, तो उनको पेट में दर्द नहीं होगा। उष्ण पदार्थों का परित्याग करें,
1: जी
0: जैसे लौंग और दालचीनी का प्रयोग न करें, हरी मिर्च लाल मिर्च का प्रयोग न करें, अचार नमकीन इत्यादि का प्रयोग न करें। ये
1: जी
0: साधारण साधारण छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हम ध्यान नहीं देते हैं।
1: जी जी
0: अगर इनका हम नियमित, देखिए आयुर्वेद में एक कहा गया है कि शरीर का अपना एक इच्छा होता है, स्वगुण इच्छा एक विपरीत गुण इच्छा, सबसे

0: पहले हमारा शरीर खुद बताता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जैसे हमारा गला खराब है तो आप देखिएगा कि ठंडा आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक देख के मन करता है कि इसको न पिए। ये पहला रिफ्लेक्स हमारा बॉडी का ऑटोनोमस रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये जो मैं अभी मसल्स मेमोरी की बात कहा तो वहां पे भी ये मेमोरी है, वो पहला वो रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्स देती है कि नहीं नहीं इसको मत लीजिए। आप देखे होंगे कभी अचानक आपको मन करता है कि नहीं आज बहुत मीठा खाना है, तो ये शरीर को उस समय मधुर पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो शरीर खुद उसको डिमांड करता है। हम उसको ओवरलुक न करें, अपने शरीर जो हमारा मांग रहा है उसको थोड़ा सा देखें, उसके अनुसार भोजन करें तो हम स्वस्थ रहेंगे।
1: हमारे कई श्रोता सर वो अपने संदेश भी भेजते हैं, अपने फोन कॉल भी करते हैं, कुछ प्रश्न मैं आपको संदर्भित कर रहा हूँ। एक हमारे श्रोता है, उन्होंने कहा कि बार बार लू लग जाती है जब ये गर्मी का मौसम आता है, क्या करें हम?
0: हाँ, तो बार बार लू से बचने का अगर पारंपरिक देसी तरीका में अगर पूछें तो प्रचुर मात्रा में आप पानी पिए कि घर से बाहर निकलने से पहले 3 से 4 लीटर, मतलब एक बार में 3 से 4 लीटर नहीं, मैं ये 24 घंटे जल की मात्रा बता रहा हूँ।
1: जी जी,
0: ज्यादातर जल का सेवन दिन के समय ही करें, रात्रि में जब आवश्यकता हो तब पिए, अनावश्यक रूप से रात्रि में जल पीने की जरूरत नहीं है। साथ में सत्तू का घोल बनाइए, उसमें थोड़ा सा जीरा डालिए, हींग का प्रयोग कम से कम करिए, क्योंकि हींग उष्णवीर्य है, हींग इस ऋतु में आपको फायदेमंद नहीं है, तो उसमें जीरा आप डाल सकते हैं, भुनी हुई जीरा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके। पुदीना बहुत अच्छा शीतवीर्य है, शरीर में शीतलता लाता है, पाचक अग्नि को भी तीव्र करता है, पेट में मरोड़ ऐठन को भी ठीक करता है। तो ऐसे पेय पदार्थों का प्रयोग करें जिसमें पुदीना भी हो, थोड़ा सौंफ धनिया इत्यादि भी हो। इलायची का प्रयोग कर सकते हैं हम, छोटी इलायची शीतवीर्य होती है, वो शरीर में शीतलता देती है। अत्यधिक गर्मी महसूस हो रही हो तो थोड़ा सा शीतली प्राणायाम, मैंने जिह्वा को सिकुड़ करके हवा को अंदर लेना, वो शरीर में तुरंत ठंडक पहुंचाता है। यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं कि शीतली प्राणायाम कैसे किया जाता है, तो जो शरीर को शीतलता प्रदान करे। पूरा सूती कपड़ा पहन के पूरे शरीर को ढक करके निकलें, जिसमें गमछा हो सकता है, दुपट्टा हो सकता है, और शरीर को पूरा ढक के चले जिससे कि टैनिंग भी ना हो और अत्यधिक टेम्परेचर ताप से भी बचें। शरीर की रक्षा स्वयं करें, क्योंकि इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी स्वयं है। परंपरा से जो आहार चला आ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए वो देशज है
1: जी।
0: हर कालखंड में हर स्थान के अनुसार भोजन बदल जाता है। अभी पूर्वांचल का भोजन अलग है और राजस्थान का भोजन अलग है, तो आप जिस देश जिस क्षेत्र में रहें वहां का जो भोजन है वो आपके शरीर के लिए हितकारी है, क्योंकि परंपरा से और काल से भी सिद्ध है, क्योंकि बहुत लंबे समय से उस कार्य को हम करते आ रहे हैं। तो बहुत एक्सोटिक फूड, एक्सोटिक एक्सरसाइज, इन सब चक्करों में न पड़ के साधारण घर का सुपाच्य भोजन, अगर आप समरी करने बोलिए तो मैं कहूंगा पुराने चावल, गेहूं और जौ की रोटी, तरोई, कद्दू, लौकी की सब्जी, थोड़ी हल्की दाल, प्रोटीन जल्दी आसानी से नहीं पचता है तो अत्यधिक प्रोटीन भी नहीं, खट्टे फलों का त्याग, मीठा आम आप ले सकते हैं, घी प्रतिदिन आप 5 ग्राम तक
1: जी।
0: पर वो गाय का देसी घी होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमारे साथ लाइन पर है, वो अपना सवाल पूछना चाह रही है, मैं उनका सवाल आपको संदर्भित कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार डॉक्टर साहब, ये बताइए डॉक्टर साहब कि गर्मी के मौसम में अपनी त्वचा की रक्षा कैसे कर सकते हैं?
0: हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रुक्षता की वजह से त्वचा में ड्राईनेस बढ़ती है
1: जी।
0: तो इससे बचने का जो सबसे सरल तरीका है कि आप सौंफ का पानी, सौंफ का शरबत पीजिए, जिससे कि अंदर से शीतलता आए। वाह रूप में मुल्तानी मिट्टी और चंदन जो बाजार में मिलता है, लकड़ी वाला चंदन, उसको घस के एक लेप बनाए, उस लेप से स्नान करें। अगर संभव हो तो गुलाब जल
1: जी, जी।
0: गुलाब जल पूरे शरीर पे आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा ही गुलाब जल पूरे शरीर पे मर्दन कर लें, या जो जल से स्नान करें उसमें थोड़ा गुलाब जल डाल लें
1: जी।
0: गुलाब जल डाल के उससे स्नान करें, सौंफ पानी में भिगो दें बाल्टी में, थोड़ा सा उसके मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं, जिससे शरीर की आपकी दुर्गंध भी चली जाएगी, त्वचा भी कांति युक्त होगी और त्वचा में शीतलता आएगी। तो मुल्तानी मिट्टी, चंदन, गुलाब इत्यादि का लेप का प्रयोग करें।
1: डॉक्टर साहब, एक श्रोता है हमारे और उनका एक सवाल है, मैं वो सवाल आपको संदर्भित कर रहा हूँ।
2: डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की उम्र 7 साल है, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो अक्सर वो अपने पेट में दर्द की शिकायत बताता है, तो डॉक्टर साहब उसकी दिनचर्या कैसी रखें या उसका खान पान कैसा रखें जो उसको इस तरह की परेशानी बार बार ना आए?

0: देखिए, जैसे बार बार वो पेट दर्द बता रहा है, तो
1: जी
0: इसका मतलब कि पित्त बढ़ने से उसके शरीर में अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी, जिसको आधुनिक भाषा में कह सकते हैं,
1: जी
0: ये हो सकता है, या वायु का प्रकोप हो गया
1: जी
0: वर्ष
1: जी जी
0: ग्रीष्म ऋतु में ना, वायु का संचय होता है, इसका प्रकोप होगा वर्षा ऋतु में, और अभी हमारे ऊपर पित्त का पूरा आघात है।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: पित्त से जैसे बचने वाली चीजें, माने जितनी भी शीत वीर्य ठंडी तासीर की चीजें हैं उनको खिलाएं। पेट के दर्द और मरोड़ में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि धनिया और सौंफ
1: जी
0: 10-10 ग्राम की मात्रा में ले लें, 1 लीटर पानी में उबालें, और उबाल के उसको छान लें, और दिन भर वही पानी थोड़ा थोड़ा करके बालक को पिलाएं। तो अगर सामान्य पेट दर्द होगा तो निश्चित रूप से इन घरेलू इलाज से वो ठीक हो जाता है, और उसके बाद भी अगर दर्द ठीक ना हो रहा हो तो किसी चिकित्सक से संपर्क करें कि कहीं बच्चे को कोई वार्म इन्फेस्टेशन या कोई और दिक्कत तो नहीं है जिसको हम एक सामान्य समझ रहे हैं। अगर सामान्य पेट दर्द है तो
1: जी
0: हल्का सुपाच्य भोजन दें, और समय पे जल्दी खिलाएं, शाम को 7 बजे जरूर भोजन करा दें, और बहुत लेट नाइट भोजन न कराएं। भोजन कराते वक्त बच्चे को मोबाइल न दिखाएं, क्योंकि मोबाइल देखते हुए जो बालक भोजन करता है या चलचित्र या कुछ भी देखते हुए, तो उसका जो मस्तिष्क है उस चित्र पे ज्यादा रहता है, न कि भोजन पे नहीं रहता है। आप अगर भोजन को समझ के खाइए, भाव के साथ खाइए, देखिए
1: जी
0: एक
1: जी
0: किशमिश दाने को खाली लीजिए और सोचिए कि किशमिश किसने बनाया, कैसे बन के आया, और फिर उसके भाव के साथ उसको मुंह में रख के दबा के खाइए, आप देखिए आपको लगेगा कि इससे अच्छा किशमिश मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाया था। तो मतलब क्या है कि आपके हार्मोन उस तरीके से स्रावित होने
1: स्रावित
0: लगते हैं।
1: होने
0: तो
1: लगे।
0: भोजन के समय अगर कोई विभत्स हम सीन देख रहे हैं या मोबाइल में कोई, तो वो हमारे लिए हितकारी नहीं है। तो बच्चों को इस सब चीजों से अगर बचाएं, बच्चा धीरे धीरे आराम से खूब चबा के खाए, जल्दीबाजी में न खाए, तो निश्चित रूप से इन सब पेट दर्द से और बीमारियों से बच जाएगा।
1: जी, एक और श्रोता है सर, उनका संदेश है कि मेरे बच्चे की उम्र 5 बरस है और जब भी गर्मी का मौसम आता है और वो ठंडे पेय पदार्थों का भी सेवन कर लेता है तो बार बार गला खराब होता है, खांसी बहुत आती रहती है।
0: ठंडा का मतलब क्या है? हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है और पानी का टेम्परेचर कितना होना
1: जी
0: चाहिए?
1: जी
0: देखिए, हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री
1: सर जी जी
0: सेंटीग्रेड है
1: जी जी जी
0: तो 5-6 डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। ठंडा पानी मतलब नॉर्मल वाटर जो
1: जी
0: मटके में रखा हुआ है घर में।
1: हाँ
0: आप ध्यान दीजिएगा, जो
1: जी
0: भी श्रोता है उनका बच्चा आता होगा तो एकदम से फ्रिज का पानी निकाल के पी
1: पी
0: लेता
1: लिया
0: होगा,
1: जी जी जी
0: आइसक्रीम खा लेता होगा, वो सोचता होगा कि तुरंत कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, पर इसके वजह से उसको रेकरेंट इन्फेक्शन हो रहा होगा।
1: जी जी जी जी
0: शीतल जल कहने का मतलब हमारा होता है कि वो जल जिसका टेम्परेचर 22-25 डिग्री हो, न कि 2 डिग्री और 8 डिग्री और 4 डिग्री,
1: जी जी जी
0: बल्कि
1: जी
0: 37 डिग्री है तो 30 डिग्री का ही पानी लीजिए, 22 डिग्री भी थोड़ा ठंडा ही हो जाएगा।
1: जी जी जी जी
0: और प्रतिदिन स्नान करना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन स्नान करना इसलिए जरूरी है सर कि हमारे पूर्वजों का इतना बड़ा थॉट है कि प्रतिदिन स्नान करने से हमारे शरीर में हीट शॉक प्रोटीन बनते हैं
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मददगार है। देखिए, हमारे पूर्वज हमसे क्या कहते हैं कि सुबह
1: जी
0: उठते ही नहाओ,
1: जी
0: नॉर्मल पानी से नहाओ, वो माने
1: गर्म
0: ठंडा
1: पानी
0: पानी,
1: का।
0: गर्म पानी अवॉइड, इसलिए
1: जी
0: कि
1: जी जी
0: देखिए बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, आप गूगल करके देखिएगा नॉर्मल पानी का टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल पानी का टेम्परेचर 15-16 डिग्री, जनरली 20 डिग्री के आसपास, मान लीजिए कि 15 से 20 डिग्री में नॉर्मल टेम्परेचर रहता
1: जी
0: है।
1: जी जी जी
0: शरीर हमारा 37 डिग्री का है, तो जैसे ही हम नॉर्मल पानी डालते हैं अपने शरीर पे तो एक वेरिएशन होता है
1: जी
0: शरीर
1: जी
0: के और
1: जी
0: पानी में, तो शरीर को एक झटका लगता है, तो शॉक प्रोटीन डेवलप करता है,
1: जी
0: जो
1: जी
0: हीट
1: जी जी
0: शॉक
1: जी
0: प्रोटीन अत्यधिक ठंडा और गर्म लगने से ही बनता है,
1: जी जी
0: और वो
1: जी
0: शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हमने आपसे एक हीट शॉक प्रोटीन की बात करी कि प्रत्येक दिन नहाना बहुत जरूरी है,
1: जरूरी है। जी जी जी
0: और वो उतना ही आवश्यक है जिससे कि हमारा शरीर आदी रहे इस तरह के झटके झेलने के लिए, कि जो ठंडा गर्म थोड़ा बहुत लगे,
1: जी
0: तो
1: जी
0: हम अभ्यासरत रहेंगे तो हमारे शरीर में अनुकूलन की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी।
1: डॉक्टर साहब, विमर्श तो हम कई घंटों और कई दिन तक कर सकते हैं इस विषय पर, चूंकि समय नहीं है, हमारे श्रोताओं को चलते चलते संक्षेप में गर्मी के मौसम में बचने के उपायों के बारे में क्या बताना चाहेंगे?
0: देखिए, नट सेल में अगर हम बात करें
1: जी
0: तो प्रत्येक दिन सुबह उठ करके आप सूर्योदय से पहले उठें, अपना एक दिनचर्या निर्धारित करें, उसके हिसाब से काम करें, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के थोड़े से व्यायाम करें,
1: जी
0: व्यायाम करने के बाद आप स्नान इत्यादि करें। आध्यात्मिक शांति माने मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ी, जो भी धर्म को आप मानते हैं उसके प्रति थोड़ा आभार व्यक्त करें।

0: जिसने भी आपको इस सृष्टि पे लाया है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: मैंने आध्यात्मिक सुख के लिए थोड़ी सी पूजा पाठ, फिर हल्का सुपाच्य भोजन, घर से जब भी बाहर निकले अपने आप को रिहाइड्रेट करें, शरीर के अंगों को अधिक से अधिक सूती कपड़ों से ढक करके निकले, जिससे कि आपको आतप माने सूर्य का आघात तुरंत न लगे, आपको हीट स्ट्रोक न हो। उष्ण चीजें, कटु चीजें और ज्यादा अम्ल एसिडिक चीजें का परित्याग करें। इसके विपरीत मधुर रस, स्निग्ध रस और कषाय रस का प्रयोग करें। बेल का शरबत खा सकते हैं, खीरा ककड़ी तरबूज खूब खाएं। रात्रि का भोजन जल्दी करें, 7 बजे तक भोजन कर लें और भोजन बहुत कम मात्रा में करें।
1: जी जी,
0: तो कहने का तात्पर्य है कि रात्रि में हमारे सारे अंग अपने आप को रिपेयर करते हैं, तो रिपेयर करने के लिए आप उनको भोजन से ओवरलोड न करें कि वो अपने आप को रिपेयर न कर पाए। तो जैसे लिफ्ट भी चलती है तो देखिए रात्रि में रिपेयर के लिए लिफ्ट को टाइम समय दिया जाता है, तो उसी तरह से आप हल्का भोजन रखिए जिससे कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग अपने आप को रिपेयर करें। एक अच्छी निद्रा लें, शीत गृह में रहने का प्रयास करें, शीत गृह माने जो ठंडा घर हो जहाँ पे सीधे सूर्य की रोशनी ना आते हो, और जल्दी सुबह उठने का अभ्यास ये सबसे जरूरी है, क्योंकि हमेशा स्वस्थ रहने के लिए एक मूल मंत्र यही है कि उदनादित्य रश्मिभ्य शीर्णो रोग मणि निशित, जो उगते हुए सूरज को देख लेता है उसके असंख्य रोग स्वतः अपने आप ठीक हो जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर अभय तिवारी, और डॉक्टर साहब ने ढेरों ऐसी बातें बताई, खास करके कि वो बातें जो आपके घरों में उपलब्ध हैं, वो ढेरों वो पदार्थ उपलब्ध है जिनका उपयोग करके, उपभोग करके आप गर्मी के मौसम में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। खास करके कि आप जब ये बातें करेंगे, ये विमर्श करेंगे, तो आप स्वयं को, अपने आस पड़ोस को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।
2: तो दोस्तों, हमें यूं ही सुनते रहें, और जो हमारे अगले कार्यक्रम का विषय है वो है किडनी रोग, कारण, लक्षण और उपचार। आप इससे संबंधित सवाल और संदेश हमें भेज सकते हैं, हम आपके संदेश और कॉल अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमें यूं ही सुनते रहें, नमस्कार।

0: ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: नागरिकता प्रमाण पत्र। आपसे भेंट कर रहे हैं सुरेंद्र राजेश्वरी।
1: संकल्प कार्यक्रम के सुनने वालों को सुरेंद्र राजेश्वरी का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं श्री विकास मिश्रा जी, और आपसे बातचीत का विषय है दिव्यांग विशिष्ट प्रमाण पत्र प्रक्रिया, आवश्यकता एवं लाभ। विकास जी, सबसे पहले आकाशवाणी लखनऊ के सुनने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: हमारे सुनने वालों को बताएं कि ये जो दिव्यांगता विशिष्ट प्रमाण पत्र है, ये क्या है और उसकी कानूनी क्या परिभाषा है?
2: सर, ये दिव्यांगता विशिष्ट पहचान पत्र, जिसे हम सभी लोग UDID के नाम से जानते हैं, और UDID जैसे सामान्य लोगों के लिए आधार कार्ड है, बिल्कुल वैसे ही दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र बनाया जा रहा है। ये विशिष्ट पहचान पत्र दिव्यांगजनों के लिए इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि इससे पहले दिव्यांगजनों के पास आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए बहुत सारे कागजात हुआ करते थे, लेकिन UDID आने के बाद उनके पास एकल कार्ड रहेगा, मतलब एक कार्ड रहेगा, और वो दिव्यांगता संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी का लाभ उस कार्ड के तहत उठा पाएंगे।
1: अच्छा, ये जो प्रमाण पत्र आप जारी करेंगे, इसके लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो क्या है, जरा विस्तार से बताएं।
2: सर, पहले तो ये जो प्रमाण पत्र है वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार की ओर से जारी होता है, और इसमें प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होता है जो भी दिव्यांगजन है उसका, और उसके बाद ही जारी किया जाता है। इसका प्रोसेस ये है कि सर्वप्रथम जो भी दिव्यांगजन है वो क्या करेगा, वो किसी भी साइबर कैफे पे या किसी भी UDID सेंटर पे जाकर वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना पंजीकरण करवाएगा। पंजीकरण करवाने के लिए उसके पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, जैसे उसके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है
1: जी,
2: साथ साथ में उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास एक फोटो और उसका थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर होना चाहिए। ये सभी कागजात लेकर जब वो UDID सेंटर पे जाएगा तो वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर उसके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे मेडिकल के लिए CMO ऑफिस जाना होगा, जहां पर उसका चिकित्सा जांच होगी, और उसके बाद उसे UDID और साथ साथ में जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है दोनों ही निर्गत कर दिए जाएंगे।
1: अच्छा, जो दिव्यांगता का जो प्रतिशत है, इसकी भी कोई बात देता है कि इसके भी कोई नियम कानून है?
2: बिल्कुल, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के आधार पर। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे दिव्यांगजन जिन दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा वो परसेंटेज 40% रखी गई है, 40% रखी गई है, 40% या उससे आगे जितना भी 50, 60, 70, 80 जो भी जाएगा उन सभी को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, या उत्तर प्रदेश सरकार या जिस भी प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाएगा।
1: अच्छा, इस दिव्यांगता विशिष्ट जो पहचान पत्र है, इसको बनाने में कितना समय लगता है? अक्सर हमारे सुनने वाले थोड़ा परेशान भी होते हैं और बार बार पूछने की बड़ी लंबी भीड़ लगी है, पता नहीं कब नंबर आएगा। अच्छा, नंबर आने के बाद भी हम जब आवेदन कर देते हैं तो उसके बाद कितना वक्त लगता है कार्ड हमारे पास पहुंचने पर?
2: देखिए सर, दिव्यांगता विशिष्ट पहचान पत्र बनने में कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। ये निर्भर करता है वहाँ के जो CMO हैं, CMO ऑफिस में जो लोग बैठे हैं वो कितने अच्छे तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपना चिकित्सा जांच कराता है और उसके एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद ये प्रमाण पत्र उन लोगों को निर्गत कर दिया जाता है, और अब तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है सर, ये उनके घर तक बाई पोस्ट पहुंच जाता है। UDID, जिसे हम दिव्यांगता विशिष्ट पहचान पत्र कह रहे हैं, और साथ साथ में उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दोनों चीजें उनके घर तक पहुंच जाती हैं बाई पोस्ट।
1: कोई फीस भी देनी होती है इसके लिए?
2: सर, इसके लिए कोई फीस नहीं है, और हम CRC लखनऊ के लोगों ने इस दिव्यांगता प्रमाण पत्र को बनाने के लिए या विशिष्ट पहचान पत्र को बनाने के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम चालू करी है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग घर बैठे दिव्यांगजनों का UDID रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो हमें फोन द्वारा आवश्यक दस्तावेज भेजते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, और हम उनका पंजीकरण करने के बाद उनकी रसीद और उनकी एप्लीकेशन उनको उसी व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, जिससे कि उन्हें हमारे ऑफिस तक ना आना पड़े और घर बैठे उनको वो पंजीकरण प्राप्त हो जाए।
1: अभी आपने अपनी बातों में CRC लखनऊ का नाम लिया, ये CRC क्या है?
2: CRC सर, ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का एक उपक्रम है जो लगभग सभी प्रदेशों में काम कर रहा है।
1: अच्छा।
2: और वर्त

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संकल्प। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विकास मिश्रा से भेंटवार्ता। विषय है दिव्यांग।

0: वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर तीनों जगह सीआरसी काम कर रहा है।
1: अच्छा, ये जो दिव्यांगता विशिष्ट पहचान पत्र है, इसको क्या हम ऑनलाइन भी इसको आवेदन कर सकते हैं क्या?
0: बिल्कुल सर, ऑनलाइन ही आवेदन हो रहा है। और वही हमने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अगर आपको कहीं नहीं जाना है, एक्चुअली में होता क्या है सर, साइबर कैफे में जब वो लोग पंजीकरण करते हैं तो वो लोग दिव्यांग जनों के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं और कोई ना कोई गलती कर देते हैं, तो इसका आवेदन जो है वो रजिस्टर्ड लोगों से ही कराना चाहिए। सीआरसी लखनऊ आके लोग आवेदन करा सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी वो हमें भेज सकते हैं और हम आवेदन कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा सर।
1: क्या ये प्रमाण पत्र पूरे भारत में मान्य होता है या केवल राज्य स्तर पर?
0: ये पूरे भारत में मान्य है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि पूरे भारत में मान्य है और सभी योजनाओं के लिए मान्य है। सिर्फ रेलवे में अलग से कार्ड बनाना पड़ता है, रेलवे रियायत के लिए अलग से कार्ड बनाना पड़ता है, और सभी जगह ये कार्ड मान्य है दिव्यांगजनों की सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए।
1: अच्छा, शिक्षा, रोजगार या जो स्वास्थ्य है, इस क्षेत्र में क्या क्या लाभ इनको मिल सकते हैं?
0: सर, शिक्षा में अभी देखा गया है कि हमारा जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें कहा गया है कि कक्षा 12 तक दिव्यांगजनों के लिए फ्री में शिक्षा दी जाएगी। और उसके बाद डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे लखनऊ में ही स्थित है, वहाँ पर भी बहुत ही कंसेशनल फीस पर इन लोगों को शिक्षा दी जाती है। दूसरी यूनिवर्सिटी जगत गुरु राम भद्राचार्य यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही कंसेशनल रेट पर शिक्षा दी जाती है। साथ साथ में स्कॉलरशिप की भी सुविधाएं हैं और साथ साथ में इनको फ्री में उपकरण भी दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं सर दिव्यांगजनों के लिए, जिनका लाभ दिव्यांगजन उठा सकते हैं।
1: अच्छा, सब्सिडी वगैरह भी मिलती है कहीं अगर?
0: बिल्कुल, सब्सिडी भी मिलती है सर, इनकम टैक्स में भी छूट है। इवन जब वो लोग अपना जमीन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहां पर भी उनकी प्रतिशतता को देखते हुए उन्हें स्टैम्प ड्यूटी पे छूट मिलती है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी उनको छूट मिलती है और उसमें भी उनके लिए कुछ आरक्षण निर्धारित किया गया है कि उनके लिए किस तरीके से घर दिए जाएंगे।
1: अच्छा, सार्वजनिक जो परिवहन है इसमें भी कहीं कुछ छूट है?
0: सार्वजनिक परिवहन में भी सर, बस में फ्री, उनके लिए एक साथ में स्कॉट भी जा सकता है, उनके लिए भी फ्री है, लेकिन वो सर डिपेंड करता है उनकी प्रतिशतता पे।
1: अच्छा,
0: सभी, अगर हम दिव्यांगताओं की बात करें तो सभी में छूट नहीं मिलती है। कुछ ऐसी दिव्यांगताएं हैं जिनको एस्कॉर्ट के साथ में छूट मिलती है और कुछ ऐसी दिव्यांगताएं हैं जिनको सिर्फ एक व्यक्ति को छूट मिलती है जो कि दिव्यांगजन है।
1: स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है क्या?
0: स्कॉलरशिप भी मिलती है सर, राज्य की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलती है सर, और साथ साथ में केंद्र सरकार की तरफ से भी स्कॉलरशिप इन लोगों को मिलती है। साथ साथ में उस स्कॉलरशिप में उपकरण के लिए भी पैसा दिया जाता है।
1: विकास जी, सरकार ने जो प्रक्रिया बनाई है वो बड़ी सरल और पारदर्शी है, ऐसा हमारा मानना है। कौन कौन से कदम ऐसे हैं जिस पे भरोसा हो सके कि हाँ, सरकार ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, इसका लाभ वास्तव में सही व्यक्ति को मिल रहा है?
0: सर, योजनाएं तो बहुत सारी हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहला स्टेप हम सभी को मिलकर लेना चाहिए, क्योंकि इन योजनाओं की पहुंच दिव्यांग जनों तक हो, ये सबसे आवश्यक है। हम, आप और हमारा जितना भी सामाजिक परिवेश है, वो ये कोशिश करें कि दिव्यांगजनों से संबंधी जो योजनाएं हैं या दिव्यांगता संबंधी जो बातें हैं वो जन जन तक पहुंचें, लोग इसके प्रति जागरूक हों और इन योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अंतिम पायदान पे है। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, जब तक हम सब लोग साथ नहीं देंगे तब तक इन योजनाओं का लाभ सभी को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि अगर हम सभी लोग एक सामूहिक प्रयास करें तो निश्चित ही हर व्यक्ति तक ये सुविधाएं पहुंचेंगी।
1: ये प्रमाण पत्र बनवाने में कोई ऐसी कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ता है?
0: सर, कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है कभी कभी, और वो कठिनाई का सामना इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है वो डायरेक्ट ही CMO ऑफिस पहुंच गया और वहां पे अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रयास करने लगा, तो वहां से उन्हें फिर भागना पड़ता है और UDID रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसलिए उसका जो प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस से होकर, प्रक्रिया से होकर जाएंगे तो किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा।
1: आपका एक लंबा अनुभव है, दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र है, विशिष्ट पहचान पत्र, इसको और अधिक सरल कैसे बनाया जा सकता है आपकी नजर में? कुछ आपको लगता है ऐसा कि कुछ सरकार को ऐसा भी करना चाहिए, शायद प्रक्रिया और सरल हो जाए, कोई ऐसा सुझाव है दिमाग में?
0: जी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए जहां तक मुझे लगता है कि अगर कम्युनिटी लेवल पर, सामुदायिक लेवल

0: पर जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं और जो भी BDO हैं या जो भी गांव से रिलेटेड जो भी अधिकारी या जो भी लोग हैं वो ग्रामीण स्तर पर इस तरीके के कैंप आयोजित करवाएं जिसमें कि उनका UDID रजिस्ट्रेशन किया जा सके, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सरल इसको बनाया जा सकता है।
1: विकास जी, अगर एक बार हमारा ये जो दिव्यांगता विशिष्ट प्रमाण पत्र है वो मिल गया, उसके बाद भी किसी तरह की कोई कठिनाई होती है क्या?
0: जी सर, बहुत सारी समस्याएं दिव्यांगजनों को आती हैं। पहली समस्या तो ये है कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं जिन तक ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID अभी तक नहीं पहुंचा है। उनके लिए यही कहना है कि वो जो भी UDID सेंटर है वहां पर जाएं, उनसे बात करें, उनको अपनी समस्या बताएं। दोबारा सरकार ने सुविधा दी है कि हम दोबारा उसको अपने घर पे मंगा सकते हैं, उसके लिए जरूरी कागजात वहां पर लेके जाएं और दोबारा इशू हो जाएगा, पुनः उनके घर पे पहुंच जाएगा। दूसरी समस्या आती है सर, कभी कभी कुछ एंट्रीज गलत हो जाती हैं जिसकी वजह से दिव्यांगजनों को बहुत भागना पड़ता है, परेशानी होती है। तो मेरा यही कहना है कि जब भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन करवाएं, पंजीकरण करवाएं, वो ऐसे लोगों से करवाएं जो उसके बारे में जानकारी रखते हों, स्पेशल जो UDID सेंटर है वहीं पे करवाएं।
1: हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप, वो कितना सजग रहें, कितना सतर्क रहें और किस तरह से इन योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द ले सकें?
0: दिव्यांगजनों से यही कहना है कि सभी जितने भी दिव्यांगजन हैं वो UDID कार्ड अपना बनवा लें ताकि उन्हें किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए किसी समस्या का सामना न करना पड़े और साथ साथ में वो अपनी शिक्षा और दीक्षा बढ़ चढ़ कर लें जिससे कि कहीं भी उनके लिए अगर नौकरियां आती हैं तो उन नौकरियों में उनकी एलिजिबिलिटी है, अर्हता है, वो कहीं भी कम ना पड़े। और ऐसे भी दिव्यांगजन बहुत सारे हैं जो दिव्यांगजन पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको किसी विशेषज्ञ से मिलकर अपने लिए थोड़ा सा काउंसलिंग परामर्श लेना चाहिए कि वो आगे क्या कर सकते हैं, तो जरूर ही उनके लिए कोई सकारात्मक रास्ता निकलेगा और वो भी हमारे देश के लिए बेहतर साबित होगा, हमारी देश की आर्थिकी में अपना सहयोग दे पाएंगे।
1: विकास मिश्रा जी, आपने दिव्यांगता विशिष्ट प्रमाण पत्र, उसकी प्रक्रिया, उसकी आवश्यकता और कैसे उससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय पर विस्तार से आपने हमारे दिव्यांग भाइयों को, दिव्यांगजनों को जानकारी दी। हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप स्टूडियो आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबके साथ साझा की। श्रोताओ, इसके साथ ही आज का संकल्प कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अभी आप विकास मिश्रा से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे, आपसे भेंट की सुरेंद्र राजेश्वरी ने। इसके साथ ही आज का संकल्प कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें, आज शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकभाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे शुकदेव प्रसाद छैल, राम दुलारे सिंह सुजान और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे रवि प्रकाश अवस्थी। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सफलता की कहानी के अंतर्गत मोहम्मद फहद फारूकी से हम आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता जिसका विषय रहेगा आम की सघन बागवानी। आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम होगा पत्र के लिए धन्यवाद, शाम 7:31 पर। कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे सोमोना एस पांडे और नीना सोनकर। हिंदी कार्यक्रम में आज रात्रि 8 आप सुनिएगा डॉक्टर श्रवण कुमार से वार्ता, विषय रहेगा शब्दों के शिल्पी केदारनाथ सिंह। रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण रात्रि 10 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा और हम उसे अनुप्रसारित करेंगे।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 4:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म उम्मीद का ये गीत, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने। गीत के बोल शकील बदायूनी के और संगीत रवि का है।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म नीला आकाश का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीत के बोल राजा मेहंदी अली खान के और संगीत मदन मोहन का है।

और अभी जो सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत बद किया, फिल्म आरजू के लिए जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने।

मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म आरजू के इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक झनकार। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं रंजुल जयंत गौतम और उनके साथी। आज हम आपको सुनवा रहे हैं आपके गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस खेमटा के साथ।

लोक झंकार कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रंजुल जयंत गौतम और साथियों के स्वर में कुछ भोजपुरी लोकगीत। अब सुनिए इन्हीं स्वरों में कहरा।

लोक जानकारी कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं रंजुल जयंत गौतम और साथियों के स्वर में कुछ भोजपुरी लोकगीत आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं आपके स्वर में ये पचघर।

0: अभी आप सुन रहे थे रंजुल जयंत गौतम व साथी के गाए भोजपुरी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम लोक छंकार अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्ट

0: ऑप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोल कालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
0: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँवों तक पहुँचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत ने भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग। नई उड़ान ये कार्यक्रम सुनिएगा आज शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में रीना से सुनिएगा ग्रामीण परंपराओं में छिपी आत्मनिर्भरता। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोकायतन में आप सुनेंगे लोक भाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे सुखदेव प्रसाद शैल, राम दुलारे सिंह सुजान।

और रवि प्रकाश अवस्थी। सफलता की कहानी आम की सघन बागवानी, इस विषय पर मोहम्मद फहद फारूकी से की गई डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी में शाम 6:50 पर। आज शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम शाम अवध का समय रहेगा शाम 7:45। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा वार्ता शब्दों के शिल्पी केदारनाथ सिंह, वार्ताकार होंगे डॉक्टर श्रवण कुमार। अनुराधा पौडवाल के गाए भजन आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात्रि 8:10 पर। श्रोताओं के पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 9:30 पर। ये थी जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की, और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 10:10 पर आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। रात्रि 11:10 पर सुनेगा कार्यक्रम सरकार के 12 साल गरीब कल्याण। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। जिले की हलचल आप सुनते हैं सुबह 9:15 पर। सुबह 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम के तहत समात फरमाईगा मुबाहिसा, अहदे हाजिर में वालदेन की जिम्मेदारी। शुरुका होंगे डॉक्टर परवीन शुजाउत और मोहम्मद खालिद बांदवी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगी। कल प्रातः 6:05 पर कृषि चर्चा में जानिए डॉक्टर रविंद्र कुमार तोमर और डॉक्टर सुशील कुमार राय से नए बाग लगाने की तैयारी के बारे में। स्वाद और पोषण का सफ़ेद स्रोत, इस विषय पर नीना सोनकर की वार्ता आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। समय रहेगा प्रातः 7:00। प्रातः 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। विषय होगा विश्व अभिभावक दिवस, तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। धान की शंकर प्रजातियां, डॉक्टर राम प्रताप सिंह से की गई डॉक्टर सुशील कुमार राय की ये भेंटवार्ता प्रसारित होगी कार्यक्रम विज्ञान और किसान में कल दिन में 2:30 से। शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग नई उड़ान। ये कार्यक्रम सुनिएगा कल शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में आनंद से सुनिएगा विकसित भारत में जन भागीदारी जनमत का विकसित संकल्प। कल शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोकायतन में आप सुनेंगे अनिल प्रताप सिंह की वार्ता आयुष्मान भारत योजना से गांवों में बदलाव, गर्मी में पशुओं के रोग कारण और निवारण। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह से की गई ये भेंटवार्ता सुनिए कार्यक्रम खेती किसानी में कल शाम 6:50 पर। भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:31 पर सुनिएगा डॉक्टर वैभव जैन से की गई आशीष चतुर्वेदी की बातचीत मोतियाबिंद की समस्या और समाधान। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा होम्योपैथी में संक्रामक रोगों से बचाव, इस विषय पर डॉक्टर अंबुज शुक्ला से आशीष चतुर्वेदी की बातचीत। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर आराधना अस्थाना की वार्ता साहित्य में नारी चेतना का उदय, वाचन और संपादन होगा सुरेंद्र राजेश्वरी का। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा शशिकांत पाठक का पखावज वादन कल सुबह 7:31 पर और उसके बाद रात्रि 10:30 पर। श्री रामचरितमानस की संगीतमय प्रस्तुति आप सुनते हैं सुबह 6:43 पर। दिग्विजय नाथ सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम लोकरंग में कल सुबह 9:50 पर और कार्यक्रम लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर। गोपाल सिन्हा के गाए गीत आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात्रि 8:10 पर। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम का आनंद लीजिएगा कल सुबह 11:00 से। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। युवा श्रोता सुने कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शिवानी वर्मा। दोस्तों आज है 31 मई और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और एक स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना है। दोस्तों तंबाकू केवल एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसी लत है जो धीरे धीरे इंसान की सेहत, परिवार और भविष्य को प्रभावित करती है। आज हम इस कार्यक्रम में इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आज तो पार्टी चाहिए,
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों, युवाओं में तंबाकू की लत तेजी से बढ़ रही है। अक्सर लोग और दोस्तों के दबाव या शौक में इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन बाद में यही आदत लत बन जाती है। अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो उसे रोकने की कोशिश करें। आपका एक सकारात्मक सुझाव किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तंबाकू छोड़ना मुश्किल हो सकता है दोस्तों, लेकिन असंभव नहीं। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है, तो चलिए इस अवसर की शुरुआत करते हैं। और अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: दोस्तों, जिंदगी सचमुच बहुत खूबसूरत है, लेकिन तंबाकू इस खूबसूरती को धीरे धीरे कम कर देता है। विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियों और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। एक छोटी सी आदत कई बड़े सपनों को अधूरा छोड़ सकती है। याद रखिए, तंबाकू छोड़ने का सबसे अच्छा समय कल नहीं, आज है। तो चलिए अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सफलता की असली कुंजी है। तंबाकू की लत छोड़ना भी एक बड़ी जीत है। शुरुआत में कठिनाई हो सकती है, लेकिन दृढ़ संकल्प और परिवार के सहयोग से यह संभव है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आइए एक संकल्प लें कि मैं तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा, दूसरों को भी इसके नुकसान के बारे में जागरूक करूंगा और स्वस्थ जीवन शैली अपनाऊंगा। तंबाकू से दूर रहकर हम न केवल अपनी सेहत बचाते हैं, बल्कि अपने परिवार को भी निष्क्रिय धूम्रपान के खतरों से सुरक्षित रखते हैं। याद रखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के पास हजार इच्छाएं होती हैं, लेकिन एक बीमार व्यक्ति की केवल एक ही इच्छा होती है कि स्वस्थ हो जाए, वो स्वस्थ होना। और अब आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में अगला गीत।

दोस्तों, संगीत का सफर जारी है और साथ ही जारी है स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता। एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक सच्चाई ये है कि तंबाकू से होने वाली कई बीमारियां रोकी जा सकती हैं यदि समय रहते इसे छोड़ दिया जाए। इसलिए अपने जीवन में अच्छी आदतों को जगह दीजिए। योग, व्यायाम, खेल और सकारात्मक सोच, यही आदतें आपको स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखेंगी। सिगरेट का धुआं कुछ पल का होता है लेकिन उसका असर वर्षों तक रह सकता है। इसलिए जिंदगी को चुनिए, स्वास्थ्य को अपनाइए और तंबाकू को हमेशा के लिए अलविदा कहिए। और अब आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दोस्तों अगर एक भी व्यक्ति तंबाकू छोड़ने का संकल्प लेता है आज, तो हमारा यह प्रयास सफल माना जाएगा। तंबाकू कभी किसी समस्या का समाधान नहीं बनता, बल्कि नई समस्याओं को जन्म देता है। जीवन हमें एक बार मिलता है और इसे स्वस्थ, खुशहाल और सकारात्मक बनाना हमारे अपने हाथों में है। अपनी मुस्कान, अपने सपनों और अपने परिवार के लिए स्वस्थ रहिए, क्योंकि जिंदगी की असली खुशबू खुलकर जीने में है, किसी नशे में नहीं। इसी के साथ अब मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त शिवानी वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर कार्यक्रम नई उड़ान सुनने वाले अपने सभी साथियों का आपकी रेडियो दोस्त पारुल स्वागत और अभिनंदन करती है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवार और हमारे भविष्य से जुड़ा है। आज 31 मई है, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये पुकार है उन करोड़ों लोगों के लिए जो अनजाने में धुएं के गुबार और नशीले पाउच में अपनी जिंदगी के को कैद कर चुके हैं। आज का ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है ताकि लोग तंबाकू के खतरों को समझें और उससे दूर रहें। साथियों, तंबाकू का इस्तेमाल सदियों से होता आया है। पहले लोग इसे औषधि समझकर प्रयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आदत और लत में बदल गई। सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, चबाने वाला तंबाकू, इन सब ने समाज में गहरी पैठ बना ली। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल सिगरेट या बीड़ी पीना ही खतरनाक है, लेकिन सच तो यह है कि तंबाकू किसी भी रूप में हो वो जहर ही है। साथियों, तंबाकू दो तरीके से इस्तेमाल की जाती है। एक तरीका है धूम्रपान का, जैसे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का और आजकल का ट्रेंडी ई सिगरेट, और दूसरा तरीका है धुआं रहित तंबाकू, जैसे खैनी, गुटका, जर्दा, पान मसाला और नस्य। दोस्तों, चौंकाने वाला तथ्य यह है कि एक सिगरेट में 4000 से ज्यादा रासायनिक तत्व होते हैं, जिनमें से कम 70 तत्व सीधे तौर पर कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। निकोटीन के अलावा इसमें आर्सेनिक, जो कि चूहे मारने का जहर है, और कार्बन मोनोक्साइड जैसी गैसें भी होती हैं। और ऐसे जानलेवा तथ्य से हम सभी अनभिज्ञ होते हुए हर एक सिगरेट के साथ अपनी जिंदगी के 5 मिनट कम करते जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप खुद सिगरेट नहीं पीते, लेकिन किसी पीने वाले के पास खड़े हैं, तो भी आप खतरे में हैं? इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। जब एक पिता अपने बच्चे के सामने सिगरेट पीता है, तो वो बच्चा न चाहते हुए भी जहरीला धुआं अपने अंदर ले रहा होता है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। तंबाकू का सेवन शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है। धूम्रपान करने से फेफड़ों का कैंसर और COPD होने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। धूम्रपान करने वालों के फेफड़े धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं और सांस लेने की क्षमता खत्म होती जाती है। गुटखा और खैनी चबाने वालों में मुंह और गले का कैंसर सबसे आम है। साथियों, भारत में मुंह के कैंसर के सबसे ज्यादा मामले तंबाकू के कारण ही होते हैं। तंबाकू के सेवन से हृदय रोग जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। तंबाकू रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तंबाकू के सेवन से पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे कि गर्भ धारण करने में समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में यह दिन शुरू किया था। इसका मकसद है लोगों को जागरूक करना, सरकारों को नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करना और युवाओं को तंबाकू से दूर रखना। हर साल इसकी एक थीम होती है, जैसे तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य, युवा और तंबाकू, पर्यावरण पर असर आदि। इस साल 2026 के लिए विषय है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। साथियों, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, ये भारत की संसद द्वारा 2003 में पारित किया गया एक प्रमुख तंबाकू नियंत्रण कानून है। इस कानून के प्रमुख उद्देश्य हैं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक लगाना, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित करना, शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचने पर रोक लगाना, तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर स्वास्थ्य संबंधी स्पष्ट चेतावनी और चित्र छापना अनिवार्य करना। दोस्तों, कानून सिर्फ दंड देने के लिए नहीं, बल्कि हमें सुरक्षा देने के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान होते देखें या स्कूल के पास तंबाकू बिकते देखें, तो इसकी शिकायत पुलिस या संबंधित अधिकारी से जरूर करें। याद रखें, आपकी एक

जागरूकता किसी की जान बचा सकती है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपनी जिंदगी को बिना धुएं में उड़ाए व्यतीत करें।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत, उसी तरह युवा पीढ़ी और बच्चे भी अपने बड़ों को अगर कुछ अच्छा सिखाते हैं तो बड़ों को उसे सहज स्वीकार करके सीखना चाहिए। हमारे गांव की जो परंपराएं थीं, जो पुरानी परंपराएं थीं साथियों, उसने हमेशा से हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाया, बताया कि हम वहाँ रहकर भी, गांव में रहकर भी ऐसे कुछ काम कर सकते हैं जिससे हम आजीविका अपनी कमा सकते हैं। लेकिन हमने शुरुआती दौर में ये सीखा कि हमें शहर पलायन करना है और हम तभी कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे हम अपना जीवन यापन कर पाएं। तो इन्हीं विषय पे, इस विषय पे कि ग्रामीण परंपराओं में कैसे

आत्मनिर्भरता छिपी है। हमारी साथी एंकर रीना श्रीवास्तव ने कुछ लोगों से की बातचीत, तो आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है कि परंपराएं कैसे सिखाती हमें आत्मनिर्भरता।

0: साथियों, आत्मनिर्भर होने के लिए हर कोई शहर की ओर भागे ये जरूरी नहीं है। ग्रामीण परंपराओं में भी आत्मनिर्भरता छुपी होती है। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी इच्छा शक्ति कहाँ तक जाती है। तो आज आपको मिलवा रहे हैं उन लोगों से जो गांव में रहकर ही बहुत बढ़िया तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं।
1: आपका नाम बताइए।
2: हमारा नाम मैम कुलदीप तिवारी है। हमारा गांव नरहरपुर तहसील सखीपुर जिला उन्नाव है।
1: अच्छा, गांव में जो आजीविका लोगों की है वो कैसे चलती है?
2: ये मैम, ये कुछ लोग तो अपने पारंपरिक पेशे में लगे हैं, जैसे बढ़ई वाला व्यवसाय है, कारपेंटर, और तालाब सिंघाड़ा डालने का काम है वो करते हैं, और डेयरी व्यवसाय यानी दूध वाला व्यवसाय हमारे यहाँ ज्यादा है।
1: हाँ। तो आपके गांव में क्या बाग वगैरह भी हैं?
2: हाँ हाँ, बाग भी हैं और तालाब।
1: अच्छा, किस चीज के बाग हैं आपके गांव में?
2: आम के बाग हैं, बहुतायत में तो आम के ही बाग।
1: आम तो बिक भी जाता है, उसके अलावा और भी उससे कोई दूसरे उत्पाद बनाए जाते हैं आपके गांव में, जैसे अचार है या गलका है या इस तरह की चीजें भी बनाई जाती हैं?
2: ऐसा है मैम, हमारे गांव में ज्यादातर आम की ही फसल है, वो बेच दी जाती है, और जो गलका वगैरह, रामकेला एक है वैरायटी प्रजाति जो अचार रखने के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है।
1: हाँ।
2: तो वो भी एक आध लोग रखे हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ सीधा आम का ही व्यवसाय होता है, और
1: अच्छा।
2: आम बेच, हाँ, बेच लिया जाता है पूरा बाग, दो दो किलो के हिसाब के लिए ले लेते हैं खरीदार। इससे ये होता है कि लाखों की आमदनी, यानी अगर दो साल के लिए बाग बिका है तो 4 लाख रुपए लगभग एक बीघे में वो लोग अपना फायदा करते हैं, और
1: अच्छा।
2: बहुत खुशहाल जीवन है। हमारे यहाँ ज्यादातर ये आम के ही कलमी दशहरी ये पेड़ है, और इस तरह का
1: अच्छा
2: व्यवसाय है।
1: आपका नाम बताइए।
3: किरण तिवारी।
1: अच्छा, गांव में किस तरह का काम करती हैं?
3: गांव में यही कंडा अंडा पाप से यही अपना खर्चा चलाते हैं।
1: आपके घर में पशु भी पले होंगे जिनसे गोबर मिलता होगा?
3: हाँ हाँ जी।
1: लगभग कितने पशु हैं आपके पास?
3: अरे 2 हैं।
1: अच्छा, गाय पाली आपने की भैंस?
3: नहीं, गाय भैंस दोनों।
1: तो लगभग कितना दूध मिलता होगा आपको पशुओं से, मतलब जो गाय आपने पाली?
3: हाँ, 10-12 लीटर हो जाता।
1: तो ये बेच देती हैं आप, और फिर जो जो कंडे आप पाती हैं उसका क्या करती हैं?
3: वो भी बेच देते हैं और अपने घर के लिए रख लेते हैं थोड़े बहुत।
1: तो कितने कंडे मतलब आप बना लेती हैं और कितना बेच जाता है?
3: बछिया लगा ले।
1: तो ये कंडे आपसे खरीदता कौन है?
3: अरे बहुत लोग नहीं पाते, जिसके यहाँ पाते जाते खरीद लेते हैं।
1: अच्छा,
3: उम्हार उम्हार खरीद लेते हैं।
1: क्या नाम आपका?
4: शिवमाल शर्मा। हम कारपेंटर हैं।
1: आप क्या क्या बनाते हैं?
4: हर चीज बनाते हैं, पल्ला है, बेड है, दरवाजा है, खिड़की है।
1: अच्छा,
4: काम का ये
1: जो काम आप करते हैं उससे हाँ, आपका घर परिवार सही से चल जाता है?
4: बिल्कुल चलते हैं।
1: अच्छा, तो कहाँ कहाँ बेचते हैं आप अपना सामान?
4: हम बेचे कहना है, बेचे थे हम बस दुआ रहे हैं पद।
0: गाँवों में परंपरा मेले की भी है।
1: सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के बेहटा विकास खंड के लहरपुर तहसील के सोमसुरी गांव के मेला प्रबंधन से जुड़े हुए करुणा शंकर जी हमारे साथ में हैं। ये बताइए, आप मेला समिति से कितने सालों से जुड़े हुए हैं?
5: हाँ, लगभग 35 साल हो गए हैं कार्य करते हुए। 35 से।
1: तो आपके यहाँ जो गांव में मेला लगता है, साल में एक बार लगता है, तो किस तरह की दुकानें लोग लगाते हैं?
5: दुकानें जैसे खाए में यहाँ मीठा, चाट, पकौड़ी, लैया, मूंगफली, और वो जो झूला आवत है, जो जूतन के झूला होते हैं वो झूला आवत है, और ये की जो है कॉस्मेटिक की दुकानें होती हैं, बर्तन की दुकानें होती हैं, हर माल की दुकानें होती हैं, विषाद खाने की दुकानें लगती हैं।
1: ये जो दुकानदार हर साल आते हैं, वही दुकानदार हर साल अपनी जगह सुनिश्चित करते हैं, आर्थिक रूप से फायदा होता होगा तभी तो ये लोग आते होंगे?
5: तभी तो आते हैं भाई, अगर फायदा नहीं होता तो फिर वो क्या करने आएंगे?
1: लकड़ी के सामान ये भी मिलते हैं?
5: हाँ, लकड़ी का है, चौकी बेलन है,
1: साग सब्जी भाजी से लेके सब कुछ मिलता है मेले में। भैया नाम बताइए अपना।
6: हमारा गुडान नाम है।
1: गुडान जी, काहे की दुकान?

0: लगाते हैं आप?
1: हम मिठाई आए जलेबी समोसा नमकीन चीनी सेव लैया चना प्रसाद यहाँ सब दुकान लगाई थे।
0: अच्छा अच्छा, तो ये बताइए मेले वेले में भी आप अपनी दुकान लगाते हैं?
1: हाँ मेले में दुकान हमारे लगा, बहुत तो... पुरान दुकान लगा, 30 साल हुई है लगन लगन। हमारे पिताजी जाते रहे, अब पिताजी बूढ़े हुए हैं बहुत, तो हमें दुकान लगी है, अब गाँव पूरा हमका मानते हैं।
0: मेले में जब आप दुकान लगाते हैं आपको अच्छी आमदनी हो जाती होगी वहाँ से?
1: हाँ मिल जाते हैं 5-6-7-8 हजार रुपया बस।
0: अपने गांव के मेले में ही दुकान लगाते हैं या अलग अलग मेलों में भी आप दुकान लगाते हैं?
1: जहाँ मेला हो तहाँ लगे दुकान।
2: गाँवों में तो मेले लगते ही हैं, वहाँ पर दुकानें सजती ही हैं, लेकिन गाँव की जो परंपरागत चीजें हैं उनकी डिमांड गाँव के बाहर शहरों में लगने वाले मेलों में भी है।
0: सर अपना नाम बताइए।
3: सुनील कुमार खरादी।
0: आपका किस तरह का काम है?
3: लकड़ी के खिलौने का है।
0: तो कितने साल से काम कर रहे हैं आप ये?
3: 2003 से कर रहा हूँ मैडम।
0: जो आपका काम कारोबार है वो अब कैसा चल रहा है और पहले कैसा चलता था?
3: पहले थोड़ा कम था, अभी थोड़ा ठीक हो गया है। पीएमजीटी प्रधानमंत्री के अंतर्गत हमको लोन फाइनेंस हुआ था और उसी के आधार पे हमको इसको कारोबार को बढ़ाया था। एमएसएमई के द्वारा भी हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें भी जाते हैं, और जो आपके आर्टिजन हैंडीक्राफ्ट के द्वारा भी कार्ड बना हुआ है उसके थ्रू भी जाते हैं।
0: तो आप पूरे देश में स्टॉल लगाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं?
3: हाँ ये हमारा जहाँ भी प्रोग्राम है ऑफिस की तरफ से जब लेटर आता है जब भी हम जाते हैं। बेनिफिट ये है कि गांव में माल कम बिकता है, बाहर सिटियों में माल ज्यादा बिक जाता है।
0: कोई सब्सिडी भी मिली क्या?
3: हमको 1,63,000 फाइनेंस हुआ था
0: जी,
3: उसमें हमको 57,000 सब्सिडी मिली थी।
4: मेरा नाम राकेश शुक्ला है
0: जी।
4: मैं लकड़ी के कंघी और लकड़ी के खिलौने बनाने का कार्य करता हूँ।
0: तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया और आपने इस बारे में क्या कैसे विचार आया आपके मन में?
4: देखिए मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हो गए थे और मैं इस थोड़ी प्राकृतिक फील्ड से आदमी हूँ तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी, तो बाल झड़ना रुकेंगे कैसे, तो मुझे विचार आया कि कंघी में कुछ हो सकता है, तो वहीं से लकड़ी की कंघी बनाने का विचार आया। जब मैंने बहुत सारा अध्ययन किया तो मैंने बोला कि पहले तो हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी के कंघी बनाने वाले थे ही, विलुप्त कैसे हो गए, तो उन्हीं को मैंने पुनर्जीवित कर दिया कि लकड़ी बनाने वालों को ही मैंने लकड़ी से की कंघी बनवाने लगा और उसका व्यापार करने लगा।
0: सेल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है?
4: पहले मैं पिछले 8 साल से ही लकड़ी की कंघी में काम कर रहा हूँ, पर पहले जो पीछे से एकदम ढलान पे आ गया था जो लोग काम करते थे या जिन लोगों से मैंने रिसर्च R&D की, और अब तो धीरे धीरे धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही कि आदमी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करे, तो लकड़ी की कंघी बनाने का और खिलौने बनाने का क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और सरकार भी इसमें सहयोग करती है, जो प्रमोटिंग कार्यक्रम चलाती है तो उसके माध्यम से ही बहुत सारे काम होते हैं।
0: अच्छा एक चीज लोग कहते हैं कि जैसे लकड़ी की कंघियां हैं वो काफी महंगी होती हैं और लकड़ी के खिलौने भी आम जैसे प्लास्टिक के खिलौने हैं उनके तुलना में थोड़ा दाम उनके ज्यादा होते हैं, तो लोग खरीदते हैं आपके पास से?
4: देखिए हम अगर कोई लोग बोलते हैं कि कीमत ज्यादा है तो आपके शरीर की कितनी कीमत है, हमारा भी शरीर तो पंच तत्वों से बना है और हम तो लकड़ी मिट्टी पत्थर यही क्राफ्ट के माध्यम है, चाहे मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, लकड़ी से लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाया जाता है, तो लकड़ी का समाज में और मनुष्य के जीवन में बहुआयामी उपयोग है मिट्टी बर्तन पत्थर का। अगर उसमें मेहनत लगेगी और उस व्यक्ति की मजदूरी नहीं निकलेगी तो फिर वो काम क्यों करे? जो प्राकृतिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नहीं रखते तो अपना काम चला रहे हैं। यही है जीवन में, हर आप किसी भी चीज में 100% पास नहीं होते या 100% कोई काम सक्सेस नहीं किया जा सकता है, कुछ ना कुछ तत्व तो उसमें रहते ही है कि आपको 100% नहीं 40% अगर इसमें 10-20% लोग भी लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे तो बहुत बड़ा रोजगार का साधन हो सकता है।
2: प्रकृति और गांव एक दूसरे से अलग नहीं है, जहां गांव है वहां प्रकृति भी है और जहां प्रकृति है वहां बाग भी हैं। अब गांवों में जो बाग लगाने की परंपरा है उससे भी आत्मनिर्भरता आती है।
5: हमारे गांव में ज्यादातर आम की फसल है वो बेच दी जाती है और जो गलता वगैरह रामकेला एक है वैरायटी प्रजाति जो अचार रखने के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है,
0: हाँ।
5: तो वो भी एक आध लोग रखते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ सीधा आम का ही व्यवसाय होता है और
0: अच्छा।
5: आम बेच हाँ बेच लिया जाता है पूरा बाग, दो दो टीम की हिसाब के लिए ले लेते हैं खरीदार, तो इससे ये होता है कि

0: लाखों की आमदनी, यानी अगर 2 साल के लिए बाग जुटा है तो 4 लाख रुपए लगभग 1 बीघे में वो लोग अपना फायदा करते हैं और बहुत खुशहाल जीवन है। हमारे यहाँ ज्यादातर ये आम के ही कलमी दशहरी ये पेड़ हैं और इसका व्यवसाय है। फसलों का व्यापार जैसे मान लिया बढ़िया भैंस ले आए पंजाब से, वो जो दूध देती है वो 40-40, 50-50 लीटर दूध देती है, तो वो हमारे यहाँ का दूध जो होता है वो दूसरे डेयरी उत्पाद नहीं बेचते हैं, दूध का दूध भी बिक जाता है। और फिर वो जो लोग दूध खरीदते हैं उनसे पनीर है, खोया है, जो दूसरे प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं जो यहाँ से दूध खरीद के ले जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो मतलब कि दुग्ध उत्पादन से अच्छी आमदनी होती है।
0: हाँ, दूध से बहुत आमदनी है, बहुत खुशहाल भी है। और समझो ये आप समझ लें कि वो अपने लड़के बच्चों के जो ब्याह काज है ना, शादी विवाह, वो इसी आमदनी के आधार पर करते हैं। और उनकी जो बिल्डिंगे हैं, उनके जो भवन है, वो सब पक्के इसी के ऊपर खड़े हैं। 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी उनके यहाँ है।
2: तो अगर हम देखना चाहें तो हमें जरूर दिखाई देगा कि ग्रामीण परंपराओं में आत्मनिर्भरता किस तरह से छुपी हुई है और कैसे हम गांव में रहकर एक अच्छी जीवन शैली अपना सकते हैं, प्रकृति के नज़दीक रह सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं और एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। अपने रेडियो से की रीना को अब दीजिए इजाज़त। हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का कार्यक्रम। नमस्कार। तो साथियों, रीना जी की जो बातचीत थी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के साथ, उससे हमें ये पता चला कि ऐसे लोगों ने स्वरोजगार करके अपनी मेहनत के बल पे बिना शहरों की तरफ पलायन किए हुए और बिना किसी और की नौकरी करते हुए अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो स्वरोजगार पे हमें भी ध्यान देना चाहिए, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं। और ये थी गांव की बात, तो आइए अब कर लेते हैं कुछ विकास समाचार की बातें, जिससे हमें हमारे प्रदेश और देश में क्या विकास हो रहा है उसका ज्ञान होगा। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के मामले में देश का सबसे अग्रणी राज्य बन चुका है। राज्य में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए सरकार ने नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई है, जिन पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और सरकार द्वारा जिन प्रमुख नए एक्सप्रेसवे और लिंक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देकर प्रक्रिया शुरू की गई है, उनमें है विंध्य एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे लगभग 320 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित है। ये धार्मिक और औद्योगिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रूट होगा, जो प्रयागराज से शुरू होकर मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। भविष्य में इसे छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमाओं से भी जोड़ने की योजना है। और साथियों, दूसरा है विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। ये कनेक्टर एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर होगी। ये चंदौली से शुरू होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु यानी गाजीपुर तक जुड़ेगा। इसके निर्माण से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लोग सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ या दिल्ली NCR तक का बेहद कम समय में सफर तय कर सकेंगे। इन्हीं के साथ हैं चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ेगा। इसके लिए भी सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 31 मई 2026 यानी आज तक भूमि अधिग्रहण और शुरुआती कागजी प्रक्रियाओं को कम से कम 90% तक पूरा कर लिया जाए, ताकि सिविल कंस्ट्रक्शन में देरी ना हो। इन कुछ नए प्रोजेक्ट्स और कुछ नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के धरातल पर उतरने के बाद उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की कुल संख्या 22 तक पहुंच जाएगी दोस्तों, जो राज्य के औद्योगिक विकास और रोजगार के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। और इसी के साथ आपके साथ साझा करती हूं कुछ रोजगार समाचार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के अंतर्गत निकाली गई एक बेहद महत्वपूर्ण भर्ती है, यूपी कृषि तकनीकी सहायक की। इस भर्ती के 2760 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में ग्रेजुएशन की डिग्री

या इसके समकक्ष डिग्री जैसे बीएससी हॉर्टिकल्चरल, फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आदि कुछ होना चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा यूपी टीजीटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के तहत विभिन्न प्रशासनिक पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इसके साथ ही अन्य राज्य स्तरीय विभागों को मिलाकर कुल लगभग 20,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द आवेदन कर सकते हैं। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में नौकरी करने का बेहतरीन मौका है, जहां विभिन्न श्रेणियों के कुल लगभग 1200 पदों के लिए भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो साथियों, ये कुछ रोजगार समाचार थे, जिससे कि आप अगर अर्हता पूरी करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस हमें करना ये है कि मिल के साथ चलना है और आगे बढ़ते रहना है।

साथियों, आज के कार्यक्रम से आपकी रेडियो दोस्त पारुल लेती है इजाजत। फिर इसी कार्यक्रम के किसी और अंक में मिलूंगी और करूंगी आपसे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 6:20 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाण्याः मन् की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिलसमुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिकशक्तिं दक्षिणपूर्व एशियादेशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतप्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्यरिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञानभारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़राज्यस्य मल्हारक्षेत्रे षष्ठसप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्मऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन् की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्तमात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद् रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात् रक्षण प्राप्तुम् आमपन्नम्, तक्रम, सत्तुपेयम्, बेलपन्नम्, पानकम्, नीरमोर, सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनं हितकरम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभवः निहितः अस्ति।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिताः राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीड़ा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्यां प्रतियोगितायां प्रायः अष्टशताधिक क्रीडकाः भागं गृहीतवन्तः। श्रीमोदी गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ शत मीटर मितायां धावन प्रतियोगितायां विजेतृभ्यां गुरिन्दर वीर सिंहः तथा अनिमेष कुजूर चेत्येताभ्यां सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशस्य प्रत्येकं जनेषु जिज्ञासां जनयति। तेनोक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशे शीघ्रं लोकप्रियं भवति। श्रीमोदी युवानः खगोलशास्त्रसमूहे सम्मिलितुं तथा अवकाशकालावधौ तारामण्डलं द्रष्टुं प्रेरितवान्। प्रधानमन्त्री उत्तरप्रदेशस्य एकस्मिन् कुल्यां गंगा डॉल्फिन प्राणिनः रक्षणसम्बद्धस्य लघुचलच्चित्रस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। तेनोक्तं यत् नमामि गंगे अभियानस्य अन्तर्गतं निर्मिता भारतस्य प्रथमा गंगा डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेन्स अस्मिन् कार्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। श्रीमोदी अवदत् यत् गंगा डॉल्फिन संरक्षणेन नद्याः जैव विविधतायाः तथा अमूल्यायाः प्राकृतिक धरोहरायाः संरक्षणमपि भवति।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: नूतनः सीडीएस इति प्रमुखः रक्षाध्यक्षः लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणिः अद्य उक्तवान् चिंतने कर्मणि च नवोन्मेषः सैन्य सामर्थ्यानां विकासं त्वरितं करिष्यति। देशस्य नूतनस्य प्रमुख रक्षाध्यक्षस्य पदं स्वीकृत्य वार्ताहरैः सह संवादे जनरल सुब्रमणिः अवदत् यत् सशस्त्रबलानि राष्ट्रहितसंरक्षणे निरन्तरं व्यावसायिकं कार्यसञ्चालनसम्बद्धं निर्णायकं च प्रदर्शनं विहितवन्तः। ते भारतस्य सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च रक्षणाय दृढसङ्कल्पाः सन्ति। अद्य प्रातः नवदिल्लीस्थे साउथ ब्लॉक

0: जय हिंद। हिमांशु भैया।
1: हाँ ओम भैया।
0: देखो ऐस सवेरे तेरे घाम होती है कि पसीना भल भल निकलती है और जैसे अपने बैठके में यहाँ पहुंचे तो ऐस बादल उठाया करिया करिया और झमक यहाँ बरसे लग।
1: बिल्कुल भैया, मौसम तो ऐस बदल रहा है बिल्कुल अचानक से। देखो घाम तगड़ा रहा था, थोड़ी देर बाद में यहाँ मौसम बन गवा और जो है पानी बरसे लाग बदरी हुई के, तो मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है भैया।
0: बिल्कुल भैया, देखो मौसम बदल रहा है और बदलाव ब्याज चारों तना यानी चारों तरफ बह रही है और यही कड़ी में देखो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम जो है वह बड़ा कारगर है।
1: हाँ भैया बिल्कुल भाई, को नहीं चाहा था कि अपने गांव राम में ही रह के जो है नौकरी कीन जाए, गांव राम रह के रोजगार कीन जाए, रुपया पैसा कमावा जाए, परिवार के साथ में रह के ही अपने परिवार के भरण पोषण कीन जाए।
0: अब मने ही कहा कर रहे देखो पहले जैसे अब जब काम या खेती के अपने खत्म हो जाते रहे तो कहा कर रहे चला जाते रहे बहरे
1: बिल्कुल
0: परदेश है कि भैया कमाए ले, फिर जब अपन खेती पाती काम हो तो जो रुपया कमा कमू के यहाँ लेबे वो अपनी खेती पाती में अपने काम धंधा में लगा
1: दे। जो कमाए होता है वह खेती में लगा होता है, खेती से लेके फिर बाहर चला जाता है।
0: बाहर भैया इतना खर्चा रहते हैं, खावे खाए भैया कमरा खर्चा और सब दुनियादारी खर्चा होते हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन देखो अब जो जो जी राम जी अधिनियम आवा है यही के तहत भैया 125 दिन के रोजगार की गारंटी।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखो ये जो जो जी राम जी जो अधिनियम है या पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता है।

0: तो अब यहीमा पहले जो है 100 दिन के रोजी पक्की रहत रही, अब यहीमा जो है आगे बढ़ा दी से सरकार
1: 125 दिन का भैया रोजगार हो गया। और वही के साथ साथ देखो कबो कबो होत कर रहा है कि रुपया जैका मिले चाहिए वही का मिलते नहीं रहे पता लग बीच में यहाँ खाएगा कौन है। लेकिन अब देखो ये सब अधिनियम तेरे आवे तेरे का हुआ है कि अब भैया सीधा अंगूठा लागी जैका कहते हैं बायोमेट्रिक
0: सीधा जो पैसा है मजदूरी है वह सुनिश्चित हुए कि सीधा जो मजदूर है जो रजिस्टर्ड है पंजीकृत है उन्हीं के खाते पे जाए
1: सीधा खाता मैया। तो भैया देखो इमा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेख है जगह अपन नाई वहीं आवेदन भरा है वो आवेदन कराए लेख है अपने नजदीकी जाओ वहाँ जो जनसेवा केंद्र हो थे वहाँ जाए भैया पता कर लो
0: अपने ब्लॉक पे जाए के पता के
1: और गाँव जो प्रधान है उनसे मिल रहा हो भैया तो वही बता दे कि कैसे का हो थे।
0: बिल्कुल भैया
1: और देखो भैया आज है इतवार
0: इतवार का हम सफे लेके आए थे लोक भाषा कवि गोष्ठी।
1: तो आज लोक भाषा कवि गोष्ठी भैया लेके आया है नौजवान प्रतिभागी कवि हैं अपन वे हैं सुखदेव प्रसाद छैल भैया राम दुलारे सिंह सुजान भैया और रवि प्रकाश अवस्थी भैया जो इन कवि गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं। तो आओ सुना जाए आनंद लीन जाए और पंचो भाई सुने आनंद लें।
0: बिल्कुल
2: पंचो आज के लोक भाषा कवि गोष्ठी में यहाँ जौन कवि लोग हमारे बीच में पधारे हैं उमा रानी खेड़ा राजा मोह बछरामा रायबरेली से ने हमारे बिच्चा में यहाँ डॉक्टर सुखदेव प्रसाद छैल जी पधारे हैं साथे में यहाँ जरई कला सुल्तानपुर से पधारे कवि राम दुलारे सिंह सुजान दादा हैं साथे में यहाँ हम महादेवा लुधौरा रामनगर से रवि प्रकाश अवस्थी आप लोगों के बिच्चा में यहाँ कविता पाठ करे लिए उपस्थित हैं। इस क्रम में हम निवेदन करित है सबसे पहले आदरणीय सुखदेव प्रसाद छैल दादा से ने कि आज की गोष्ठी में उपस्थित हैं और हम चाहे थे कि अपन काव्य पाठ करें दो ही पंक्तियां पढ़कर उनका हम स्वागत करें थे आज के इस कार्यक्रम में कि हैं पुनीत उत्कृष्ट सुनी मिटे हृदय का मैल कविताई माँ श्रेष्ठ हैं कवि महान श्री छैल। आदरणीय छैल दादा अनुरोध अपन काव्य पाठ की जाए
3: भैया सुनाए और आनंद लिए। अरे भैया चलो चली गुआ की ओर मचल मचल मचल मन मोर ए भैया तई चला चली गुआ की ओर हरे भरे जहाँ बाग बगीचा मनु आलू भावई हरे भरे जहाँ बाग बगीचा मनु आलू भावई मस्ती मई हाँ झूम झूम सिरनी में हिलावई बिरछा नीचे बैठ बुढ़ेवा आमिया रखावई आपस मई हाँ लड़का कोयली अमिया गिरावई हिल मिल के मिल बाँट के खावई स्वांग रचावई की बिजूरी रे बिजूरी छैल बड़ी सुधरी बिजूरी रे बिजूरी छैल बड़ी सुघरी बोल कहाँ ससुररिया है मोर ए भैया सनई चना मट अरहर दिया घुंघरू बजावई पियर पियर सरसों के फलो आहार लुभावई गेहूं जो बालिन का सुगनाता की रखावई गोफना लेके पर्वतिया जहची रई उड़ावई गोफना लेके पर्वतिया जहची रई उड़ावई गला गला मट कोहरी गला पानी पियत मर जई हो गला गला गला मट कोहरी गला पानी पियत मर जई हो गला जहाँ होत भोरा हर सोर ए भैया तई चला चली गुआ की ओर।
2: बहुत सुंदर
3: खेल देखें ऐसी आंधर भैंसा ख्याल लुकी लुकौना गांव के एक तरफ ऐसी आंधर भैंसा ख्याल लुकी लुकौना और लोट पोट भयो लोट हो रहा यो देखो मुटकौना तो खेल रही रम सिरिया होरी मंदिर के घरौना की चुक चुक चलानी वही घर बढ़ानी चुक चुक चलानी वही घर बढ़ानी आगे बढ़ो चित चोर ए भैया तई चला चली गुआ की ओर।
2: वाह
3: भाई कहा है तुम दीदिया हमारी हम तुम्हारा हूँ भाई और ई देखो लड़कन की बातें पुरखो तक बन जाए कुकरौंधाते पोत के पाटी और घोटी रहे चिकनाए तो का खा गा घा अंगा लिखी अम्मा का रहे दिखाए और बोल बोल माँ भैया रहे जी अमृत रस घोर ए भैया चलो चली
2: गुआन
3: सारे और संजलो के सूरज लाली प्राण कबो अंधेरिया कबो अंजरिया चंदा मामा जान माटी ही जहाँ प्यारी भैया माटी रतन के खान और माटी के सब काम जहाँ पर माटी के भगवान ना प्रदूषण ना खरदूषण ना प्रदूषण ना खरदूषण ना खटमल का जोर ए भैया

0: चली गऊआ की ओर।
1: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर दादा।
0: दूसरा कविता भैया किसानी पर है, देख लीन जाए। एक आदमी का जगावा जा रहा है, वो सो रहा है, खेती करक है तो सुहावक न चाहिए सवेरे। भोरा है मुड़ेरी पे बोली गवा कागा, छैल पिया जा।

0: जागा, खेल पिया जागा।
1: बहुत सुंदर दादा।
0: सोएवा मेथी लोबिया खुरथी करैला, पालक खेखसा मूरी मिर्च सिमला, फिर जेठ के गर्मी, फिर जेठ के गर्मी, यो डोड़ा खीरा बुझागा, खेल पिया जागा हो, नींद ते जागा, खरबूज तरबूज भरी गए मिठाई, उठो खाओ तन मन तपन बुझाई, फिर छाड़ी झमेला मन खेती मलागा,
1: दादा
0: खेल पिया जागा, परवर भिंडी अ फूल घगाने, तितली भंवर रस पी पी अघाने, फिर टूटे न नाता नेह का धागा, खेल पिया जागा, सागु खाओ ब्याचो चले घर खरचा, सागु खाओ ब्याचो चले घर खरचा, गरुआई बैंक गांव गली चरचा, फिर देखी पसीनवा, अरे फिर देखी पसीनवा, दलील दुर्भागा, हो रहे मुड़ेली पे बोली कवकागा,
1: खेल पिया सुंदर। ई रहे दादा सुखदेव प्रसाद छैल जी, ईरानी खेड़ा राजा मो बछरा मजाए, हमरे बिचम काफी पाठ कीहीन। और यही क्रम में दादा राम दुलारी सिंह सुजान जी, जो कि अवधी भाषा के बहुत ही शानदार रचनाकार हैं, दुई पंक्तियां देकर दादा का आमंत्रित करते एक दोहक माध्यम से। कविता कह रस माधुरी सबय करो व पान, कविता कह रस माधुरी सबय करो व पान, आए गए कविता पढ़े कविवर श्रेष्ठ सुजान। दादा सुजान दादा पढ़ा जाए।
2: भैया जेठ मास के ए तपन से जड़ चेतन बेहाल है, यहाँ का देख के हम कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर लिखा है, जौने महा की खेती किसानी तक जौन कुछ बोआ जोता है वो झुरा रहा है, तो वह के लिए हम आकाश देवता से प्रार्थना की है
1: कि
2: जेठ मासा के तपनी हमका किस बेहाल, लख दुपहरिया जेठ के सूखी गए सब ताल, तो सूखी गए सब ताल, सांस हमरो है फूलती, और तूफाने के टूट डाली अब यूं है झूलती, और कहत है मित्र सुजान तजौना मन के आशा, बरखा रानी काले आए ई जठ मासा।
1: बहुत सुंदर है दादा, बहुत सुंदर कुंडलियां हुई।
2: भैया गीत सुने,
1: स्वागत दादा।
2: अरे रे गगनवा।

ना भैया ठंडी ठंडी पवन चलो त्यो ना। तो अरुई झुरात बाय उर्द सुखा थे गिराय के फुहरिया भिगौ त्यो ना। और धरती के अंगन तू आओ लेके कंगना, धरती के अंगन तू आओ लेके कंगना, मिलाई के नयनवा जलौ त्यो ना। तो धनवा के खेतवा के हुआ थे तैयारिया, धनवा के खेतवा के हुआ थे तैयारिया, चलाय के बैरिया जगौ त्यो ना। और खीरवा के बिरवा लगत जैसे हिरवा, खीरवा के बिरवा लगत जैसे हिरवा, देखाय के तपनिया जलौ त्यो ना, देखाय के तपनिया जलौ त्यो ना। तो सांझ हो सवेरे माही चलत झकोरे, कब्बो भरी दुपहरिया देखौ त्यो ना, कब्बो भरी दुपहरिया देखौ त्यो ना। कि धनवा की बेरनी मची रही चुनतिया, धनवा की बेरनी मची नई

0: नतिया है
1: बहुत
0: उनहु
1: बढ़िया,
0: का आई समझौ त्यो नाम।
1: बहुत
0: तो
1: सुंदर।
0: खेतिया किसनिया बहुत निक ला गई, नई बात आई के बताऊ त्यो ना भैया, नई बात आई के बताऊ त्यो ना। रजनी के तनवा पे तारा के गहनवा, देखाय के चंदर मर जाओ त्यो ना, देखाय के चंदर मर जाओ त्यो ना। तो अगिन किरण बरसाए रहे सूरजू, उनहु के तनी तू बताऊ त्यो ना। भूई धिक होए गए अगिन सम देखो,
1: बहुत बढ़िया।
0: तो भूया धिक होए गए अगिन सम देखो, धरती का और अब जलौते हो ना भैया, धरती का और अब जलौते हो ना। तो छाई अंधी अरिया देखाय न जोरिया, नयन वम ज्योतिया जलौते हो ना। छाई अंधी अरिया देखाय न अंजोरिया, नयन वम ज्योतिया जगौते हो ना। धरती गगनवा के बीच में सुजनवा, अरे भैया गले से लगौते हो ना, अरे भैया गले से लगौते हो ना,
1: अरे भैया गले से लगौते हो ना।
0: हाँ भैया, कुछ पंक्तियां और देखा जाए। साफ सफाई घरे द्वारे तन मन के उजियारा है, और कूड़ा करकट पड़ा रहा है तो अंधकार उकारा है।
1: सही बात है।
0: और बीमारी के घर है भैया, गंदेपन से दूर रहो। बीमारी के घर है भैया, गंदेपन से दूर रहो। देश स्वच्छ आपन राखो, ई जड़ चेतन का प्यारा
1: बहुत
0: है।
1: सुंदर, बहुत सुंदर संदेश है।
0: चेतन का प्यारा
1: हाँ, बहुत बढ़िया।
0: तो स्वच्छता के जलाऊ मसाल, खुशी के गीत गाए चलो ना। स्वच्छता के जलाऊ मसाल, खुशी के गीत गाए चलो ना। अपन देशवा बहुत है विशाल, खुशी के गीत गाए चलो ना।
1: बहुत सुंदर है।
0: गंदगी रहे से मलिन रहे मनवा, हसीना रहे शुद्ध रही है न तनवा। तो स्वच्छता के लगाऊ गुलाल, स्वच्छता के लगाऊ गुलाल, खुशी के गीत गाए चलो ना।
1: बहुत बहुत सुंदर काव्यपाठ दादा का रहा। ये दादा राम दुलारे सिंह सुजान रहे। बहुत सुंदर संदेश परक। देखो स्वच्छता पे यहाँ कितनी बढ़िया बात दादा कहीं। अब आप लोगों के बीचा में हम उपस्थित हन। हमारा नाम रवि प्रकाश अवस्थी है। लोधौरा महादेवा रामनगर बाराबंकी की धरती से ने हम कुछ अपन बात कहा चाहिए थे कि सूरत सुहानी भय गाँव मा निखार आवा, सूरत सुहानी भय गाँव मा निखार आवा, जब ते बयारिया विकास केरी चली गई। कि सूरत सुहानी भय गाँव मा निखार आवा, जब ते बयारिया विकास केरी चली गई। और द्वारे द्वारे बन गए है राह सेरी मिंट वाली, गाँव के किनारे ते सड़क आए ढली गए। तो मिटीगा फरक मानो रात और दिन माहे, मिटीगा फरक मानो रात और दिन माहे, खम्भन पर लाइट उजेरु बदी जली गए। साधन सुलभ भय साहर भवा है फेल, गाँव के री भाई ऐसी रंगत बदली गए। और देखो का भवा कि नाली नाब दान और पुलियो बनी है कयू, नाली नाब दान और पुलियो बनी है कयू, पानी बही जात कुल भरयन तनिको। और हर छुटान सब बंधे हैं गोशाला जाए, खेती हरियान खूब चरयन तनिको। और स्कूल में यहाँ टीचर पढ़ावें रोज, और स्कूल में यहाँ गुरु जी पढ़ावें रोज, लड़िका अपड़ कौनो करयन तनिको। और राशन दुकान हियाँ राशन मिलत मुफ्त, खाए बदे तुम का न फिक्र करे कहे। और सम्मान निधि खाते मा पहुंच जाती, खेती के रे बीमा नाई तनिको डरे का है। तो काम राम जी मा मिली जात और बप्पा केरी, स्कीमो आएगे नहीं कि काम राम जी मा मिली जात और बप्पा केरी, पेंशन मिलत बस फार्म भरे का है। ऊपर ते पोषाहार और यम डीएम है, खानगी है खूब नाई भूखन मरे का है। ऊपर ते पोषाहार और यम डीएम है, खानगी है खूब नाई भूखन मरे का है। और देखा जाए भैया एक चित्र कि साहर के काजू वाली कतली है फेल भाई, साहर के काजू वाली कतली है फेल भाई, गाँव के री राब मैया और कुछ बात है। और घर की मुंगौड़ी और मेथौरी केरी तरकारी, मलिया जमाओ देखी जीव ललचात है। तो सिर का पियाज लोन रोटी केर ऐस स्वाद, सिर का पियाज लोन रोटी केर ऐस स्वाद, छूट जात लार सोच बरन न जात है। और छप्पर के लौकी केरी बरिया सुंधाई, ऐसे चाहे खाय जाओ कुल्ले मनाना आघात है। और एक चित्र देखा जाए तो चलय बयारी मस्त मस्ती मैया, झूमे खेत लागत है स्वर्ग कौनो धरती पधरी गा। और रंगत सुहानी मन भावनी निराली छवि, हाथन

0: सद मानो देव रंग आए भरी गा
1: के
0: रंगत सुहानी मन भावनी निराली छवि हाथन ते मानो देव रंग आए भरी गा। तो फूलो फलो फलिहा वो भैया तुम आशीर्वाद बहुत मिलत है कि फूलो फलो फलिहा वो भैया तुम मोटा वो पूत दादा का आशीष ढार कसी के मिलत है। और धरी दिए मुड़े पहिया झुको पाऊं छुबे बदे झट ते भले ही हाथ अम्मा का हिलत है। तो भौजी हुल साए मूल मुँह का मलिन देखी मन मन जैसे जीव उनका छिलत है। और पहुँचो तो घेर लिए संगी और हेती कुली पहुँचो तो घेर लिए संगी और हेती कुली फूल प्रेम केर गांव घर माँ खिलत है। तो पहुँचो तो घेर लिए संगी और हेती कुली फूल प्रेम केर गांव घर माँ खिलत है। पहुँचो तो घेर लिए संगी और हेती कुली फूल प्रेम केर गांव घर माँ खिलत है। आज की लोक भाषा कवि गोष्ठी में यहाँ हमरे बिच्चा में यहाँ रानी खेड़ा राजा मऊ बछरावा सिने डॉक्टर सुखदेव प्रसाद छैल जी पधारे। जरई कला सुल्तानपुर से राम दुलारे सिंह सुधान जी पधारे। हम लुधौरा महादेवा रामनगर बाराबंकी से रवि प्रकाश वस्ती आप लोगों के बीच में उपस्थित भेन। आज की गोष्ठी आप लोग सुना गवा। ई गोष्ठी आप लोगों का कई लाख ई के बारे में यहाँ चिट्ठी पत्र के माध्यम से ने हम सबका जरूर अवगत करावा जाई।
2: ओम भैया।
3: हाँ हिमांशु भैया,
2: देखो बड़ी नीक कवि गोष्ठी आज सुनने के मिली, लोक भाषा कवि गोष्ठी जो सुनने के मिली।
3: बिल्कुल भैया सही कहा। तो कितनी नीकी तना तेरे अपने गांव का वर्णन है और कैसे कौन योजना मिल रही, कितना एकदम आनंद आएगा
2: और यह कवि गोष्ठी के संचालन करते रहे रवि प्रकाश अवस्थी भैया, यही मां सम्मिलित कवि रहे सुखदेव प्रसाद छैल भैया और राम दुलारे सिंह सुजान भैया। तो यह के खातिर भैया सब पंचन के और सब भैयन के बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद भैया। और भैया अब एक अंतराल के लिए रुका जाए।
2: बिल्कुल।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: हिमांशु भैया।
2: हाँ ओम भैया।
3: देखो ये बहरा जैसे मौसम बदल गया है और इसके अलावा जो गर्मी पड़ रही है, घाम इतनी तेज होते हैं, तो अपन खेती पाती का काम बढ़ जाते हैं।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, जैसे मौसम बदले लागत है तैसे अपने खेती पाती जो है काम बढ़े तो लगता है। एक साथ साथ जो आगामी फसल की तैयारी हो जाते
3: हैं
2: वो आदमी करे शुरू कर दिया थे।
3: बिल्कुल सही कहा था। देखो काहे तेरे जो अपन खेती पाती काम है वो पहले तेरे और समय तेरे कर ले चाहिए। काहे तेरे अगर समय तेरे चूक गयो तो फिर भैया नुकसान तेरे नुकसाने बढ़त चला जाते हैं। तो एक हमारे समय तेरे खेती के अपन काम जरूरी हो जाते हैं।
2: और कहा भी गवा भैया समय चूक पुनिका पछताने, तो यही वजह से समय रहते अपन खेती के तैयारी के लिए जाए, आगामी फसल के तैयारी के लिए जाए, अपने मिट्टी के जाँच करा लीन जाए और जुताई करा दी जाए अगर न कहीं से अभिन। तो
3: देखो भैया जो अपन पंच भाई है नर्सरी डाल चुके हैं।
2: हाँ।
3: बहुत तेजी तरह काम कर रहे हैं यार।
2: बिल्कुल भैया।
3: और भैया देखो जब अपन फसल खेत में होते हैं भाई, देखो जैसे मौसम बदला बहुत जगह पर यहाँ ओलावृष्टि भय है, पत्थर गिर गए, तो कबो कबो का होते हैं मनई जब तिनी गलती करत है तो फिर बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। अब तिनी गलती का सीधे जैसे फसल का बीमा।
2: बिल्कुल। अब भैया बीमा की जरूरत तो तब पर है, मान लो कि जैसे अब बताओ गलती करते हैं तो ना भी गलती करे तब जो प्राकृतिक आपदा होते भैया वो कब्बो घट सकत है और केहू के साथ घट सकत है। तो उससे बचे खातिर जो अपन सरकार है बहुत तरीके की योजना चलावत है।
3: हाँ।
2: तो वही जो है फसल के भी बीमा करवावत है।
3: हाँ, गलती यह नहीं करे है भैया कि बीमा तेरे भूल जो हाँ। नहीं करे है बीमा पहले करा ले।
2: बिल्कुल
3: अच्छा मने इजाजत है, अरे कहाँ किन जाए, लेकिन जब भैया नुकसान हो जाते तब समझम नया होते है कि भैया कहाँ किन जाए, अगर पहले तेरे बीमा होते तो भैया अब फायदा हो जाता है। तो एक हमारे पहले तेरे भैया कराए के यहाँ बीमा करवा लो। और देखो बहुत आसान है, बहुत आसान प्रीमियम देख परत है।
2: हाँ।
3: कोनो यू ना है कि भैया बड़ा भारी भरकम पैसा देख परी तो यू नुकसान हो जाए।
2: बिल्कुल।
3: और सबसे बड़ी चीज है भैया कुछ मामूली कागज देख परत है, अपने खेती का जो ब्यौरा है वो दे दो, वही के साथ साथ आधार कार्ड दे दो और नजदीकी जो अपन ब्लॉक है हुमा जाके चले जाओ तो भैया सब पता हो जाता है, जनसेवा केंद्र है हुमा जाके अपन फसल क्या आसानी से बीमा करावा जाता।
2: बिल्कुल बीमा करा दी जाता है। और जब भी कोनो ऐसी आपदा हुए, मौसम खराब हुए या कुछ भी ऐसी समस्या की वजह से अपन अगर फसल खराब हो जाता है तो यही का समय रहते सूचित की जाए और यही का जो है इके लाभ उठावा जाए,
3: लाभ उठावा जाए। देखो सरकार इतना सहयोग कर रही तो भैया अगर जागरूक रही हो तो लाभ तभी मिल पाई। अब पता लग कि उमा भैया जागरूक है नहीं हो, कहूँ बता ही नहीं रहो, अब पेट पिरा रहा बता ही नहीं रहो, तो भैया कैसे दवा मिले, आराम कैसे मिले। तो
2: जागरूकता की बात कहो तो जागरूकता से मने जो है अपने आय का बढ़ा सकते हैं खेती किसानी के साथ साथ और

0: भी बहुत तरीके के काम है जो उनके के अपन आमदनी बढ़ा सकते हैं, खेती किसानी बागवानी बहुत तरीके के काम है भैया।
1: आप भैया जब जागरूकता बात के नो तो देखो अपने बीच में अपन पंच भाई अपन बैठ के सुनते हैं वो तना तना के अपनी खेती मैया अपनी फसलन मैया बहुत तरीके की तकनीकें अपना कहियाँ एक सफल किसान बन जाते हैं।
0: बिल्कुल भैया,
1: और जब सफल किसान बनते हैं तो भी अपन सफलता की कहानी सब पंचन का सुनावे आवत हैं। तो यही कड़ी में आज है इतवार हम पंचन लेके आए हैं सफलता की कहानी आम की सघन बागवानी। जो भैया आज के वार्ताकार हैं मोहम्मद फहद फारूकी भैया और इनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया और दोनों जने अपनी बैठकी में आ चुके हैं मुस्कुराए रहे हैं। तो आओ सुना जाए पंचो भाई सुने और जाना जाए इनकी सफलता की कहानी।
0: भैया सुन लीजिए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे नॉन मेसी बागवान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, सीतापुर जनपद के खैराबाद के मोहम्मद फहद फारूकी साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। फारूकी साहब ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती खास करके बागवानी से जुड़ाव हुआ कब से?
3: सबसे पहले तो मैं अपने आकाशवाणी के श्रोताओं को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ उनका। डॉक्टर साहब अपनी शुरुआती पढ़ाई जो है वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से करी पाँचवें दर्जे तक की, और उसके बाद मेरे माता पिता के एक निर्णय में मुझे दिल्ली भेज दिया गया अपनी स्कूलिंग करने के लिए। फिर हमने वहाँ से पढ़ाई करी और ट्वेल्थ क्लास के अंदर जब हम पहुँचे उसके बाद में मैंने तय कर लिया था कि मुझे आर्ट की फील्ड में जाना है, तो हमने NIFT न्यू दिल्ली को चूज़ किया। यहाँ से फिर मैंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया फैशन डिज़ाइन में।
2: लेकिन खेती की तरफ जुड़ाव हुआ कब से?
3: खेती के लिए जुड़ाव तो एक बाग है मेरा जिसने मुझे वापस बुलाया है, और वो जड़ें थीं जो कब से मेरे साथ जुड़ी हुई थीं और सही समय आने के ऊपर मुझे उसने पुकारा, मैं चला आया।
2: यानी किस सन की बात
3: है? ये बात है 2016-17 की।
2: यानी लगभग 10 साल हो गए?
3: जी हाँ, तो 8 साल पूरे हो गए हैं मुझे। 2018 में मैंने अपना बैग एंड बैगेज जो था, मैंने जो मैंने अपना एक्सपोर्ट हाउस बनाया था और हम पूरे विश्व में अपने कपड़ों को और अपनी क्रिएशंस को एक्सपोर्ट कर रहे थे, और फिर ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो और भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हज़ारा बाग चला गया तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर एक से एक ऐसी रेयर वेराइटीज़ आम की थी, माने उनका कोई दूसरा पेड़ ही नहीं है। जब हज़ारा में एक पेड़ मरता है तो विश्व पटल से एक वेराइटी आम की विलुप्त हो जाती है।
2: यानी आपके बागों में कितनी वेराइटी है अभी?
3: मेरे पास में लगभग 170 वेराइटी के आम हैं इस समय, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों मिला के।
2: तो आप आम की सघन बागवानी की शुरुआत कब से किया आपने?
3: देखिए, जब मैं आया हूँ हज़ारा तो मेरा मकसद था कि मैं उस बाग को उसके जो चरम है उसके ऊपर दोबारा लेके जाऊं जिस पटल पर वो था, क्योंकि वो बहुत मशहूर बाग था
2: जी।
3: और मेरा जुड़ाव उससे ये था कि मैंने जीवन भर उसके आम खाए हैं। जब मैं दिल्ली में भी रहता था तो मेरे आम जो थे वो हज़ारा से ही आते थे। शायद यही वो जुड़ाव था जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा उसको बचाने के लिए।
2: तो अभी जो सघन बागवानी का रकबा है आम का,
3: जी,
2: वो कितना है?
3: मैं तकरीबन 5 हेक्टेयर इस समय एक्टिवली कर रहा हूँ।
2: यानी 12.5 एकड़?
3: जी लगभग, हाँ 12.5 एकड़।
2: तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं
3: उसके अंदर? हमने चौंसा लगाया है और लंगड़ा लगाया है, दशहरी लगाई है, और थोड़ा सा हिस्सा उसके अंदर रंगीन प्रजातियों का भी लगाया है।
2: कौन कौन सी वैरायटी? जैसे
3: रंगीन में है अरुणिका, अंबिका, सुहासिनी, स्वर्ण रेखा,
2: यानी ढेर सारी वैरायटी।
3: जी हाँ, मेरे पास में जो मैंने कलेक्ट करी हैं वो लगभग 100 वैरायटीज होंगी जो उन 170 से अलग हैं।
2: यानी 270 हो गए
3: लगभग। हाँ जी, ऐसे जोड़ी।
2: तो ये बताएं कि इसकी शुरुआत आप कोई प्लानिंग किए होंगे?
3: हाँ, हम जब आए थे तो हमने सबसे पहले अपनी ज़मीन को सुधारने के ऊपर काम किया, जिसके कारण मैंने अपनी खेती भी सीखी, क्योंकि मुझे खेती भी नहीं मालूम थी, ना पोटाश मालूम था, ना गोबर की खाद मालूम थी, ना NPK मालूम था। एक बात आपको डॉक्टर साहब बताएं, मैं रोज़ 2 से 2.5 घंटे अपने घर पर लाइब्रेरी की शक्ल में बैठकर पढ़ाई करता हूं, आज भी करता हूं, और उसी पढ़ाई को करके मैं आज जो हूं वो खेती कामयाब तरीके से कर पा रहा हूं।
2: तो ये जो सघन बागवानी की बात करें
3: जी,
2: लगभग 12.5 एकड़ जमीन
3: जी,
2: 100 से अधिक वेराइटीज हैं
3: जी,
2: तो उनका अंतरण क्या रखा है आपने?
3: अच्छा, इनको मैंने 3 तरीके से लगा रखा है। मैं सबसे पहले अपने किसान भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ, और खास करके नौजवान पीढ़ियों से जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो अपनी जब खेती बाड़ी की बातें करें तो वो मोबाइल के ऊपर कहीं और बैठ के ना करें, बल्कि एक कुर्सी मेज डाल के इसको पढ़ाई की शक्ल में करें। जब वो पढ़ाई की शक्ल में और हाथ में कॉपी कलम लेके करेंगे तो उनको खुद नजर आएगा उनकी समझदारी कितनी जल्दी विकसित होती है इस बारे में। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ हमने 3 तरीके के सिस्टम लगाए, क्योंकि हमारी जो समझदारी थी वो केवल किताबी समझदारी थी उस समय, और धरातल के ऊपर अपने उत्तरी भारत के अंदर

0: कोई सघन बागवानी का कोई मॉडल भी नहीं है। और हम जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं उसके लिए डॉक्टर साहब हमने विश्व भ्रमण किया है और उससे समझदारियां पैदा करी हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की एक पूरी रिसर्च है जिसके अंदर वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर या अति सघन बागवानी के ऊपर काम करते हैं, मगर वो उनकी वैरायटियों के ऊपर है। उनकी वैरायटियां मतलब की, कैंट और प्रिंस किंस्टन प्राइड, ये सब ऑस्ट्रेलिया की वैरायटियां हैं जिन पर उन्होंने अलग अलग मॉडल्स को लगाकर अपनी समझदारी बनाई है कि विश्व परिपेक्ष में कौन सा पेड़ किस तरीके के लक्षण दिखाता है। तो उसकी समझदारी वो लोग क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। उसके एक 500 पेजेस लगभग रिसर्च पेपर्स हैं, वो मैंने पढ़े, उनको समझा। वहां जाकर मैंने ट्रेलिसिंग समझी, यानी वो लोग तार बांस के ऊपर भी बागवानी करते हैं। वो भी एक चीज है जो मैंने यहाँ पर अपने यहाँ इस्तेमाल करी है। ट्रेलिसिंग कहते हैं उसे अंग्रेजी में, और आप उसे सिंपल भाषा में समझना चाहें तो उसे समझिए कि बागबानी जो तार बांस के ऊपर हो रही है
1: जी।
0: और फिर दूसरा है, मैंने इजिप्ट से बहुत सारा इंस्पिरेशन लिया, जहां पर एक सिस्टम लगता है जिसको स्मॉल ट्री सिस्टम कहते हैं, एसटीएस बागबानी कहते हैं उसे। तो मैंने वहां फार्म्स में, कायरो के पास में फार्म्स हैं जिनके अंदर उनकी अपनी वैरायटीज के अंदर वो लोग अति सघन बागबानी कर रहे हैं।
1: यानी मिस्र से भी आपने सीखा?
0: जी हाँ, इजिप्ट के अंदर उम्मे हबीबा एक मैडम है, उनका एक बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, लेडी होकर भी उन्होंने बहुत बड़ा एक पूरा आम का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उनके पास अपनी बागबानी है, अपने पेड़ है। मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशन लिया है इस काम को करने
1: और
0: के लिए।
1: तीसरा?
0: तीसरा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी का बहुत काम चल रहा है,
1: यानी अति सघन बागवानी,
0: अति सघन। वो लोग 1 मीटर पे पेड़ लगाते हैं, यानी 3 फुट के ऊपर आम का पेड़ लगाते हैं।
1: लेकिन आपने कितना अंतरण रखा?
0: फिर उसके बाद मैं भारत के अंदर जो हमारे यहाँ पर जो उद्यान हैं, जिन लोगों ने जैसे CISH है या पूसा है, उनके अंदर जाकर मैंने ये समझा कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय परिवेश में चीजों को समझना अति आवश्यक है। अब हम लोगों ने धीरे धीरे इसको काम किया। हमारे पास में एक मॉडल है 15x1 पे, हमारे पास एक मॉडल है 18x18 पे, हमारे पास एक मॉडल है 5x18 के ऊपर। सबसे कामयाब मॉडल बागों में मुझे लगता है चौंसा, दशहरी, लंगड़ा, इन लोगों के। लेकिन हमको इनका रूट सिस्टम जो है वो सेट करना पड़ेगा। हम इसके रूट को सेट करते हैं और इसकी कैनोपी को मैनेज करते हैं। इनको आपको पेड़ों की तरह सोचना बंद करना होगा, इनको आपको झाड़ों की तरह इस्तेमाल करना होगा। हमको जैसे लॉन के अंदर हेज बनाते हैं, हमको उस तरीके से हेज बनानी है।
1: तो आप ऐसा कर रहे हैं?
0: जी हाँ, हम कर रहे हैं। और हम मैन्युअली खुद कटिंग करते हैं, हम अपने लड़कों को, अपने वर्करों को ट्रेन करते हैं। हम कहते हैं पहले हम करेंगे, तुम पहले बैठ के देखो, फिर देखो, फिर हमारे साथ करो, फिर हमारे साथ करने के बाद में तुम करो और हम देखेंगे। तो ऐसा 3 साल की ट्रेनिंग हम अपने लड़कों को दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमको 30 एकड़, 40 एकड़ इस तरीके के बागों को लेके जाना है तो हम अकेले तो सबकी कटिंग और छटाई और सफाई नहीं कर सकते।
1: तो ये जो 12.5 एकड़ की सघन बागवानी है आम की, उसकी क्या स्थिति है इस समय?
0: इस समय उसके अंदर मैं प्रति वृक्ष, अभी तक की मैंने कंटार का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने किसी भी तरीके के PGR का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने बहुत लिमिटेड फर्टिलाइजर दिया है। और उसके बाद में मैं ये मानता हूं कि 50 किलो प्रति वृक्ष मेरे पास में फलत है 18x18 के बाग में।
1: तो भूख कैसे मिटाते हैं?
0: फर्टिलाइजर से, गोबर से, और उसके अंदर ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का इस्तेमाल करते हैं हम। उसके अंदर बायो फंगिसाइड जैसे बेवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, आपका लेप्टस बेसिलस, और इस तरीके के तमाम ऐसे बायो एंजाइम्स हैं जिनसे हम कीट प्रबंधन और न्यूट्रिशन का प्रबंधन करते हैं। हम जीवामृत बनाते हैं, हमारे पास में 5,000-5,000 लीटर, 8,000 लीटर के टैंक्स हैं जो हमने सीमेंट में बनाए हैं, और उसके अंदर जो है वो हम पानी भर के उसके अंदर कल्चर तैयार करते हैं, और इस कल्चर को ड्रिप से और स्प्रिंकलर की प्रणाली से हम अपने बागों तक की पहुंचाते हैं। इसकी वजह से ही हमको कामयाबी मिली है, कम लेबरी के अंदर अच्छी तरीके से हम इनको मैनेज कर रहे हैं।
1: इस साल आपकी फसल कैसी है?
0: मेरी फसल ठीक है।
1: जो पिछला अनुभव आपका होगा कि जो 12.5 एकड़ की सघन बागवानी है आम की, उसमें लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं, और आपका मुनाफा होता कितना?
0: जी, सघन बागबानी के अंदर चूंकि मैंने 3 वेराइटीज लगा रखी हैं, तो तीनों के रिजल्ट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन सबसे कामयाब जो मुझे दिखा है, जहां से हम लोगों को काम शुरू करना चाहिए, वो है 18x5, 18x9। इसके अंदर क्या है कि जो नए बागबान आएंगे उनको उन पेड़ों को साधने के लिए कुछ समय मिलेगा। 1x18 के ऊपर या 1x10 के ऊपर जो हम बाग लगा रहे हैं उनके अंदर, एक मतलब 1 मीटर x3 मीटर के ऊपर, वो इतने सघन है कि वो हाथ से निकलने का चांस बहुत बड़ा है। ये बागबानी उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग पूरी तरीके से कर्मबद्ध और वचनबद्ध हैं बागबानी की तरफ। लेकिन जो लोग नौकरी भी साथ में कर रहे हैं, वो लोग अपनी स्पेसिंग को अकॉर्डेंस में बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि ये काम जो है फुल टाइम जॉब है। अगर आप सघन बागबानी को फुल टाइम करेंगे तभी आप इसमें फायदा उठा सकते हैं।
1: तो पिछला तजुर्बा कैसा?
0: पिछला तजुर्बा मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि लेबर की इतनी बचत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। किसी को पेड़ पे चढ़ना नहीं है, क्वालिटी आम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मैं इस समय भारत के जो सबसे

0: बड़ी कंपनियां हैं मल्टीनेशनल, मैं अपना आम उनको बेचने की तैयारी में इस समय लगा हुआ हूं, पूर्णता अग्रसर हूं। मंडियों के अंदर हम अपना आम न ले जाएं, हम उनको डायरेक्टली बेचें और अपना हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना आम बेचते हैं, हम लोगों तक की अपने आम को सीधे पहुंचाते हैं। अभी वो कुछ ही शहरों में सीमित है जैसे दिल्ली, बंबई, पुणे, बैंगलोर और हैदराबाद, लेकिन आने वाले समय के अंदर हम इसको और भी फैलाएंगे और लोगों तक की जहर मुक्त खेती को और बाग के आमों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: जो आम की सघन बागवानी आप कर रहे हैं
0: जी,
1: उसमें कोई और खास पॉइंट जो विशेष ध्यान में रखते हो?
0: पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है और अपने बागों को बेड पर लेके आइए ताकि कम से कम पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा बाग को आप जल्द से जल्द सींच सकें।
1: तो
0: सबसे
1: कैसे?
0: बड़ी बात यह, हम बेड्स के ऊपर अपने पूरे बागों को हमने बेड्स पे लगा रखा है, सिर्फ नाली में पानी देते हैं। बागों में पानी भरना नहीं चाहिए, बागों को पानी नहीं पसंद है, बागों को नमी पसंद है, बागों को फ्लड इरिगेशन बागों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पुराने मीडियम साइज या छोटे पेड़, कोई भी पेड़ हो, पेड़ के तने से पानी टच नहीं करना चाहिए। हमने अपने जो पुराने बाग हैं, हमने अपनी बाउंड्री के अंदर जो है वो उनके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक चबूतरा बना दिया है ताकि पानी न टच करे, केवल वहां पर वापसा कंडीशन बनी रहे। हम उनके नीचे मल्चिंग करते हैं एक बहुत तरीके के साथ में, 12 महीने का प्रबंधन करते हैं ताकि इस समय हमको लगभग 50 टन के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं उस 12 हेक्टेयर से लाने की, और मेरे बाग अभी मात्र 5.5 साल की उम्र के हैं।
1: यानी 550 क्विंटल?
0: जी।
1: तो आप मार्केटिंग का कौन सा
0: मार्केटिंग? हम खुद ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं और जो बचा हुआ आम होता है उसको हम अच्छी मंडियों के अंदर बेचते हैं। हमारी हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस है सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी आम को डंडे से नहीं तोड़ना है, आम को लाठी खोचे से नहीं तोड़ना है, आम को अच्छी खुचिया बनानी है जिसके अंदर आम गिरे और उस पर चोट ना लगे, साफ सुथरा आम। हमारा आम जब मंडी भी जाता है तो भी 100 रुपए क्रेट ऊपर बिकता है। क्यों? क्योंकि जो पहले हमारा आम ले गया है उसको ये बात मालूम होती है कि हमारा आम सड़ा नहीं है, गला नहीं निकलेगा, दागी नहीं निकलेगा, तो हमको अच्छे पैसे देना चाहता है।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और बागवान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग मेहनत के साथ में काम करने को तैयार है, लोग समझते हैं कि जो कुछ ना करे वो बाग लगा दे, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि बाग आपको तब लगाना है जब आप इसके लिए तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो। तब आपको साल में पैसे एक ही बार मिलेंगे साल में, लेकिन आपको मेहनत जो है वो 8 महीने करनी पड़ेगी उस पर ईमानदारी के साथ। इसके अंदर जो हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी लगाते हैं उसके अंदर हम मिश्रित खेती भी करते हैं, कभी हम उसके अंदर पालक धनिया की बुआई करते हैं और इसको भी साथ साथ चलाते रहते हैं, और आलू भी हमने लगाया हुआ है जब हमने शुरुआत करी थी इसकी,
1: ताकि अतिरिक्त आमदनी का स्रोत हो।
0: जी,
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 9810891579 9810089157 9857 98 10 08 91 57।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
0: अभी तो ये सफर शुरू हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जो लोग नए बाग लगा रहे हैं मैं उनसे जुड़ूं, उनको सही से सही राय मशवरा दूं ताकि वो अपने बागों के अंदर बेहतर से बेहतर काम कर सकें और सफलता के नए आयाम को हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के थ्रू बना सकें। मेरा उद्देश्य केवल यही है।
1: मोहम्मद फहद फारूकी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आपने फैशन टेक्नोलॉजी और फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के बाद एक मुकाम पर होने के बावजूद भी आप अपनी जड़ों की ओर लौटे और अपनी खेती और बागवानी से जुड़े और आज एक मुकाम पर हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आगे भी आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओम भैया।
3: हाय मानसू भैया।
2: देखो भैया, कितनी नीक जानकारी मिली आज की सफलता की कहानी माँ, आम की सघन बागवानी माँ मोहम्मद फहद फारूकी भैया, बड़ी नीकी तिनके जानकारी दिहिन, आपन अनुभव साझा किहिन हमें सबके साथ है, तो इनसे बत कही किहिन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया बहुत बेहतरीन तरीके से।
3: हाँ, और भैया देखो मोहम्मद फहद फारूकी भैया बताएं कि देखो बहुत जने का स्वागत हैं जो खेती किसानी हैं, जो पढ़े लिखे मने नहीं हो तो वही करते हैं, तो फहद फारूकी भैया देखो कितना पढ़े लिखे, कितना जो है जगह जगह तेरे कितना
2: जानकारी
3: प्राप्त की है, और फिर भैया उनका जो रुझान रहा है बागवानी तरफ, अपन जो बताए ना हजारा बाग की तरफ, वे भैया लौट के आए और इतनी नीकी तरह तेरे विपक्ष काम कर रहे हैं और वह जानकारी अपने पंच भाई संगे साझा की।
2: बिल्कुल, तो यही के खाते दोनों भैया के बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और देखो भैया हिमांशु भैया, जब इतनी नीक जानकारी हो जाते और संझा के यहाँ हम पंचे अपने ख्याल

0: हाथ तेरे जो है काम काज करके लौटी थन थक हार कहिया और भैया तखत परिया बाजा धरा हो
1: हाँ।
0: और खाए वाला कोनो गुड़ उड़ मिल जाए और बढ़िया तेरे और सब जने बैठ हो और
1: हाँ।
0: बैठ कहिया बतकही चलत हो अपन बाजा बाजत हो अपने कार्यक्रम खेती किसानी चलत हो और भैया वही पा अगर गौने सुने मिल जाए
1: बिल्कुल, तो बिल्कुल आनंद आ जा
0: जो
1: रही है।
0: एकदम ऐसे ही गर्मी में जुड़ाए जाते हैं।
1: तो देखो, अब आज जो है अपनी बैठकी में हम सब लेके आए हैं किसानी गीत हमारे देशवा के, और यह के जो है स्वर है राम सूरत तिवारी भैया के, तो
0: तो आओ
1: सुन
0: सुना
1: लीजिए।
0: जाए, पंचों भाई सुने आनंद लें।
1: बिल्कुल।

0: भारत महान बा ना भैया, इतनी नीक गाने सुन के एकदम मन प्रसन्न हो गया। हम देखे थे नापो झूमत आयु
1: बिल्कुल भैया, और
0: एक खातिर राम सूरत तिवारी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया देखो, अपन पंचन का जो खेती होते वह मौसम पर आधारित होते, और मौसम तन दे बदल रहा, पता ही नहीं चलत कबो इस घाम हुई रहा बिकट वाला, और कबो एकदम तेरे बरखा बूंदी आंधी पानी हो, कहूँ कहूँ पाथर तक गिरे जा रहे हैं।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल। और देखो मौसम के बात की हो तो मौसम बदला था, तो अगर जब अपने किसान भाई का पंच भाई का एक ही जानकारी पहले से मिल जाए तो वही हिसाब से मैं अपन तैयारी कर सकत हैं।
0: बिल्कुल भैया देखो, जब जानकारी पहले से मिल जाए तो का करेक है भैया, का सुप्तियावक है, पता लग ख्यात मैया मकाई परी है, वो पानी बस गया तो भैया मैं भुट्टा पता लग जगह आ रहे हैं। तो भैया जब पहले तो जानकारी हुई तो वही हिसाब तेरे समेट लिन जाते हैं। अब देखो बहुत जने का कर रहे हैं, पेपरमेंट काटे जा रहे हैं, और पता लग काटक पूरी योजना बनाए हैं, भैया पानी गिर गया तो वही में नुकसान हो जाते हैं। तो भैया हम देख रहे हैं ना, पतनी देर तेरे सुक्ति आए रहे हो, मौसम के हाल भैया बताए दो अपने पन बहन का।
1: बिल्कुल भैया देखो, हम जो हमका मौसम के हाल मिला है वो मिला है भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ से। तो भैया अगले 7 दिन के हमका मौसम के जो जानकारी मिली है ये हम बताए दे थे आपका। आज यानी कि 31 मई 2026 से लेके 4 जून 2026 तक के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले जानकारी दे दी भैया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और काल कहीं कहीं पर आज से लेके और 6 जून 2026 तक का कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ में बारिश होने की संभावना है। बौछार पड़ी हैं, और यही के साथ ही साथ जो है जो हवा के वेग है वह 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चले के रफ्तार की संभावना है।
0: अच्छा भैया,
1: और अगर बात की जाए भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ आज और काल, आज यानी कि 31 मई 2026 का और काल 1 जून 2026 का कहूँ कहूँ पर गरज चमक के साथ में वर्षा होने की संभावना है, और आंधी तूफान चले की भी संभावना है। अगर भैया अगले 7 दिनों में मौसम के चेतावनी के बात की जाए तो आज यानी कि 31 मई का और काल यानी कि 1 जून का कहीं कहीं पर मेघवर्जन वज्रपात के साथ में झोंकेदार हवा चले के संभावना है, और साथ साथ भैया कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकत है। तो ये सब चीज़न का ध्यान में रखते हुए पंच भाई और किसान भाई अपन आगामी तैयारी करें, अपने फसल का लेके इका सुनिश्चित करें।
0: तो यू भैया रहे मौसम का हाल। भैया देखो पहले तेरे अपन योजना बना लूँ खेती की, का भैया करेक है, कहे तेरे जब भैया पहले तेरे पता चल जाते तो अपन भैया सब काम कीन जा सके थे। और यूँ तो रहे मौसम का हाल, वही के साथ अब जो अपन पंच भाई कल के कार्यक्रम का सुनिए वह बताए दें जाए, तो लोकायतन में सुनिए वार्ता आयुष्मान भारत योजना से गाँव में बदलाव, जो वार्ता कर रही हैं वे अनिल प्रताप सिंह भैया रही हैं। और खेती किसानी में सुनिए भेंट वार्ता, गर्मी में पशुओं के रोग कारण और निवारण, जगह वार्ता कर रही हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह भैया, और इनसे भेंट करी हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो ये भैया कल के कार्यक्रम हैं, और अपन पंच भाई देखो अपन कार्यक्रम सुनत हैं, उनका अपन बैठ के कई लागत है, तो और का बदलाव करे चाहत हैं, सुनना चाहत हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो भी अपन भैया प्रतिक्रिया लिख के भेज सकते हैं।
1: साथ ही साथ अपन अनुभव भी बता सकते
0: हैं, अनुभव भी बता सकत कई भैया कार्यक्रम लाग रहा, तो वही के खातिर सबसे जरूरी हो जाते पता। तो भैया हिमांशु भैया जो कार्यक्रम का पता है वो जरूर बताए दो।
1: बिल्कुल भैया, तो देखो जो अपने कार्यक्रम के पता है जी पर चिट्ठी पत्री भेजा जा सकत है, तो वो है कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग आकाशवाणी लखनऊ, यह के जो पिन कोड है वह है 226001 226001।
0: तो यू तो भैया अपन चिट्ठी पाती भेजा क्या जो पता है, लेकिन देखो अब बड़ा जमाना जो है आधुनिक हो गया है,
1: बहुत
0: पंच भाई अपन फोन रखते हैं और दन दे रहे भैया तुरंत भेज देते हैं अपन जैका कहा थे ईमेल। तो भैया जो ईमेल के अपन जो पता है ईमेल आईडी जैका कहा थे वो है farmandhomelko@gmail.com, यानी कि farmandhomelko@gmail.com पर भैया इप्पा अपन जो अनुभव है वो दन दे भैया भेज दो, तुरंत अमृत लोगन तेरा पहुँचे हैं।
1: बिल्कुल, तो अब जो ये हाईटेक समय है, हाईटेक जमाना है, तो यही के जो लाभ उठावा जाए अपन।

0: वो अपन जानकारी अपन ज्ञान एक पे जो ने भेजा जा भैया।
1: तो भैया जब लाभ की बात करत हो तो सबसे जरूरी एक चीज़ यह हो जाते है, क्योंकि ये बेरा देखो भैया, फार्मर जो रजिस्ट्री है वह बहुत जरूरी है। बहुत पंच भाई बहन कहते हैं कि भैया किसान सम्मान निधि वाला पैसा
0: हाँ,
1: नहीं आ
0: रुक
1: रहा है।
0: गवा पैसा आ नहीं रहा है, कहाँ दिक्कत पड़ी है।
1: तो वही के लिए भैया देखो सबसे जरूरी हो जा रहा है कि आपका जो अब खेती का ब्यौरा है वो एकदम डिजिटल हो गवा
0: बिल्कुल भैया।
1: है वो आके जगह हो गवा है, रजिस्ट्रेशन करा लो। तो वही तेरे का हुई कि आपका जो आवे वाली समय की जो योजनाएं हैं खेती से
0: हाँ
1: जुड़ी,
0: बिल्कुल।
1: वे भैया आके जगह पर बड़ी आसानी से आपका प्राप्त हुई जी।
0: और जो सरकार वहां से भेजा था लाभ पैसा भेजा था, वो सीधा तन्न से खाते पहुंचे।
1: देन से पहुंच जाए। और भैया देखो वही के लिए कहूँ बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाए, चाहे तो अपने स्वयं कर सकते हो या तो आप जाए के जनसेवा केंद्र पर यहाँ करा सकते हो। और अब देखो भैया घड़ी कर रहे इशारा कि पंच भैन तिलीन जय आज्ञा
0: जय
1: जय हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
5: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
6: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
7: बिल हो रहा है।
8: चल अपना कार्ड दे।

0: बुकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी DGP। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है,

0: वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की भी अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली हैं। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्णरेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है।
0: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशीवासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के MLC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
2: कि बनारस का लंगड़ा दौड़ता है विश्व भर में, तो बनारस के लंगड़े की प्रशंसा उन्होंने की। आज बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी हमारे किसान लंगड़ा आम की खेती करते हैं। बनारस धन्य है, बनारस के लंगड़ा आम का स्वाद ही कुछ और होता है।
1: बस्ती के रहने वाले आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
3: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाएं, जैसे कि नदी पूरा साफ हो, क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक DGP के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश को स्थायी DGP मिल गया है। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। श्री राजीव कृष्ण

जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति सीएमओ के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का सीएमओ बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार वाराणसी का सीएमओ बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर जीपी गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा

0: गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिना विरासत का सम्मान किए प्रगति संभव नहीं है।
1: जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता, और हमारे पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तमाम सड़कें प्याऊ और धर्मशाला बनाई, लोक कल्याणकारी काम किए हैं। इसलिए ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ताओं से इतिहास बनता है।
0: वाराणसी में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा की अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
2: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: RBI कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद।

0: पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीना सोनकर
1: और मेरा यानी सुमोना पांडे का नमस्कार।
0: नमस्कार सुमोना जी, आपको भी और स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। सभी श्रोताओं का भी हम करते हैं दिल से स्वागत और हम अब शुरू करते हैं मेल्स पढ़ने का सिलसिला। सुमोना जी, ये राम खिलावन जी कुरसठ से हैं और इनके साथ और भी इनके मित्रगण हैं। इनका किसान रेडियो क्लब है। इनके साथ है अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मणिराम, देवेंद्र दीक्षित, राम जी, रमेश, धीरज कुमार, बबलू यादव और राम प्रसाद। इन सभी ने मिलकर लिखा है ये मेल। लिखते हैं कि 21 मई का विज्ञान और किसान कार्यक्रम में सफल किसान विजयपाल सिंह यादव से जो बातचीत डॉक्टर सुशील कुमार राय जी द्वारा की गई वो बहुत अच्छी लगी और उसका विषय था गन्ना उत्पादन से जुड़ी जानकारी, ये इन्हें अच्छी लगी। इसी के साथ ही मेंथा उत्पादन पर जानकारी डॉक्टर संजय कुमार जी ने दी और इनसे बातचीत की सुशील कुमार राय जी ने, दोनों ही जानकारियां इन्हें बेहद अच्छी लगी। 26 मई का

0: भी इन्होंने जिक्र किया है कि इस दिन खेती किसानी प्रोग्राम में डॉक्टर दिनेश सिंह जी की गन्ने में समन्वित रोग प्रबंधन विषय पर जानकारी सुनकर बहुत अच्छा लगा। सहकारी समितियों पर गौरी त्रिवेदी जी ने जो जानकारी दी वो भी सुनकर बहुत अच्छी लगी।
1: हम राम खिलावन जी और उनके सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें मेल करके अपनी बात हम तक पहुंचाई। इन्होंने कार्यक्रम सुना, उन्हें पसंद आया और इनसे उनको मिली जानकारी से हमें उम्मीद है कि उनको बहुत लाभ भी हुआ होगा। तो आपका बहुत बहुत आभार और मेल इसी तरह से हमें लिखते रहिए और हमारे कार्यक्रम सुनकर अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी सुमोना जी, अब जो मेल हमारे पास आया है वो मेल आया है विजयपाल यादव जी का ललहुआ लखीमपुर खीरी से। इनका भी किसान रेडियो क्लब है। इनके साथ हैं शुभम यादव, ऋचा शिखा, गुड़िया यादव, बबलू यादव और विजय पांडे जी। लिखते हैं, आदरणीय सुमोना दीदी और नीना दीदी को प्रणाम चरण स्पर्श। इन्होंने लिखा है कि 20 मई को आंगनबाड़ी कार्यक्रम में जच्चा बच्चा योजना पर नीमा पंत जी ने जो जानकारी दी वो बहुत अच्छी लगी। 24 मई को खेती किसानी कार्यक्रम में सफलता की कहानी के अंतर्गत कृषि विविधीकरण पर अनिल कुमार सिंह जी से डॉक्टर सुशील कुमार राय जी की बातचीत बहुत ही अच्छी लगी। इसी दिन का बाल गोपाल कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम रविवार के दिन जिसमें विषय था गर्मियों में कैसे रखें हार्ट का ख्याल, इस पर जानकारी बहुत ही उपयोगी लगी। 25 मई को लोकायतन कार्यक्रम में मधुमेह कारण और बचाओ, इस विषय पर डॉक्टर सतीश कुमार जी ने जानकारी दी, बहुत अच्छी लगी। 26 मई को खेती किसानी कार्यक्रम में गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने दी और इनसे बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय जी ने। मतलब इन्हें सभी कार्यक्रम अच्छे लगे और फिर पहले के मेल की तरह गुजारिश की कभी कभी नौटंकी भी प्रसारित की जाए।
1: जी तो विजयपाल जी, आपने हमारे कार्यक्रम सुने और आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए और हमें लगता है चूंकि आप खेती किसानी से संबंध रखते हैं तभी आपको हमारे जितने भी कार्यक्रम खेती किसानी के होते हैं वो पसंद आते हैं, उनसे आपको लाभ मिलता है जो भी जानकारी उसमें दी जाती है। और उसके साथ ही साथ आपने सभी कार्यक्रमों की तारीफ की है, चाहे वो बाल गोपाल की हो या हेल्थ एंड फिटनेस की। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए जो विषय लेकर आते हैं उनसे आपको लाभ मिले, उनसे जानकारी मिले और साथ ही साथ आप अपने आप का और अपने परिवार का ध्यान रख सकें और एक खुशहाल जीवन जी सकें। तो आपने हमें मेल द्वारा अपनी बात हम तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: ऐसे ही एक हमारे श्रोता है साहिब आलम जी, इन्होंने लिखा है कि दोनों बहनों को प्यार भरा नमस्कार सलाम।
1: तो मैं भी नीना जी आपको ईद की मुबारकबाद देती हूँ और आपको भी सलाम हमारी तरफ से।
0: जी साहिब आलम जी, आपने लिखा है कि 24 मई को मैंने कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद सुना, यकीन मानिए मुझे निहायत खुशी हासिल हुई।
1: साहिब आलम जी, आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप मेल हमें लिखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमसे संपर्क बना रहे।
0: सुमोना जी, ये है शेषराम मिश्र, ग्राम पूरे पंडा, पोस्ट दादरा, तहसील मुसाफिरखाना, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश से। इनके साथ हैं मानवती मिश्रा जी, प्राची मिश्रा, आनंद मिश्र, वेदिका मिश्रा और घर परिवार के सभी सदस्य। ये लिखते हैं कि दिनांक 17 मई और 25 मई को नीना सोनकर जी और सुमोना एस पांडे जी द्वारा पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में जो प्रस्तुति दी गई वो बहुत अच्छी लगी। सुमोना जी आगे उन्होंने लिखा है कि पहले मजदूर मंडल कार्यक्रम में बृहस्पतिवार के दिन शाम को 4:45 बजे श्रमिक श्रोता बंधुओं के लिए पत्र और अनुरोध गीत प्रस्तुत किए जाते थे, उन्हें प्रारंभ करने की पुनः कृपा करें तो अच्छा लगेगा।
1: जी और देखिए, कार्यक्रम तो एक नियम के अनुसार किए जाते हैं, पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, तो उनमें जो भी हम परिवर्तन करना चाहे हर समय नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें कोशिश करते हैं कि आपके पसंद के अनुरूप आपकी जानकारी आप तक पहुंचे और इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है, हम कोशिश करेंगे इस पर भी कुछ काम करने।
0: सुमोना जी, ये जिला रायबरेली ग्राम पहाड़ीपुर के श्रोताओं का मेल है। इनके नाम है रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य, राम सागर साहू, रसूलपुर वाले, रामचरण प्रजापति। लिखते हैं कि 24 मई को दोपहर के समय, आज इतवार है, कार्यक्रम में बरखा दूर तू न जा नाटिका बहुत ही अच्छी लगी तथा अक्षयवट में वृद्धावस्था में होने वाली आम समस्याएं, इस विषय पर डॉक्टर ए के त्रिपाठी जी से नीना सोनकर जी ने बहुत अच्छी बातचीत की। और इन्हीं का एक और मेल है सुमोना जी, 27 मई को आंगनबाड़ी कार्यक्रम में डॉक्टर नीरू मित्तल जी से नीना सोनकर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। विषय था मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, यानी कि सुमोना जी जो 28 तारीख को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था उस पर ये भेंट वार्ता थी लोगों को और विशेष कर अपने
1: महिला बहनों को
0: जी
1: पसंद आई होगी और इसी उद्देश्य

0: से, चूंकि हम अपने कार्यक्रम भी करते हैं कि आपको जागरूक भी करें और आप तक सारी सूचनाएं पहुंचाएं, सारी जानकारी पहुंचाएं, तो मेल करते रहिए हमें और इसी तरह अपनी बात हम तक पहुंचाते रहिए।
1: सुमोना जी, वारिस अली खान साहब का मेल है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, लिखते हैं कि नमस्कार सुमोना जी, नीना जी, और आगे लिखते हैं कि आपको हॉटमेल और संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी करने होंगे। आगे इन्होंने कुछ बातें भी लिखी हैं कि 23 मई का सुगंध माटी की कार्यक्रम में नीना और अंजू ने बहुत जबरदस्त किया था, तबीयत खुश हो गई। 24 मई का कार्यक्रम पद चिन्ह आकाशवाणी के मुझे बहुत अच्छा लगा। सुमोना जी ने वरिष्ठ उद्घोषिका महजबी जैदी जी से जो बातचीत की बहुत लाभप्रद थी और बहुत सी जानकारियां भी मिली। 25 मई का उर्दू कार्यक्रम अच्छा लगा, मेजबान आसिफ इकबाल जी ने वो कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, और लोक रंग में शशि रेखा सिंह के भोजपुरी लोकगीत बहुत अच्छे लगे।
0: वारिस अली साहब, आपने कुछ अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं, अपनी कुछ सलाह हमें दी है, तो हम कोशिश करेंगे उन पर अमल करने के लिए। और जहां तक आपको कार्यक्रम पसंद आने की बात है, तो हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमें मेल करके ये चीजें बताते हैं और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव पर भी ध्यान दे सकें और कार्यक्रम आपके अनुरूप कर सके। हमें मेल करते रहिए।
1: ये सुमोना जी डॉक्टर सुखदेव प्रसाद छैल हैं, ये जाने माने कवि हैं, अवधी बोली में भी बहुत सारी ये काव्य पाठ रचनाएं इनकी हैं और ये करते रहते हैं। और इनके साथ हैं इनकी पत्नी शांति देवी जी, रानी खेड़ा राजा मऊ बछरावा से। ये कहते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम और स्वास्थ्य चर्चा इन्हें बेहद अच्छा लगता है।
0: तो डॉक्टर सुखदेव जी को हम कहना चाहेंगे कि आपने समय निकालकर हमें मेल किया और आपने हमारे कार्यक्रम सुनकर उनसे लाभ लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और कार्यक्रम सुनते रहिए, औरों को भी इसके साथ जोड़िए, और अपने साथ जितने भी आपके घर के लोग हैं या मोहल्ले के लोग हैं या आसपास के लोग हैं, उनको भी इसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि जब तक बात जन जन तक नहीं पहुंचेगी, हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा। और चूंकि आप लोग इतने ध्यान से कार्यक्रम सुनते हैं, तो इसके लाभ भी लोगों तक पहुंचे, यही हम चाहते हैं। और आपने हमें मेल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सुमोना जी, प्रहलाद कुमार कुशवाहा जी का मेल है, इनके साथ है सोनम कुशवाहा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र कुशवाहा, माया और पिता श्री रामनाथ कुशवाहा जी, गनीपुर बेहटा बांगरमऊ उन्नाव उत्तर प्रदेश के हैं। सभी श्रोता लिखते हैं, आकाशवाणी लखनऊ यूपी का रेडियो चैनल नंबर 1 है, सुनते ही श्रोताओं का जो मोह लेता है मन मेरा, उसको नमन। कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं, 18 मई को प्राइमरी चैनल पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें ये सुना, बहुत अच्छा लगा। 20 मई के कार्यक्रम का इन्होंने जिक्र किया है कि नीना सोनकर जी ने आंगनबाड़ी कार्यक्रम में जो जानकारियां दी बहुत अच्छी लगी, लोक गीत बजे वो भी बहुत पसंद आए। इसी दिन विज्ञान और किसान कार्यक्रम में सतावर की खेती विषय पर डॉक्टर स्वप्निल श्रीवास्तव से डॉक्टर सुशील कुमार राय जी की बातचीत बहुत उपयोगी लगी। 21 मई को विज्ञान और किसान कार्यक्रम में गन्ना उत्पादन विषय पर प्रगतिशील किसान विजयपाल यादव जी से डॉक्टर सुशील कुमार राय जी ने बातचीत की, बेहद लाभदायक लाभप्रद लगी। धन्यवाद
0: जी, आपने हमारे कार्यक्रम को सराहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेल करते रहिए और हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और लाभ लेते रहिए।
1: नेहा वर्मा जी का मेल है, इनके साथ हैं अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, सुधाकर, कोमल, सियाराम, गौरपुर, बमना खेड़ा, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से। लिखती हैं कि मुझे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुनना बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने आगे लिखा है कि लोकायतन, खेती किसानी, घर आंगन, आंगनबाड़ी, विज्ञान और किसान, स्वास्थ्य चर्चा और एफएम के कुछ कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं सुनने में, और आपके यहाँ से जितने भी प्रस्तुत किए जाते हैं कार्यक्रम, वो सब बहुत अच्छी तरह से पेश भी किए जाते हैं, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बुधवार को जो कार्यक्रम आता है आंगनबाड़ी, वो सुनना बहुत अच्छा लगता है, उसमें नीना दीदी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती है एक डॉक्टर के साथ, बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी देती है। सुबह का स्वास्थ्य चर्चा अच्छा लगता है, खेती किसानी, विज्ञान और किसान, लोक माधुरी, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है
0: जी। और हम इनसे गुजारिश ये भी करेंगे कि इनके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे तीनों चैनल में होते हैं, हमारा प्राइमरी चैनल है, विविध भारती चैनल है और एफएम रेनबो चैनल है, तो आप इनको भी जरूर सुनिए या अपने आसपास के लोगों को सुनवाइए, या जो युवा खास तौर पर वर्ग है उनके लिए एफएम रेनबो है तो वो भी जरूर सुने और अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाए अपने मेल के द्वारा। और आपने हमें मेल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी सदस्यों को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं उनका कि उन्होंने आपके साथ मिलकर इस मेल को भेजा है और हमारे कार्यक्रम को सराहा है।
1: सुमोना जी, ये कुलदीप गुप्ता जी हैं उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं कि 24 मई को आकाशवाणी के 90 वर्ष के संबंध में मेहमान जी से आदरणीय सुमोना पांडे जी की बातचीत

0: बहुत ही अच्छी लगी। मैं तो काफी भ्रमित हो गया था कि बातचीत की तारीफ करूं या कार्यक्रम के बीच में प्ले किए गए गीतों की। दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे थे। बहुत ही सुंदर बातचीत सुनने को मिली और लाभ भी पहुंचा। आगे इन्होंने ये लिखा है, सोमवार 25 मई को विविध भारती के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम सुरों के सफर के अंतर्गत संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से जुड़े हुए गीतों का प्रसारण सुनने को मिला। अच्छा लगा, साथ ही तड़का संगीत का, इसमें भी मिट्टी से जुड़े लोकगीतों को सुनकर मन भावन हो गया। और कुछ बातें भी इन्होंने लिखी है कि आदरणीय सुशील कुमार राय जी द्वारा जो भेंटवार्ता प्रसारित की गई वो भी बहुत अच्छी थी। उसका विषय था पशु में गलाघोटू रोग। इस विषय पर जो बातचीत थी वो बहुत लाभप्रद थी और हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। और निवेदन करना चाहता हूँ कि PKLD यानी कि जो प्रोग्राम हम लोग सुमोना जी इस समय आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ये लिखते हैं कि उसका समय बढ़ाया जाए।
1: कुलदीप गुप्ता जी, आपने इतनी विस्तार से हमारे कार्यक्रम को सुनकर अपनी समीक्षा भेजी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे हर कार्यक्रम को इसी मकसद से किया जाता है कि आपको उससे लाभ भी मिले और आपका मनोरंजन भी हो। आपने कार्यक्रम की तारीफ की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद जरूर करना चाहूंगी और आपने मेल किया उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और जहां तक समय बढ़ाने की बात है, देखिए हम एक नियम के तहत कार्य करते हैं तो हर कार्यक्रम का एक समय होता है निर्धारित, उसी के अनुरूप हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और बहुत लंबा कार्यक्रम कोई हो जाता है कभी कभी तो शायद वो उबाव भी हो सकता है, तो इसीलिए जो हमारा जो संबंध हमारे श्रोताओं के साथ बना रहता है इसमें एक स्नेह बना रहे और कौतूहल बना रहे, तो आपने हमें मेल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी सुमोना जी, ये लाल मोहम्मद जी हैं, इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम पेश करने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब।
1: आदाब आपको भी
0: जी। और इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के लिए सभी स्टाफ को श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 17 तारीख को बालमंच कार्यक्रम सुना, इसमें चर्चा थी जीव जंतु कितने उपयोगी, ये पसंद आई इन्हें चर्चा। इसी कार्यक्रम में आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम सुना, वो भी अच्छा लगा। इनका पूरा पता है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली उत्तर प्रदेश। लाल मोहम्मद अंसारी जी, इनके साथ लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और सभी मित्रगण।
1: तो अंसारी बंधुओं को हम भी नमस्कार कहते हैं, आदाब कहते हैं और इसी तरह से आप हमें मेल करते रहे यही गुजारिश करते हैं।
0: ग्राम अमृता महोली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी का मेल है, 21 तारीख को विज्ञान और किसान कार्यक्रम में सफलता की कहानी क्रम में विजयपाल यादव जी के द्वारा गन्ने के उत्पादन पर दी गई जानकारी बहुत ही उपयोगी एवं लाभदायक लगी, इसके लिए उन्हें दिल से धन्यवाद।
1: और आपको भी दिल से धन्यवाद कि आपने उस कार्यक्रम को इतने ध्यान से सुना और हमें मेल किया, और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमें पत्र लिखते रहिए।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश के श्रोताओं का मेल है। सुमोना जी अक्सर ये मेल करते हैं और अगर ना लें तो हो सकता है फिर हमें मेल ना करें, नाराज हो जाएं।
1: ऐसी बात नहीं, हमारे श्रोता हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल अगर समय होता है तो हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा मेल लेने की।
0: जी इनके वैसे 3-4 मेल है लेकिन मोटी मोटी बातें पढ़े देती हूँ। पहले इनके नाम बता दूं, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ये लिखते हैं कि 20 मई के दिन कार्यक्रम नई उड़ान बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में श्रृंखला प्रगति के पथ पर बहुत अच्छी लगी। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये विषय था उस दिन जो इन्होंने सुना, बहुत अच्छा लगा।
1: जी और आपने हमें मेल किया तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, और आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप हमें लिखकर भेजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और नीना जी, अब मुझे लगता है कि हमें समय का भी ध्यान रखना चाहिए
0: जी,
1: तो अब पता बता दिया जाए नीना जी?
0: पता बताते हैं, हमारा मेल आईडी है pkldlko@gmail.com।
1: जी
0: फिर से एक बार आप सुने, pkldlko@gmail.com। और हमारा पता है पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन संख्या है 226001। अब दीजिए नीना सोनकर
1: और सुमना पांडे को इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम में अवध। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कार्यक्रम शाम में अवध में और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त शिवानी वर्मा। दोस्तों, जिंदगी के इस भागदौड़ में हम अक्सर बहुत कुछ पा लेते हैं, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन कभी कभी उन्हीं लोगों को वक्त देना भूल जाते हैं जिनकी दुआ

उससे हमारी जिंदगी रोशन होती है। जी हाँ, आज की हमारी खास पेशकश समर्पित है उन रिश्तों को जो बिना किसी शर्त के हमें प्यार करते हैं, जो हमारी हर तकलीफ में ढाल बनकर खड़े रहते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे अभिभावक। कहते हैं घर में माँ बाप हों तो घर सिर्फ मकान नहीं, जन्नत बन जाता है। तो आज की ये शाम उन सभी माता पिता के नाम जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो आइए इस खूबसूरत शाम में हम याद करते हैं उनके प्यार, त्याग और दुआओं को, और शुरुआत करते हैं एक बेहद दिल को छू लेने वाले गीत के साथ। दोस्तों, ये गीत हमें याद दिलाता है कि माँ बाप की दुआएं इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती हैं। उनकी छांव में जिंदगी आसान लगती है और उनकी मुस्कुराहट में ही हमारी खुशियाँ छिपी होती हैं।

दोस्तों, माँ बाप वो अनमोल रिश्ता हैं जिनका कर्ज शायद कभी उतारा नहीं जा सकता। हमारी छोटी सी खुशी के लिए वो अपनी बड़ी बड़ी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। दोस्तों, बचपन में जब हमें चोट लगती थी ना, तो दवा से पहले माँ का हाथ और पापा की आवाज़ ही दर्द ठीक कर देती थी। और पता है, माँ बाप कभी ये नहीं बताते कि वो कितनी परेशानियों में हैं। वो तो बस ये चाहते हैं कि उनके बच्चे मुस्कुराते रहें। दोस्तों, अगर आपके माता पिता इस वक्त आपके साथ हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। और अब समय है अगले गीत का, एक ऐसा गीत जो हर बच्चे को ये एहसास दिलाता है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाए। फिल्म हम साथ साथ हैं का ये गीत परिवार संस्कार और माता पिता के सम्मान की खूबसूरत मिसाल है।

0: दोस्तों, आज के इस खूबसूरत महफिल में बस इतना ही। उम्मीद है कि शाम अवध की ये प्रस्तुति आपके दिल को छू गई होगी। जाने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उन्हें वक्त दीजिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन माँ बाप नहीं। उनकी इज्जत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और हमेशा उनकी दुआओं में शामिल रहिए। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त शिवानी वर्मा, लेती हूं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक नई शाम, नई सोच और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम अवध, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, एक विशेष वार्ता आपको सुनवाते हैं जिसका विषय है शब्दों के संवेदन शिल्पी केदारनाथ सिंह। वार्ताकार हैं डॉक्टर श्रवण गुप्ता।
2: केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए बनारस और दिल्ली जाकर के पूरी की। तीसरा सप्तक 1951 में अंग्रेज ने जो निकाला था उसमें ये शामिल थे। हिंदी साहित्य में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनके काव्य संग्रह हैं अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही है 1980, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 में प्रकाशित हुई। अभी बिल्कुल अभी को बच्चन सिंह ने होने की लगातार कोशिश का परिणाम माना है। केदारनाथ सिंह अपनी कविता में सरल, सहज और सरस भाषा का प्रयोग करते हैं। नए नए प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने मुक्तक छंदों में अपनी कविता में लयात्मकता के विविध रूपों का प्रयोग किया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में आत्मीय भाव गहरे रूप में बैठे हैं, जो कविता के विभिन्न रूप को और उपमाओं के माध्यम से जनता के सम्मुख आते हैं। एक कविता है, रात कहीं कोई मीनार टूटने की आवाज इधर आई थी, क्या यह सच है? सुबह एक मंदिर के पास किसी अजनबी फरिश्ते के पंख पड़े दिखे थे, क्या यह सच है? इस कविता के माध्यम से कवि प्रश्न उठाता है जो आज की वर्तमान परिस्थिति पर एकदम सटीक बैठता है। शिल्प विधान की बात करें तो केदारनाथ जी अपनी कविता में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारे आसपास

दिखाई सुनाई पड़ते हैं। कविता क्या है? शीर्षक कविता में देह और मृत्यु की तरफ इशारा किया गया है। देखिए, कविता क्या है? हाथ की तरफ उठा हुआ हाथ, देह की तरफ झुकी हुई आत्मा, मृत्यु की तरफ घूरती हुई आंखें। इस कविता के माध्यम से केदारनाथ जी बताते हैं कि जीवन कितना अमूल्य है। जहां पर सत्य और करुणा को जगह मिलती है, वहीं पर कविता का सृजन संभव है। इनकी भाषा के बारे में यदि यह कहें, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अपने विचार विनिमय अपनी आसपास से अर्जित की हुई भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं को संप्रेषित करता है, तो काव्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा साहित्यिक भाषा होती है, लेकिन केदारनाथ जी की भाषा में ग्रामीण परिवेश से आने वाली बोली भाषा और शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। नई कविता में कई प्रकार के भाषाई शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे ठंड से नहीं मरते हैं शब्द, वे मर जाते हैं साहस की कमी से, कई बार मौसम की नमी से मर जाते हैं शब्द। इस कविता में प्रकृति और मनुष्य की सच्चाई को समाज के सामने प्रस्तुत करने की हिम्मत दिखाई देती है। मनुष्य के मरने पर जिस प्रकार से कवि को दुख होता है, वैसे ही शब्दों के मरने पर कवि शोक संतप्त है। केदार जी की भाषा में भोजपुरी शब्दों का आना लाजमी है, क्योंकि वे उसी माहौल में पले बढ़े हैं। इनमें कठोर शब्दों की जगह शब्दों के प्रयोग के साथ साथ गीतात्मक और लयात्मकता का बखूबी ध्यान रखा गया है। कहीं कहीं कवि में आक्रामकता भी देखने को मिलती है, जैसे मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, यह जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होगा। मैं भरी सड़क पर सुनना चाहता हूँ वह धमाका जो शब्द और आदमी की टक्कर से पैदा होता है। जिस प्रकार अन्य कवियों में भाषा की दुरूहता कहीं कहीं दिखाई देती है, वहीं पर केदार जी की भाषा में सहजता देखने को मिलती है। इनकी कविता में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द देखने को मिलते हैं। केदारनाथ सिंह जी ने भाषा के स्तर पर विविध प्रयोग किए हैं। अपनी कविता में जनता की भाषा को जनता के ही लहजों में प्रस्तुत किया है। केदारनाथ सिंह ने अपनी कविता में उपमा अलंकार को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। एक उदाहरण देखिए, जैसे चिड़िया तुम्हारे कोट की जेबों से नहीं, बल्कि चिड़िया निकलती हैं शहर की सबसे मनहूस इमारतों से। कुछ शब्द हैं जैसे सूर्योदय, जिनके जादू से बचना चाहिए। यहाँ चिड़िया के उपमान को लेकर कवि ने कुछ शब्दों से सतर्क रहने की सलाह दी है। और जहाँ तक इनके प्रतीक विधान की बात है, तो प्रतीक शब्दों के प्रयोग से अप्रस्तुत का प्रयोग करके अपनी अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना होता है। केदारनाथ सिंह जी ने प्रतीक के संबंध में कहा है कि प्रतीक अमूर्त, मूर्त दोनों हो सकता है। प्रतीक किसी वस्तु का चित्रांकन नहीं करता, केवल संकेत द्वारा उसकी किसी विशेषता को ध्वनित करता है। जैसे देखिए कि वह जमीन से निकलता है और सीधे बाजार में चला आता है। इस कविता में आलू को प्रतीक मानकर उसे बाजार में किस तरह उसकी खरीद फरोख्त होती है, इसको दर्शाया गया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में बिंबों की तो भरमार है। इन्होंने बिंबों को कल्पना जनित बताते हुए शब्द चित्र कहा है। बिंब का सबसे प्रमुख कार्य है एक कल्पित सादृश्य विधान के द्वारा वस्तु और काव्यगत अर्थ को जोड़ना। केदार जी की कविता में बिंबों के अनेक रूप विद्यमान हैं, जैसे लोक जीवन, प्रकृति आदि को विविध बिंब रूपों को अपनी कविता में इन्होंने प्रस्तुत किया है। दो लाइन का उदाहरण है कि फूल जैसे अंधेरे में दूर से ही चीखता हो, इस तरह वह दर्पणों में कौंध जाता है। केदार जी की कविता में मानवीय रूपकों का सहारा लेकर कई प्रकार के बिंबों का उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे स्पर्श बिंब, ध्वनि बिंब, दृश्य बिंब, चाक्षुष बिंब। दो लाइन का ये उदाहरण देखिए, इनकी कविता है कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। हाथ कविता में बच्चे के नाजुक हाथों का बिंब प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ केदार जी ने फैंटेसी में कुछ कविताएं लिखी हैं, वह अपने से सवाल

0: करते हुए फैंटेसी को समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि मैं खुद से पूछता हूँ, कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या वह जो टंगा है लोगों के अंदर। तो निष्कर्ष तौर पे कहा जा सकता है कि केदारनाथ सिंह का शिल्प पक्ष बहुत मजबूत रहा है। इनकी कविताओं में भाषा का पक्ष प्रबल रहा है। इन्होंने बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से आदमी के संघर्षों को चित्रित किया है। इनकी रचनाओं में प्राकृतिक चित्रण के बहाने वर्तमान परिस्थितियों को समाहित किया गया है। केदार जी की कविताएं मौन रहते हुए भी मुहावरों और प्रतीकों को नए रूप में ढालकर व्यवस्था पर प्रहार करती हैं। इनकी कविता में ग्रामीण परिवेश, उनके रहन सहन को भी सम्मिलित किया गया है। केदारनाथ सिंह जी की कविता भाषा की व्याकुलता और शब्दों की जटिलता से दूर जनमानस की भाषा और शब्दों के करीब ठहरती है।
1: शब्दों के संवेदन शिल्पी केदारनाथ सिंह। अभी आप ये विशेष वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर श्रवण गुप्ता। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल के गाए भजन। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की गाय भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से। सबसे पहले आइए सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में आजा नचले फिल्म का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी

0: इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीत कर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर

0: 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the lair of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने

0: Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia has congratulated the Indian men's doubles pair on winning the Singapore Open title. In IPL cricket, the high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru is underway at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Put into bat, Gujarat Titans were 143 for 7 in 18.4 overs when reports last came in. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and opted to field. Both teams are aiming for their second IPL title. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and West Madhya Pradesh tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar during the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासिद के तहत अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेल कूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है और IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासद के तहत उनके गैर मामूली तआवुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले इकदाम और हसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वालशेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बाल कृष्णैया की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर टीचर हैं जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों की बहबूद के तहत उनके तआवुन को भी सराहा।
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना

0: गहरा है।
1: खेल कूद के मैदान में भारत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरेंद्र वीर सिंह और उन्मेष गुजर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ़ुज़ की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर पाउंडवंशी संतलत के मक्के महर्षि बलार्जुन से मुतल्लिक छठी और सातवीं सदी की तीन नायाब तांबा एक खसूसी तकरीब मुनद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन ताबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिल कदर गहरी मालूम फराहम होती हैं। वज़ीर आज़म ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफुजाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने आज कहा है कि ख्याल और कार्रवाई में इख्तरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। मुल्क के नए CDS की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने मुसल्लह फौजों, सनात, तालीमी इदारों, स्टार्टअप्स और तहकीक के इको निज़ाम के माबैन मजीद इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया, जो जदीदकारी के लिए बुनियादी हैसियत का हामिल हैं। साबिका फौजियों और वीर नारियों के बहबूद के तई मुसल्लह फौजों के पाबंद रहने की बात दोहराते हुए उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुसल्लह फौजें खुद को वक्फ करते हुए हिम्मत, इज्जत और पेशेवराना महारत के साथ मुल्क की खिदमात अंजाम देती रहेंगी। आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सब्जार में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर किया। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने आज हरियाणा के ज़िले पंचकुला में वाक़े रामगढ़ में अपनी तनसीब पर एक ताकतवर बम का कामयाब तजुर्बा किया है। ये जामे हिफाजती इंतजामात के दौरान भारतीय फजाइया के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तिराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निज़ाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किस तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में BJP ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है।

0: इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। उसने धर्मशाला, सोलन और मंडी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पालमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीट जीती है। धर्मशाला में बीजेपी ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 वार्ड्स में जीत हासिल की है। सोलन में बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड्स हासिल किए हैं। मंडी में बीजेपी ने 14 में से 12 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड्स में जीत हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 वार्ड्स में से 11 वार्ड्स में वाजे अक्सरियत हासिल की है, जबकि बीजेपी ने 4 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है, अगरचे ये इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर मुनक़द हुए थे। ताहम बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी हामी उम्मीदवारों की कामयाबियों का जिक्र किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के तीसरे मरहले के तहत नंबर शुमारी का काम शुरू हो गया है। कमीशन ने बताया कि उन सभी अहल वोटरों को जिनके नंबर शुमारी फार्म इंतखाबी रजिस्ट्रेशन दफ्तर को 28 जून को या इससे पहले मौसूल हो गए हैं, चुनाव फहरिस्तों के मुसवदे में शामिल किया जाएगा। SIR का मकसद यह है कि कोई अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से न रह जाए और कोई नाअहल शख्स चुनाव फहरिस्त में शामिल न रहे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर नेज बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज अगरतला में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब रेड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम के 6 साल पूरे होने के मौके पर मनाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रेड़ी पटरी वालों को रुपए पैसे के डिजिटल वसीले से किए जाने वाले लेन देन को फरोग देने और माली तौर पर खुद किफालत के लिए कर्जों के चेक और QR कोड वाले क्रेडिट कार्ड तकसीम किए। मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मौसूफ सिलीगुड़ी में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत से पहले बागडोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद से तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है, क्योंकि रियासत में साबिका TMC सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन BSF के हवाले नहीं की थी, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे हसास जिले मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दफाई एतबार से अहम चिकन नेक राहदारी पर भी हिफाजती इंतजाम मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। यह राहदारी शुमाल मशरकी खित्ते को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाती है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को उनके 301वीं यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मुंबई में लोक भवन में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अहिल्या देवी होलकर की तस्वीर पर गुलहाय अकीदत नजर किए। इस दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर जिले में चौंडी के मकाम पर अहिल्या देवी होलकर यादगार का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। म्यांमार के शुमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामखम टाउनशिप के काउंगटुब गांव में दोपहर में हुए धमाके में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। ये इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है, जहां तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। ये एक मुसल्लह ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाजारा है। जय हादसा पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर मामूर एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और मगरबी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और झालाबारी का इम्कान है। महकमे ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी राजस्थान में

अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे और बिजली चमकने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। इस तरह उन्होंने 2 साल में अपना पहला खिताब जीत लिया। आईपीएल क्रिकेट के अहमदाबाद में जारी फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 156 रन का निशाना रखा है। इससे

और इस कार्यक्रम का अगला मेल हमें भेजा है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहवा जिला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी ने। ये लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व तंबाकू निषेध दिवस तंबाकू न केवल स्वास्थ्य के लिए घातक है बल्कि परिवार और समाज की खुशियों को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। साथ ही ये लिखते हैं कि आपके द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं आकाशवाणी लखनऊ को बहुत ही प्यार करता हूँ। आप सभी की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगती है। आज का शाम यावत कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। हमें भी ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। तो चलिए आप सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। आप सभी ने फरमाइश की है मोहम्मद रफी की आवाज में राजकुमार फिल्म का ये गीत। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला मेल हमें मिला है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, और इस मेल को भेजने वाले हमारे श्रोता हैं एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश। आप सभी ने सुनना चाहा है जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद अपनी रेडियो दोस्त शिवानी वर्मा के साथ। और इस कार्यक्रम का अगला मेल हमें भेजा है जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा ने कैथल हरियाणा से। आप दोनों ने सुनना चाहा है क्रांति फिल्म का ये गीत नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अगला मेल हमें मिला है वड़िंगखेड़ा पंजाब से, और इस मेल को भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मिंटू, टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और साथ ही एक और मेल हमें मिला है संबलपुर कांकेर से, और इस मेल को भेजा है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। आपने फरमाइश की है बैराग फिल्म के इस गीत की लता मंगेशकर की आवाज़ में, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम में आपके मेल तो अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन जल्दी से हम पढ़ लेते हैं कुछ और मेल। अगला मेल हमें मिला है गांव नथाना पंजाब से, और इस मेल को भेजा है हरजिंदर चिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ने। ये लिखते हैं कि खुश रहो और खुशियां बांटो। बिल्कुल सही बात कही आपने। और अगला मेल हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से, और इस मेल को भेजने वाले हमारे श्रोता हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। ये लिखते हैं कि इन्होंने अपना एक विचार प्रकट किया है। इन्होंने लिखा है कि बुरे वक्त में हमारे साथ किसी ने नेकी का काम या अन्य किसी भी प्रकार से हमारी मदद की है, वह इंसान नहीं देवता है। ताउम्र उस इंसान के एहसानमंद रहेंगे। ज़िंदगी में कभी उस नेक इंसान को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो उस एहसान का बदला ब्याज समेत चुका देंगे। नेकी का एहसान इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, कुछ लोग मतलबी भी होते हैं, एहसान या नेकी को तुरंत भूल जाते हैं। और साथ में इन्होंने फरमाइश की है हमशक्ल फिल्म के इस गीत की लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: हाय हाय, काहे को बुलाया

श्रोताओं, अगर आप भी इस कार्यक्रम में अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें ईमेल भेजना ना भूलें। हमारी ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप अपनी फरमाइश हमें पत्र के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग, आकाशवाणी लखनऊ, पिन कोड है 226001। अब कार्यक्रम आपकी पसंद से मुझे यानी शिवानी वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटि आस्थाना विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
0: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नू कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नू कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: You are now listening to the saxophone recital by Sri Asnapurappu Yerraya in the Ravivasari Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. Sri Yerraya next presents Samagana Priyakaram, a composition of Guru Sarjananda in Rag Keeravani, set to Misra Chaputal.

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashvani Kadapa, and this broadcast

0: to you from the studios of Akashvani, Delhi.
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोट

0: were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 और 22 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा समाप्त होती है। कल प्रातः 5:52 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।